मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1947 के बैसाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 12 मई सन 2026 ईस्वी, प्रातः के 5:52 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, खेत खलिहान। किसान भाइयों के इस कार्यक्रम में आज सुनिए वार्ता। विषय है पशुओं के परजीवी। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। कुछ बाह्य परजीवी ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपके पशुओं को, पशुओं के शरीर पर ये रहते हैं और उनसे नुकसान भी होता है। देश के प्रायः सभी भागों में जू और किलनियाँ पशुओं की बाह्य त्वचा पर परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। ये परजीवी पशुओं का रक्त पीकर अपना जीवन पूरा करते हैं। ये वर्ष भर पशुओं की त्वचा पर रह सकते हैं। यह परजीवी पशुओं के शरीर में रक्तहीनता, सारे

कमजोरी, त्वचा में खुजली आदि पैदा करते हैं। इनके अतिरिक्त यह कुछ घातक रोग जैसे रक्त परजीवी रोग, बेबसियोसिस, एन प्लाज्मोसिस, थाइलेरियोसिस, एस्पाइरोकिटोसिस तथा रिकेटिसिया और अन्य वायरल या कीटाणुओं से पैदा होने वाले रोगों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि इनको पशुओं से दूर रखा जाए, यानी कि पशु इन जू और किलनियों से प्रभावित नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, इसका उपाय हम करें। पशु की त्वचा और बालों में चिपके हुए सफ़ेद और काली प्रौढ़ जुगों को आसानी से आप देख सकते हैं। पीठ, गर्दन, पेट तथा पूंछ के नीचे यह जुएँ खास तौर पर पशुओं में देखी जाती है। जू अपना पूरा जीवन चक्र पशु शरीर पर ही पूरा करती है और जीवन चक्र में 2 से 4 सप्ताह का समय लगता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा एक पशु से दूसरे पशु तक जू सीधे संपर्क या पशुओं के काम आने वाले कपड़ों और अन्य सामान के द्वारा पहुंचती है। इनके होने पर त्वचा में खुजली, शारीरिक भार में भी कमी, रक्त में और दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा में कमी पाई जाती है, ये सब लक्षण जुगों के कारण पशुओं में देखे जाते हैं। अब आइए किलनियों की बात करें। तो पशुओं के शरीर पर काली या गहरे बादामी रंग की किलनियाँ मजबूती से चिपकी हुई दिखी जा सकती हैं। अधिकतर ये पेट, दोनों जांघों के मध्य भाग, कान तथा पूंछ के नीचे चिपकी रहती हैं। किलनियाँ नमीयुक्त अंधेरे स्थानों में छिपी रहती हैं। मादा किलनी हजारों की संख्या में जमीन पर अंडे देती हैं, जिनसे कुछ ही दिनों में बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे भी अपना भोजन पशु की त्वचा पर पाते हैं और पशुओं का ही रक्त चूसते हैं। कुछ समय बाद त्वचा छोड़कर जमीन पर आ जाते हैं, जहां निर्मोचन के बाद प्रौढ़ बनते हैं। किलनी अपना जीवन चक्र 2 या 3 माह में पूरा करती हैं। किलनियाँ जुओं की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण घातक रोगों को पशु रोगों से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक पहुंचाने में ये कारगर होती हैं। जुओं तथा किलनियों को दूर करने के लिए कुछ औषधियों को प्रयोग में लाया जाता है, परंतु ये औषधियां विषैली होती हैं, अतः इनका प्रयोग उचित मात्रा में तथा सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि आँख, कान, नाक और मुँह पर दवाई न लगे तथा पशु दवाई को चाट न सके। दवाई का पुनः प्रयोग आवश्यकतानुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पर ही करना चाहिए। दवाओं में मुख्य है ऑर्सेनिक ट्राईऑक्साइड 0.1% से 0.2% घोल को डीप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। रोटिनोन 0.5% की मात्रा 2 से 4 औंस प्रति गैलन पानी में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। पाइरेथ्रम बेरोक्साइड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कोमाडोस, डाइजिनोन, डेलनोब आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक रूप से भी इन्हें को मारने वाली दवाएं हैं, जैसे कि नीम का तेल है, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। साफ सफाई बहुत आवश्यक होता है। यदि एक पशु में किलनी हो जाए तो उसे हाथ से छुड़ाकर भी आप

0: से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं।
1: पशुओं के परजीवी। श्रीनिवास सहाय की यह पूर्व प्रसारित वार्ता आप सुन रहे थे। कार्यक्रम खेत खलिहान संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
2: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1400

0: 58 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः की 6:05 हुए हैं। आइए सुने आज का चिंतन मनन।
1: क्या कभी हमने गंभीरता से विचार किया है कि विदेशी वस्तुओं के प्रति हमारा मोह हमें कितना महंगा पड़ रहा है? आज से लगभग 90-95 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने इसका अनुमान लगा लिया था और उन्होंने नारा दिया था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, हर कीमत पर हम केवल अपनी देश में निर्मित वस्तुओं का व्यवहार करेंगे। उस समय उन्होंने स्वदेशी की बात की थी। उनकी नज़र में स्वदेशी का अर्थ था अपने देश का बना हुआ सामान, दूसरा की ब्रिटेन में बने मालों का बहिष्कार और भारत में बने मालों का अधिकाधिक उपयोग। ब्रिटेन से वहाँ के निर्मित मालों के आने से गांधी जी बड़े चिंतित थे, क्योंकि इससे देश में खुले छोटे और लघु उद्योग की हालत खस्ता हो गई थी, बेकारी बहुत बढ़ गई थी। उनका कहना था कि जो लोग देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदने से इनकार करते हैं और अपनी रुचि बाहर के देश में बनी चीज की ओर दिखाते हैं, वे किसी भी रूप में देशभक्त कहलाने के योग्य नहीं हैं। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। परिणाम यह हुआ कि उसने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया था और देश के करोड़ों लोगों ने न केवल विदेशी वस्त्रों बल्कि विदेश में बनी अन्य वस्तुओं के उपयोग नहीं करने का दृढ़ संकल्प लिया था। बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों की होली जली थी। उस समय ब्रिटिश शासनकाल का समय था और हमारे देश का कच्चा माल कौड़ी के मूल्य में विदेश भेजा जा रहा था और वहाँ के निर्मित मालों को हमें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। देश का सारा उद्योग धंधा इसकी वजह से चौपट हो गया था और देशवासी परालंबी बन गए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वस्त्र, कांच, कागज, कलम, चित्र, खिलौने आदि आवत सब पर देशों नीति ही जहाज न ला दी। गांधी जी की नज़रों में चरखा और खादी ही आर्थिक समस्याओं का हल था और उनका मानना था कि ग्राम और कुटीर उद्योगों के जरिए ही भारत की गरीबी से लड़ा जा सकता है। विदेशों से वहाँ के बने सामानों को मंगाने के कारण देश का धन भी बाहर जा रहा है, अपना देश गरीब होता जा रहा है। गांधी जी की नज़र में इसका एक ही इलाज था और वह था गांव-गांव में छोटे और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हो, यहाँ उत्पादित कच्चे मालों पर आधारित अधिक से अधिक उद्योग खुले, ग्राम अपनी आवश्यकताओं के मामले में स्वावलंबी बने, विदेश निर्मित विभिन्न तरह के सामान, खिलौने से लेकर उपभोग की बड़ी बड़ी वस्तुओं से बाजार भरे हुए हैं। इन वस्तुओं में गुणवत्ता का अभाव है, लेकिन फिर भी हम इसे खरीद रहे हैं। परिणाम यह है कि एक और हमारे देश का धन विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर जा रहा है तो दूसरी ओर हमारे देश में खुली औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन पर इसका सीधा असर हो रहा है और खुले छोटे और सूक्ष्म उद्योग बंदी के कगार पर हैं। कल कारखाने मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी जितनी उत्पादन क्षमता है उतना भी उत्पादन करने में असमर्थ हैं। परिणाम कामगारों के सामने नियोजन की बड़ी समस्या पैदा हो गई है, रोज वो रोज बेकारी बढ़ती जा रही है। क्या यह देशभक्ति का तकाजा नहीं है कि हम दैनिक काम में आने वाली विदेश निर्मित सामानों का बहिष्कार करें और केवल अपने देश में बनी सामग्रियों को खरीदने का निर्णय लें? त्यौहार के समय बाजार में विदेश निर्मित दीप, मोमबत्ती, खिलौने, बिजली के झालर, पटाखे दुकानों में सज रही हैं। अगर हम विदेशी दीप, देवी देवता और खिलौने खरीदते हैं तो उन कुम्हारों का क्या होगा जो महीनों की मेहनत के बाद इस भरोसे के साथ उन्हें बनाकर तैयार किया कि त्योहारों पर इनकी बिक्री होगी? अगर हम विदेशी मोमबत्ती, बिजली के झालर और फुलझड़ी आदि खरीदते हैं तो सोचिए कि हमारे कुटीर उद्योग कैसे बढ़ेंगे? आज इस बात की जरूरत है कि हम केवल अपने देश में निर्मित चीजों के उपयोग का ही व्रत लें।
0: ये था आज का चिंतन मनन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। निवेदित है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आरंभ रोज की तरह देश वंदना से।

भारत प्यारा, देश हमारा, न्यारा हिंदुस्तान, अलग अलग है बोली भाषा, यही इसकी पहचान।

ईश्वर अनंत हैं, अलौकिक हैं, अगम्य हैं, अकथ्य हैं। वे ही इस समस्त संसार के निर्माता हैं।

पालन करता और संहार करता भी हैं। यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में समाहित है। हम उस अनंत शक्ति के अंश मात्र हैं।

इस जगत में सत्य असत्य, न्याय अन्याय, हिंसा प्रेम, करुणा तिरस्कार आदि सभी परस्पर विरोधी भाव विद्यमान हैं। अब यह हमारा विवेक है जो हमें हमारा व्यवहार नियंत्रित करने में मदद करता है, और यदि हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो तो फिर हमारा व्यवहार तो भ्रष्ट होगा ही होगा।

संसार में जो भी जन्म लेता है उसे यह संसार एक न एक दिन त्याग कर जाना ही होता है, क्योंकि सृष्टि का यह क्रम किसी के लिए भी नहीं रुकता। स्वयं सृष्टि भी इसी नियम से आबद्ध

हमारा अंतर्मन हमारी आत्मा को महसूस कर सकती है, बशर्ते हम अपने अंतःकरण को शुद्ध और सात्विक रखें। शुद्ध अंतःकरण और निर्मल निर्विकार चित्त यदि हमारी हो तो हमारी आत्मा भी संतुष्ट होकर हमारे शरीर में वास करती है।

0: ये थी आज की वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने जिन गायक कलाकारों को सुना वे थे शर्मा बंधु, चंद्रु आत्मा एवं साथी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:35 होने को हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुने डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा से की गई भेंट वार्ता। विषय है नेत्र सुरक्षा हेतु सामान्य सलाह। आपसे बातचीत कर रहे हैं सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है, आँख हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और उतना ही महत्वपूर्ण होता है इनकी सुरक्षा करना। तो हम अपने आँखों की सुरक्षा कैसे करें और इसे कैसे बेहतर रखें, इसके लिए जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दैनिक जो हमारी कार्यकलाप होते हैं, दिनचर्या शुरू होती है सुबह से, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारे आँख स्वस्थ रहें?
2: आँखों की देखभाल में मुख्यतः है इनका भोजन
1: जी
2: और प्रॉपर लाइट। भोजन में विटामिन युक्त पदार्थ खाया जाए तो आँखों की सुरक्षा होगी। आँखों में बच्चों में खासकर रतौंधे की बीमारी नहीं होगी, जिससे बच्चों की आँख नहीं खराब होगी। और प्रॉपर लाइट में पढ़ने के लिए हमें प्रेफर करना चाहिए कि वो उचित मात्रा में लाइट रहे, उसी लाइट में हम पढ़ें, या लाइट बैक से अगर आती है तो ज़्यादा उचित है वो।
1: अच्छा, पीछे से रोशनी का प्रबंध करना चाहिए।
2: हाँ
1: जी, तो आजकल बाजार में बहुत तरह के लाइट्स आ चुके हैं, LED है, CFL है, या पुराने जो बल्ब होते थे, तो कौन सा प्रकाश है वो स्वस्थ होता है आँखों के लिए?
2: आँखों के लिए इनका कोई असर तो ऐसा नहीं पड़ता है, अभी तक ऐसा अध्ययन नहीं किया गया है
1: जी।
2: लेकिन कंप्यूटर पर काम करने से, उनका रिफ्लेक्शन से आँखों में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है।
1: अच्छा,
2: जिसमें आँखों में जलन होगा, आँखों से पानी आता है और यदा कदा सर में दर्द भी रहता है
1: जी।
2: इसलिए ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करते हैं वो एंटी रिफ्लेक्शन ग्लास लगाएं या बीच बीच में आँख को रिलैक्स करें। उसके लिए वो काफ़ी दूर किसी सीनरी पर देखें या ऐसा सीन फिट करें जिससे कि हमें दूरी का आभास हो
1: जी जी जी,
2: ताकि आँख रिलैक्स हो, क्योंकि दूर देखने से आँख की मांसपेशियाँ रिलैक्स होती हैं, नज़दीक देखने से उनमें सिकुड़न होता है
1: जी। क्या नेत्र के कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो सुबह सुबह करने से भी कुछ फ़ायदा हो सकता है आँखों पर?
2: आँखों की एक्सरसाइज तो बहुत सारे हैं। एक्सरसाइज में है कि अब दूर देखें फिर तुरंत नज़दीक देखें
1: जी,
2: या उंगली को अपना रोटेट करके घुमाते हुए देखें
1: जी,
2: ताकि ये मांसपेशियों का एक्सरसाइज डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सरसाइज हो
1: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये अब जानना चाहेंगे कि खान पान में विशेषकर हमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे कि विटामिन की पूर्ति होते रहे?
2: विटामिन की पूर्ति होने के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले फल में जैसे कि आम हुए, पपीता हुए, पालक हुए, पनीर हुए, या मछली खाया जा सकता है। इनमें अंडा के पीले भाग में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है और सहजन में भी विटामिन ए की काफ़ी मात्रा होती है। इन चीज़ों को खाने से विटामिन ए की मात्रा भरपूर मिलती रहेगी और आँखों में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। इनकी कमी प्रायः छोटे बच्चों में होती है
1: जी,
2: जिसके लिए सरकार का एक कैंपेन चल रहा है जिसमें विटामिन ए की खुराक दी जाती है, 2,00,000 यूनिट एक चम्मच में रहता है। वो 9 महीने से हम सरकार ने देना शुरू कर दिया है
1: जी,
2: और 6 महीना के अंतराल पर इसको देते हैं। अगर 5 साल तक दे दिया जाए तो भविष्य में विटामिन ए की कमी नहीं होगी इनको और रतौंधे की बीमारी नहीं होगी, जो कि कुपोषण के चलते बच्चों में बहुत ही सामान्य है
1: जी। डॉक्टर साहब, मौसम की अगर बातें करें तो काफ़ी धूप जब होता है जिस मौसम में, उस मौसम में हम कभी कभार बाइक चलाते हैं या तेज़ जब गाड़ी चलती है, तो उससे भी कोई असर पड़ सकता है आँखों पर, और इसके लिए क्या करना चाहिए?
2: खुली आँखों में हवा लगने से तो आँखों को नुकसान होगा ही
1: जी,
2: इसलिए चलाने के पहले सावधानी में या तो आप 0 पावर का अल्ट्रावायलेट रे को रोकने के लिए चश्मा लगाएं या हेलमेट का प्रयोग करें ताकि आपको डायरेक्ट धूल कण या कीड़े से भी बचाव हो सके
1: जी।
2: नहीं तो इनके जाने से आँखों में कर्निया को क्षति हो जाएगी और ये इसमें अल्सर पैदा कर देते हैं ये। आंखों में रक्त जमा हो जाता है, जिसे कि सब कंजंक्टिवल हेमरेज कहते हैं, वो भी हो जाता है।
1: ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा शीशा जो है वो आंखों के लिए अच्छा होगा, ये आम लोग कैसे जाने?
2: उसमें वो ऐसे शीशे जो कि अल्ट्रा वायलेट रे को रोकता है, वो आँख के लिए प्रोटेक्टिव माना जाता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रे से ही कैटरेक्ट होने का एक कारण माना जाता है
1: जी।
2: इसलिए ऐसे शीशे का प्रयोग करें जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकता हो।
1: जी जी, तो निश्चित रूप से आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी कि हमें अपनी आँखों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: नेत्र सुरक्षा हेतु सामान्य सलाह। डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा से की गई ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता आप सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रहे थे सचिन कुमार। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान की क्रमिक कड़ी। मुख्य स्वर चतुर सेन एवं राजेंद्र काचरू के हैं।

भरत के आचरण को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधु कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया, किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्रीराम के प्रेम की रीति देखी है, उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान की क्रमिक कड़ी, मुख्य स्वर चतुर सेन एवं राजेंद्र काचरू के थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों पर। अब से थोड़ी देर बाद प्रातः 7 बजे से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें प्रातः 7 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में आज गायक कलाकार होंगे शंकर मिश्र नाहर। 7:20 पर स्मृति संवाद कार्यक्रम में अपने बीते दिनों की स्मृतियां हमसे साझा करेंगे आनंदी प्रसाद सिन्हा। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़्मे उर्दू। प्रस्तुत करता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। 10:30 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार होंगे विश्वनाथ ठाकुर। 11:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे गुलदस्ता। 12:00 महिला श्रोता सुनते हैं अपना कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग। दिन के 1:00 लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग में आज गायक कलाकार होंगे जयनारायण शर्मा। 1:30 आज आप सुनेंगे धारावाहिक पोषण की नींव पर स्वास्थ्य महल की 6वीं कड़ी। लेखिका होंगी डॉक्टर आरती स्मित एवं प्रस्तुतकर्ता नौमी शांति हेम्ब्रम। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 3:00 तरंग कार्यक्रम में आज फनकार होंगे भूपेंद्र सिंह मिताली सिंह। 3:20 पर आप सुनेंगे समूह स्वर में देशभक्ति गीत और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर होता है फिल्म संगीत। शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अरुणमोय दत्ता की वार्ता पर्वत से मैदान तक संरक्षण के उपाय और जन जागरूकता। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज गायक कलाकार होंगे विजय कुमार दास। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 आप सुनेंगे नाटक अकल का ताला। रात 10 बजे क्षेत्रीय लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा गूंजे बिहार। और रात 10 बजे हम आपके लिए क्षमा करेंगे रात 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे भावों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भावगीत। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, श्रोताओं नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। सूचनाओं, जानकारियों एवं मनोरंजन से भरे इस कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त विशाल आनंद। कीजिए स्वीकार हमारा अभिवादन। आज 12 मई है और आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ग्लोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्म दिवस पर हर साल पूरी दुनिया में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं उसी नर्स, उसी परिचारिका की, जो आप स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, अपने आपके रोगियों का ख्याल रखने वाली जो महिलाएं होती हैं वहां उनकी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में, चाहे अमीर देश हों अथवा गरीब, दोनों ही प्रकार के देशों में एक आम समस्या है, वो है नर्सों की कमी की समस्या। प्राय सभी देशों में नर्सों की कमी की यह जो समस्या है वो देखी जाती है। प्रशिक्षित नर्सों की भरपाई विकसित देशों में कुछ भले कम हो, किंतु विकासशील जो देश हैं या जो देश पिछड़े हैं उनमें खासकर यह समस्या अधिक जटिल और ज्यादा दिखाई देती है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो विकसित देश हैं वो अपने यहाँ दुनिया के बाकी देशों में जो प्रशिक्षित नर्सें हैं उनको अधिक सुविधाएं अथवा अधिक सैलरी देने का वादा करके वे अपने यहाँ बुला लेते हैं, और हर साल प्रशिक्षित नर्सों की भारी संख्या में नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी सेवा देती है। और इस तरह से प्राय सभी विश्व के देशों से जो प्रशिक्षित नर्सें हैं उनका पलायन भी देखना आम बात है। हालांकि बड़ी संख्या में नर्सों की जो है वो बहाली भी प्रत्येक वर्ष होती है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण रोगी और नर्सों का जो एक अनुपात है उसका जो अंतर है वो पट नहीं पाता है, मतलब उसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। जिस अनुपात में एक रोगी को नर्स चाहिए उस अनुपात में नर्सों की जो बहाली है वो कम है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि खासकर गैर सरकारी क्षेत्रों में नर्सों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनके भत्ते हैं वो आज भी काफ़ी कम हैं। इस कारण लोगों का इस ओर ध्यान थोड़ा कम जाता है। नई पीढ़ी आज एक मोटी सैलरी की अपेक्षा रखती है और तभी वह अपने लिए रोजगार के क्षेत्र का चयन करती है। जहां पैसे कम हो उस क्षेत्र में लोग आगे आना नहीं चाहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पुरुषों का कोई वर्चस्व नहीं है। सेवा का यह कार्य सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के जिम्मे ही है। इस कारण भी इस क्षेत्र में सुधार की काफी आवश्यकता दिखाई देती है। बहरहाल चाहे जो भी हो, स्वास्थ्य सेवा की एक मजबूत स्तंभ के रूप में नर्सें अपनी सेवाओं से रोगियों को स्वस्थ करती हैं, उन्हें अपनी सेवा मुहैया करवाती हैं, और आज का दिन है उनकी सेवाओं को एक सम्मान देने का, उनकी प्रशंसा में खड़े होने का। कार्यक्रम में आपसे बातें और भी होंगी। अभी आइए शुरू करते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रसरंग। आरंभ में आपको सुनवाते हैं भजन, रचना परमानंद की है और स्वर दे रहे हैं शंकर मिश्र नाहर।

और अब भागलपुर एवं इसके आसपास भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की अद्यतन सूचना से आपको रूबरू करा देते हैं। गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस भागलपुर से खुलने का निर्धारित समय 7:50 है और यह ट्रेन अपने तय समय से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस भागलपुर आने का निर्धारित समय 7:45 है और यह ट्रेन अपने तय समय से भागलपुर आएगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर आने का निर्धारित समय 8:15 है और यह ट्रेन अपने तय समय से भागलपुर आएगी। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल भागलपुर आने का निर्धारित समय 8:05 है और यह ट्रेन अपने तय समय से 47 विलंब से आने की हमें सूचना प्राप्त हुई है। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर भागलपुर आने का निर्धारित समय 8:37 है और यह ट्रेन अपने तय समय से भागलपुर आएगी। गाड़ी संख्या 12335 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस भागलपुर से खुलने का निर्धारित समय 8:55 है और यह ट्रेन अपने तय समय से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस भागलपुर आने का निर्धारित समय 9:00 है और यह ट्रेन अपने तय समय से भागलपुर आएगी। गाड़ी संख्या 63431 साहेबगंज जमालपुर मेमू भागलपुर आने का निर्धारित समय 9:15 है और यह ट्रेन अपने तय समय से ही भागलपुर आएगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी भागलपुर आने का निर्धारित समय 9:35 है और यह ट्रेन अपने तय समय से 4 विलंब से आने की हमें सूचना प्राप्त हुई है। गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी भागलपुर आने का निर्धारित समय 10:15 है और यह ट्रेन अपने तय समय से चल रही है। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आने

0: आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर से खुलने का निर्धारित समय सुबह 11:55 है और यह ट्रेन अपने तय समय से रवाना होगी। NTES के आधार पर ये थी भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों की अद्यतन सूचना। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
1: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
2: क्रेश,
3: क्रेश
1: और बाल्टी बॉय।
2: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
0: और अब रसरंग कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं एक पारंपरिक गीत। स्वर दे रहे हैं शंकर मिश्र नाहर।

0: रसरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे शंकर मिश्र नाहर। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। 7:20 हो चुके हैं। स्मृति संवाद कार्यक्रम में आज अपने बीते दिनों की स्मृतियां हमसे साझा कर रहे हैं आनंदी प्रसाद सिन्हा। आपसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा। यह एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता है।
1: शिक्षा दीक्षा लेते हुए व्यक्ति कहाँ तक पहुँच जाएगा, कौन सी उपलब्धि उसे मिल जाएगी, कौन सा सम्मान मिल जाएगा, जब इस दुनिया में धरती पर वो आता है तो वो कभी सोचता नहीं, उसके माता पिता नहीं सोचते, परिवार के लोग नहीं सोचते। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि वहाँ एक कहावत चरितार्थ होती है, होनहार बिरवान के होत न चीखने पात। और शायद यही कारण है कि अंगिका क्षेत्र की इस भूमि पर न जाने ऐसे कितने ऐसे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पूरा जीवन निर्वाह कर दिया, लेकिन माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत के, उन्होंने जब ये देखा, जब क्षेत्र के प्रशासनिक दृष्टिकोण से और उनके समर्पण के दृष्टिकोण से ऐसा लगा कि उन्हें सम्मानित भी किया जा सकता है, तो भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उन्हें एक राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया। और आज हमारे बीच हैं श्री आनंदी प्रसाद सिन्हा जी। आप नारायणपुर आदर्श मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से जीवन निर्वाह करने के बाद आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1986 में आपको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है और 1996 में आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आनंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमें गौरव है कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रपति सम्मान महत्वपूर्ण था या शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों ने सम्मान दिया वो महत्वपूर्ण था, या दोनों ही महत्वपूर्ण था?
2: मैं समझता हूँ कि लोग जो सम्मान देते हैं वह ऊपर है राष्ट्रपति के, क्योंकि असल लाभ तो शिक्षा के क्षेत्र में जो वहाँ के इलाके के लोग हैं या बच्चे हैं जो लाभान्वित हुए हैं, उनका मूल्यांकन ही श्रेष्ठ मैं मानता हूँ। क्योंकि राष्ट्रपति जी के यहाँ जो हमारा कार्यकलाप है उसको यहाँ से भेजा जाता है, तब वो मूल्यांकन करते हैं। लेकिन स्थानीय लोग जो हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, वो उनके काम को, उनके कार्य से संतुष्ट होते हुए उनको सम्मान देते हैं। मैं समझता हूँ कि जन सम्मान बड़ा है।
1: जी हाँ, क्योंकि पहले लोग ही मूल्यांकन कर लेते हैं कि हमारे जो फला सेवानिवृत्त या सेवा कर रहे शिक्षक हैं वो वास्तव में, उन्हें राष्ट्रपति से सम्मान मिलना चाहिए, सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए और उनके हाथों सम्मान। कुछ भी हो जाए, शिक्षा के क्षेत्र में पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया और न जाने आपके कितने स्टूडेंट होंगे, कितने ऐसे छात्र होंगे जो भारत का नाम रोशन कर रहे होंगे। ऐसे किसी छात्र से मुलाकात हुई आपकी जो बहुत ही अच्छा नाम कर रहे हों, देश में, विदेश में, राज्य में, जिले में, कहीं भी?
2: जी, मैं, मेरे बहुत से छात्र हैं। एक छात्र कमिश्नर हुए उमाकांत झा, लेफ्टिनेंट कर्नल हुए छात्र, अभी कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ बैंक में मैनेजर थे, कुछ अभी हैं आपके
1: और भी महत्वपूर्ण,
2: हाँ,
1: जगहों
2: और भी महत्वपूर्ण हैं, काज में हैं, और प्रिंसिपल, प्रोफेसर या टीचर, वो तो बहुत से हुए
1: जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा प्रणाली है और जो शिक्षक हैं उसकी जो स्थिति है, उसकी जो दशा है और दिशा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो शिक्षकों की संख्या और शिक्षकों का समर्पण शिक्षा के प्रति और शिक्षकों को मिलने वाला सम्मान कम पड़ रहा है या ज़्यादा होना चाहिए, या क्या वस्तुस्थिति है आपके हिसाब से क्या है?
2: मेरा, देखिए, मेरा इस बारे में एक विचार है कि अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक काम कर रहे हैं उसमें कम प्रतिशत है जो समर्पित हैं। वो उसको व्यापार समझ रहे हैं, नौकरी समझ रहे हैं,

0: लोगों के समय में था कि डेडिकेटेड होते थे शिक्षा के प्रति या समाज बच्चों के प्रति, उसके साइकोलॉजी को जान के, उनकी परिस्थिति को जान करके, और उस पर हम लोग काज करते थे। आज वह स्थिति कम हो गई है।
1: आप जैसे वरिष्ठ नागरिक और विद्वान व्यक्ति समाज में आज भी पूछे जाते हैं और आप सर्वोच्च रहेंगे समाज में, ऐसे कितने कुछ उदाहरण हैं आपकी नजर में जो गांव में रहते हुए बच्चे आज भी आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए या आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए?
0: जी सुना जाए, हमारे जो पढ़ाए हुए शिक्षक जो बच्चे हैं वो किसी भी क्षेत्र में हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने उनको सर्वांगीण विकास किया, उनका चतुर्दिक विकास, उनके शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, खेल कूद का और सामाजिक कार्य करने का। मेरे समय में हमने बच्चों को ऐसे अनुशासन बनाया जो कि जो बच्चे की अगर किसी की पेंसिल भी खो जाती थी तो उसको लाके ऑफिस में जमा करते थे और प्रार्थना के समय में उसे ट्रे में रखवा करके दिखलाया जाता कि किस बच्चे की पेंसिल है।
1: कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों की शिक्षा आपने ज़्यादा दी है।
0: जी हाँ, वह भी नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी और जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, बच्चे थे, उनको मैं एक्स्ट्रा टाइम दे करके भी पढ़ाता था और उसके जीवन के विकास के लिए काम करता था।
1: जी, अभी भी आपको अगर कह दिया जाए कि शिक्षा देनी है, किसी स्कूल का प्राचार्य रहना है, छात्रों को संगठित रूप से बहुत ही अच्छा बनाना है, तो क्या आप हाँ कहेंगे या ना?
0: देखिए, उम्र के अनुसार से तो हम अब काम उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँ, मैं अभी प्राथमिक शिक्षक संघ भागलपुर का अध्यक्ष हूँ, 22 साल से तक प्रधान सचिव रहा और शिक्षा का जो भी है यहाँ, जैसे मैं पेंशनर बिहार पेंशनर समाज का भी उपाध्यक्ष हूँ, यहाँ की जो समितियाँ हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान की, उसका मैं जिले का सदस्य हूँ।
1: कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप अभी भी बहुत एक्टिव हैं।
0: जी,
1: बहुत ही प्रयत्नशील हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने में।
0: जी जी,
1: आप प्रयत्नशील हैं जो जो गड़बड़ी है समाज की या जो बुराइयां हैं समाज में उसको ठीक करने का, या अगर किसी संस्था को मार्गदर्शन देना है तो उसमें भाग लेने के लिए आप शरीक होते हैं।
0: जी हाँ, जी।
1: आपका जो ये दिव्य व्यक्तित्व है, आपको देखने से भी लगता है कि आप सक्रिय रहें और आपका आशीर्वाद छात्रों को मिलता रहे, संस्थाओं को मिलता रहे, लोगों को मिलता रहे। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, राष्ट्रपति सम्मान जो आपको 1986 में मिला, उस समय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे।
0: जी,
1: माननीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के हाथों जब वो सम्मान आपको प्राप्त हो रहा था,
0: जी,
1: उस समय जो क्षण आपको याद है उसके बारे में थोड़ा सा कोई शब्द कहना चाहेंगे?
0: जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगा कि हमने जो कार्य किया है समाज में उसका मूल्यांकन करके आज हमको जो देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति आज हमको सम्मानित कर रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा।
1: हाँ, घर के लोगों ने क्या कहा, जान पहचान के लोगों ने क्या कहा, छात्रों ने क्या कहा, स्कूल के लोगों ने क्या कहा?
0: घर के लोगों ने, जान पहचान के लोगों ने, समूचे जिले, उस समय बाका भी था साथ ही, सारे जिले में हर एक अंचल में मेरा सम्मान किया गया, क्योंकि मैं एक अच्छा शिक्षक समझा जाता था। अनुशासनिक दृष्टि से मैं प्रथम कोटि प्रधान अध्यापक समझा जाता था,
1: अनुशासित और स्ट्रिक्ट।
0: जी, इसलिए सारे लोगों ने मुझे सम्मान दिया। पिछले वर्ष भी हमारे जो पुराने ऊंचे पद पर थे छात्र, उन्होंने भी सम्मानित किया और मोमेंटम दिया।
1: जी, सम्मान का सिलसिला बढ़ता चला गया, इसलिए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने निष्ठा से, ईमानदारी से, समर्पित होकर आपने सब कुछ सिखलाया, पढ़ाया बच्चों को, छात्रों को, क्षेत्र का नाम किया, जिले का नाम रोशन किया, राज्य का नाम रोशन किया और अंततः भारत सरकार में भी माननीय राष्ट्रपति महोदय ने आपको राष्ट्रपति पदक से आपको नवाजा, हमारे लिए बहुत ही गौरव का बात है, हमारे लिए गौरव का क्षण है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और कहीं ना कहीं आप दीर्घायु हों, आप समर्पित रहें, आगे भी आप सब कुछ बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए आगे करते रहें, यही हमारी आकाशवाणी परिवार की ओर से शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपने मूल्यांकन किया और कार्य का की स्वीकृति दी, आपको मेरी ओर से भी धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।
2: स्मृति संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे आनंदी प्रसाद सिन्हा, आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर केसी सिन्हा। आकाशवाणी का ये भागलपुर कार्यक्रम है और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। 7:31 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म नील कमल से लिया है, आशा भोसले एवं साथियों ने इसे गाया है। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि।

और इस गीत के बाद आज के दिन यानी 12 मई से जुड़ी जो कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। आज के दिन सन 2002 में मिस्र, सीरिया व सऊदी अरब ने पश्चिम एशिया मामलों में शांति समझौते की इच्छा जताई थी। सन 1999 में रूस के उप प्रधानमंत्री सर्गेई स्टेपनिश कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अमेरिकी वित्त मंत्री रॉबर्ट रूबिन का अपने पद से इस्तीफा आज के दिन सन 1999 में हुआ था। सन 2008 में जजों की बहाली के मुद्दे को लेकर कोई समझौता ना होने के कारण प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने साझा सरकार से हटने का निर्णय लिया था और चीन में आए भीषण भूकंप से हजारों लोग मारे गए थे। आज कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जन्मतिथि है। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी का जन्म आज के दिन सन 2002 में हुआ था। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का जन्म आज के दिन सन 1989 में हुआ था। भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता ऋषि सुनक का जन्म आज के दिन सन 1980 में हुआ था। पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था नंदू नाटेकर, इनका जन्म 1933 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन किया था कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, इनका जन्म 1875 में आज ही के दिन हुआ था। जी कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल एवं परिपक्व लेखक, इनका जन्म आज के दिन सन 1895 में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगल आधुनिक नर्सिंग आंदोलन के जन्मदाता एक नर्स थी, उनका भी जन्म आज के दिन 1820 में हुआ था। बड़ौदा की महारानी सीता देवी का जन्म आज के दिन सन 1917 में हुआ था। और आज कई कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पुण्यतिथि है। बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार सुचित्रा भट्टाचार्य का निधन आज के दिन सन 2015 में हो गया था। हिंदी के कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन आज के दिन सन 1993 में हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले साहित्यकार धनंजय कीर का निधन आज के दिन सन 1984 में हो गया था। भारत की कथक नृत्यांगना अलकनंदा का निधन आज के दिन सन 1984 में हो गया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य जो आज के दिन यानी 12 मई से जुड़े थे। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी एवं लता मंगेशकर का गाया फिल्म जाने अनजाने का एक गीत। गीत के बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

और इस गीत के बाद भागलपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जो समाचार निकलकर सामने आए हैं, जिन्हें समाचार पत्रों ने अपने पृष्ठों पर जगह दी है, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। विक्रमशिला सेतु बीआरओ की 100 सदस्यीय टीम आज शाम भागलपुर पहुंचेगी। बेली ब्रिज के निर्माण का काम कल से शुरू होगा। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर 49 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा बेली ब्रिज बनाने का काम बुधवार से शुरू होगा। इसके लिए सीमा सड़क संगठन की 100 सदस्यीय टीम मंगलवार शाम तक यानी आज शाम तक भागलपुर पहुंचेगी और कल यानी बुधवार सुबह से युद्ध स्तर पर बेली ब्रिज कार्य निर्माण का काम शुरू करेंगे। उम्मीद है कि 20 दिनों में सेतु पर बेली ब्रिज से आवाजाही शुरू हो सकता है, जिसपे जो छोटी वाहन है उसके आने जाने का छोटी वाहन जो है वो उस पे आ जा सकेंगे। सुंदरवती महिला कॉलेज में हिंदी विभाग की छात्राओं को दी गई विदाई। सुंदरवती महिला विद्यालय के हिंदी विभाग में स्नातकोत्तर चतुर्थ संभाग की छात्राओं के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में फोटोग्राफी कक्षा शुरू। कला एवं संस्कृति विभाग के आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में फोटोग्राफी कला कक्षा के पहले बैच की शुरुआत की गई। जिला कला व संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हुए फोटोग्राफी के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र में रचनात्मकता गतिविधियों की श्रृंखला के तहत फोटोग्राफी प्रशिक्षण शुरू किया गया है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन और चयन परीक्षा के बाद पहले बैच में 35 प्रशिक्षुओं ने नामांकन कराया है। छात्राओं के लिए मंजूषा कला प्रशिक्षण का आयोजन। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था दृष्टि बिहार के मंजूषा प्रोडक्शन केंद्र में सुंदरवती महिला कॉलेज के इतिहास विभाग की 250 छात्राओं के लिए इंटर्नशिप आधारित मंजूषा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन प्रोफेसर हिमांशु शेखर ने किया, जबकि प्रशिक्षण का मार्गदर्शन मुख्य प्रशिक्षिका नम्रता कुमारी द्वारा किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की मनाई गई जयंती। बीएन कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के बांग्ला एवं अंग्रेजी विभाग ने IQAC के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार थे। राज्य स्तरीय कराटे में सबा ने जीता स्वर्ण। राज्य कराटे चैंपियनशिप 2026 में भागलपुर की बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। 9 और 10 मई को पटना के सेंट डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में सबा खातून ने 12 वर्ष और 40 केजी किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। ये थे भागलपुर एवं इसके आसपास से के क्षेत्रों से आने वाले समाचार, जिन्हें समाचार पत्रों ने अपने पृष्ठों पर जगह दी थी। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख?
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले कदम के निशान।
10: अंत में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार का गाया फिल्म ज्वेल थीप का ये गीत। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मा।

और अब चलते चलते एक नज़र मौसम सूचना पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से प्राप्त मौसम सूचना के आलोक में कल तक के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70% से 75% तथा दोपहर में 30 से 35% के बीच रहने की संभावना है। इस अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की भी संभावना है। ये थी मौसम सूचना जो हमें प्राप्त हुई है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर बिहार से। और अब चलते चलते हम आपसे बस इतना आग्रह करना चाहेंगे कि आप खुद और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें, खुद का ख्याल रखें और हमारा कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें। दीजिए आज के कार्यक्रम से अब हमें विदा। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
2: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
3: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
2: रूबरू होंगे आप खबरों से,
3: देश दुनिया की ताजा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
2: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
3: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
2: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर।
3: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
2: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
3: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
2: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर।
3: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
2: तो जरूर सुनिए
1: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ाऊं।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज़ और फिर उर्दू खबरनामा। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
3: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण दोरो और अजंता नेउग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे

0: सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
6: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
7: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
8: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमरीका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी टी20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
9: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई टी20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। हालांकि आईसीसी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
10: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यम समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. senior BJP leader Himanta Biswa Sharma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF, to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit

0: in 19 overs. Skipper Akshar Patel was the highest scorer with 56 runs. David Miller made 51 runs off 28 balls. For Punjab Kings, Arshdeep Singh and Yash Thakur took 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. Put into bat, Punjab Kings scored 210 for 5 in the stipulated 20 overs. Shreyas Iyer was the top scorer with 59 runs, while Priyansh Arya made 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc and Madhav Tiwari scalped 2 wickets each. Madhav Tiwari was adjudged player of the match. Today, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, thunderstorms and hailstorms are likely to prevail over Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir for the day. The Met Department has predicted thunder squall with wind speed reaching up to 60 km per hour over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar and Uttarakhand today. Thunderstorms and lightning are likely to prevail over Uttar Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha, coastal Andhra Pradesh, Karnataka and the northeastern states today. The IMD has issued an orange alert for rain in Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Bageshwar and Pithoragarh districts of Uttarakhand for the next 36 hours, while a yellow alert has been issued for the remaining districts. There is possibility of hailstorms and gusty winds in various parts of the state during this period. And now for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
1: Thank you, Abhishek. The Somnath Amrit Mahotsav is at the sacred Somnath Temple in Gir Somnath, Gujarat, finds prominent mention in most of the dailies this morning. The statesman, quoting Prime Minister Narendra Modi, says, Somnath Temple stands as beacon of unwavering faith, while the pioneer quotes him as saying, no power can bend India. Prime Minister Modi salutes scientists on National Technology Day, highlights push for self-reliant India, reports the statesman. Second day, Prime Minister makes austerity push, invokes COVID-era habits, leads the Indian Express. The Pioneer in its editorial piece says, rising crime against senior citizens. The paper elaborates that as India moves steadily towards becoming an aging nation, ensuring safety, dignity and emotional security for senior citizens must become a national priority. India, at present, is a young nation, but it is aging rapidly. By 2050, the country will have a significant elderly population. As the country progresses and new technologies emerge, they also have a downside. They are alienating a large section of society, senior citizens who find it difficult to cope with evolving technology and changing time. Suvendu government begins to implement key pledges, notice the Asian Age. New Delhi, all set for first summit of International Big Cat Alliance in June, writes the Economic Times. And finally, the Beatles' first official London museum, called the Beatles at 3 Samuel Row, is set to open next year in the Mayfair building, where the band recorded its final album and played its last gig, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ED arrests former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Dom Dom municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मग़रिबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़रे मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में आसाम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमराह चार वज़रा भी हलफ लेंगे, जिनमें बीजेपी के दो एजीपी और बीपीएफ के एक एक वजीर होंगे। ईडीबी जनूबी दमदम म्यूनिसपलिटी भर्ती घोटाले मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिदा अरब इमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बामुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बोहरान के दौरान जर मुबादला बचाने के लिए अवाम से ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कोरोना के वक्त के तौर तरीकों जैसे घर से काम करने, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, नीस पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल को दोबारा अपनाने की अपनी सबका अपील को दोहराया। दरामदात में कमी लाने और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इज्तमाही कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हम सभी को मिलकर मुल्क के वसाइल पर बोझ कम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो, जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
2: वजीर आजम ने कहा कि भारत बैरूनी मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर जर मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के 22 दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़े।
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
2: उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मुफाद में हर छोटा और बामाने कदम जरूरी है। वजीर आजम ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कार पुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वह आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डॉक्टर सरमा और उनकी वजारती काउंसिल को ओहदे और राजधानी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नमानीगार से।
4: डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के बतौर वजीर आला के अलावा वजारती काउंसिल के 4 अराकीन भी आज हलफ लेंगे। ये 4 काबिनी वजीर हैं, रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दीगर कई मरकजी वुजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला शिरकत करेंगे। हलफबरदारी की तकरीब की मेजबानी के लिए गुवाहाटी के कानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। तकरीब के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा को देखते हुए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। कामरूप मेट्रो जिला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक और गाड़ियों की हसब मामूल आमोदरफ को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।

0: गर्द कैंपों को खासतौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने साल 2025 में पहलगाम मौके को अंजाम दिया था। जनाब स्वामीनाथन पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तबसरों से मुतालिक रिपोर्ट पर रायजनी कर रहे थे जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था कि इस्लामाबाद के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की मुहिमजोई का नतीजा इंतहाई खतरनाक और वसी तर होगा। जम्मू कश्मीर में हुकाम ने जरूरी इजाजत नामे हासिल किए बगैर काम करने की पादाश में बाइक और कैब खिदमत फराहम करने वाली कंपनी रैपिडो पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू के आरटीओ जसमीत सिंह ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि रैपिडो कंपनी एग्रीगेटर सर्टिफिकेट के बगैर काम कर रही थी जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उसकी खिदमत गैरकानूनी हो गई है। कानून की वजारत आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर के ब्लॉकों की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू करने जा रहा है। दूसरे मरहले के तहत वजारत जम्मू और कश्मीर हुकूमत के तान से नीलामी के लिए 12 चूना पत्थर के ब्लॉक पेश कर रहा है। ये ब्लॉक अनंतनाग राजौरी और पुंछ अजला में वाकई है और इनमें नए शिनाख्तशुदा ब्लॉक्स के साथ साथ दूसरी कोशिश के साथ दोबारा नीलामी किए जाने वाले दोनों ब्लॉक्स शामिल हैं जो वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल और सनअत की मुस्तकिल शिरकत के तई हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करते हैं। बांग्लादेश में भारत में मुनक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहत जानने के लिए एक तीन रुकनी तहकीकती कमेटी तश्कील दी है। 10 मई के सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक साबिक एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर AKM वलीउल्लाह और इस कमेटी की सरबराही करेंगे जबकि बांग्लादेश के साबिक कप्तान और मौजूदा चीफ सेलेक्टर हबीबुल बशर और सुप्रीम कोर्ट के वकील फैसल दस्तगीर कमेटी के अरकान में शामिल हैं। कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो 15 काम के दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम मोदी के गुजरात दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिदा सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट श्रद्धा की अलामत है और ये मंदिर हजारों बरसों से तहरीक का सरचश्मा रहा है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है कि मुल्क में हर तरह के ईंधन और तवानाई का वाफिर जखीरा मौजूद है, हुकूमत का बयान। इसी अखबार ने एक और अहम सुर्खी लगाई है, हुकूमत ने कहा कि VVG रामजी एक्ट मूल भर के देही इलाकों में 1 जुलाई से नाफिज होगा।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नजर अवाम से जर मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीराना के तौर पर हलफ लेंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी भर्ती घोटाला मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिद अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहत जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप

0: अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही रहती ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंश अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर सीट के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। 6,000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। प्रदेश में फॉर्मर आईडी बनाने के लिए आज से 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान। और मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: इधर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के संदेश को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार समेत देश के सभी नागरिकों को संसाधनों का संयमित और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक संतुलन, ऊर्जा संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत आधार मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की

0: सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फल स्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंध किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तेल बाजार में उथल पुथल और कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच लागू युद्ध विराम बेहद मुश्किल स्थिति में है, जिससे स्थायी शांति की उम्मीदों पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले ईरान ने अमेरिका की शांति प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की शर्तों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्यकर जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए दोनों जिलों में 25 बूथ बनाए गए हैं। इनमें भोजपुर में 14 और बक्सर में 11 बूथ हैं। उपचुनाव में 6000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशी की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। प्रत्याशियों में जदयू के कन्हैया प्रसाद, राजद के सोनू कुमार के साथ 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मतों की गणना 14 मई को आरा में की जाएगी। ये सीट पूर्व MLC राधाचरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। प्रदेश में किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए आज से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियान 30 जून तक चलेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए यह अभियान फिर से शुरू हो रहा है। कृषि विभाग के अनुसार फार्मर ID बनाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और स्वयं के नाम से दर्ज जमाबंदी की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा नजदीकी सामान्य सेवा के लिए या पंचायत के कृषि समन्वय से संपर्क कर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 47,85,000 से अधिक किसानों की फार्मर ID बनाई जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: रेडियो को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। देश भर में इस वर्ष 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम देश में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
3: दिनांक 12 मई राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में वृद्धि हुई है। इस अवधि में कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में पहली बार मैथिली भाषा को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6 सितंबर को होने वाली परीक्षा के 22वें संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून है। इन रिक्तियों में मैथिली भाषा के लिए कोड 25 अंकित किया गया है। निगरानी विभाग ने वैशाली जिले के लालगंज अंचल में तैनात अमीन सुजीत कुमार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अमीन जमीन की मापी और परिमार्जन के लिए रिश्वत ले रहा था। इधर निगरानी की टीम ने सीतामढ़ी जिले में पुपरी अंचल निरीक्षक कार्यालय के रीडर गोविंद कुमार चौधरी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एक कांड में नाबालिग का नाम हटाने के एवज में रिश्वत ले रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस ने बक्सर से 2 समेत 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में बक्सर के विशाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था। मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को जमानत दे दी है। मुजफ्फरपुर के बालगृह से 10 बच्चे के फरार होने के मामले में अनुमंडल पदाधिकारी तुषार कुमार ने जिले के नरौली स्थित बाल आश्रय गृह का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा गार्ड की लापरवाही का उजागर हुआ है। प्रशासन ने बच्चों की जल्द बरामदगी का दावा किया है। राजधानी पटना में 5 जुलाई से इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग T10 का आयोजन किया जाएगा। खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने कल के ऊर्जा स्टेडियम में इस लीग के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। इस अवसर पर लीग के ब्रांड एम्बेसडर श्री तिवारी ने कहा कि इसके लिए 31 मई तक खिलाड़ियों का पंजीकरण होगा। वहीं 1

जून से 20 जून तक जिला स्तर पर खिलाड़ियों का ट्रायल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 जून को खिलाड़ियों की नीलामी होगी। छत्तीसगढ़ में

की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार चिताया, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में एक। अखबार लिखता है, सरकार बोली घबराए नहीं, पेट्रोल डीजल की कमी नहीं। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखता है, 30 दिन में समाधान नहीं तो अफसर स्वतः निलंबित। दैनिक जागरण लिखता है, आज जारी हो सकता है सीबीएसई 12वीं का परिणाम। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल पहल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सीजेआई सूर्यकांत ने लॉन्च किया वन केस वन डेटा सिस्टम, एक क्लिक पर मिलेगा केस का हाईकोर्ट से निचले कोर्ट तक का डेटा। आज अखबार का शीर्षक है, खत्म किया गया निगरानी, अन्वेषण ब्यूरो का अलग कैडर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर सीट के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। 6000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। प्रदेश में फॉर्मर आईडी बनाने के लिए आज से 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान। और मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna cbs@gmail.com।

0: ಶುಭ್ ವಾಣಿ
1: ಲಾಭವಾಣಿ
0: ಆಕಾಶವಾಣಿ
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 9:06 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। पहला गाना हमने फिल्म शागिर्द से लिया है, लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग
4: अरमान मल्लिक को अब आइए सुनते हैं फिल्म साइना में। गीतकार कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं आमाल मलिक।

आशा भोसले और साथियों को अब आइए सुनते हैं फिल्म साहब बीबी और गुलाम में। गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

कनिका कपूर को आप सुन रहे थे फिल्म बाजार में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। पेश है हमारा साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़्म-ए-उर्दू। प्रस्तुत करता है मोहम्मद सरशार अहमद।

बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का बोझ हल्का करने की कोशिश करता रहा। और जब उसे बीए की डिग्री मिल गई तो उसे ऐसा लगा जैसे मंजिल अब करीब आ गई है। उसके दोस्त उसकी बातें सुनते तो उसका मजाक उड़ाते, बीए, हाँ, ये भी कोई डिग्री है? डिग्री मिल गई, यहाँ तो एमए और पीएचडी होल्डर जूतियाँ चटखा रहे हैं, बीए पास की क्या औकात है? कोई टेक्निकल पढ़ाई करते तो कुछ फ़ायदा भी होता, तुम तो बस ट्यूशन ही पढ़ाते रहो। वो उसकी हौसला शिकनी करते मगर वो इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो जानता था कि ये सब उससे जलते हैं, इसे आगे बढ़ता नहीं देख सकते। जो कुएं के मेंढक होते हैं वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी वैसे ही रहें। उसने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। अब उसके पास दो काम रह गए थे, मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करना और नौकरी के लिए अप्लाई करना। और जब वो किसी नौकरी का इश्तहार देखता फौरन दरख्वास्त दे देता, और जब पहली बार उसे इंटरव्यू लेटर मिला तो उसे ऐसा लगा कि नौकरी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। कल उसका पहला इंटरव्यू था। ये सोच वो रात भर करवटें बदलता रहा। पूरी रात सोते जागते गुजरी। जब नींद आती तो तरह तरह के ख्वाब दिखाई देते। कभी देखता कि वो किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा है, कभी देखता कि वो किसी पहाड़ पर चढ़ रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ। और जब नींद उचट जाती तो वो जागती आँखों से ख्वाब देखने लगता। खैर, खुदा खुदा करके उसने वो रात काटी। सुबह बिस्तर छोड़ते ही वो तैयारी में लग गया। घर वालों को उसने बता दिया था कि आज उसका पहला इंटरव्यू है, उसे वक्त से पहले पहुंच जाना है। घर वाले बहुत खुश थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कामयाबी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। पहला इंटरव्यू, वो अच्छे कपड़े पहन कर गया, परफ्यूम इस कदर लगा लिया कि पूरा घर महक उठा। वो वक्त से काफ़ी पहले इंटरव्यू गाह पहुँच गया। वहाँ पहुँचने वाला वो पहला शख्स था। वहाँ मौजूद चपरासी ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। वो इंतज़ार गाह में बैठ गया, फिर एक एक करके लोग आते गए और पूरा कमरा भर गया। इंटरव्यू शुरू हुआ, बारी बारी से उम्मीदवारों को नाम लेकर पुकारा जाने लगा। उम्मीदवार अंदर आते जाते और फिर थोड़ी देर बाद मुंह लटकाए वापस आते। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने एतमाद के साथ कदम बढ़ाए। उसका हौसला बुलंद था। इंटरव्यू रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ बैठे लोगों ने हवा में कुछ सूंघने की कोशिश की और फिर उसकी जानिब मुस्कुरा कर देखा। पहले उससे बैठने के लिए कहा गया, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, आपका नाम? आदिल हुसैन। इतना कहते हुए उसने अपनी फाइल आगे बढ़ाई। चेयरमैन ने उसकी फाइल खोल कर देखी। मैट्रिक फर्स्ट क्लास, इंटर फर्स्ट क्लास, बीए ऑनर्स भी फर्स्ट क्लास। फर्स्ट, एक मेंबर ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? आदिल ने ठोस लहजे में जवाब दिया, सर मैं बहुत ईमानदार हूँ। चेयरमैन ने उसे गहरी नज़रों से देखा, फिर पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं? आदिल ज़रा से घबरा गया लेकिन फिर वो संभल कर बैठ गया, सर मैंने कभी चीटिंग नहीं की। चेयरमैन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगले सवाल का पत्थर फेंका गया, और सबसे बड़ी कमज़ोरी? आदिल बोला, सर मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इंटरव्यू लेने वाला मुस्कुराया, ये तो खूबी है। आदिल ने सर झुकाकर कहा, सर मैंने कहा ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। यूं पहला इंटरव्यू नाकाम हो गया। अगले इंटरव्यू के लिए उसने यूट्यूब देखकर परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज सीखी। वो बिल्कुल तन कर बैठा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे कुर्सी ने उसे जकड़ रखा हो। पहला सवाल, आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? उसने रटे रटाए अंदाज में कहा, सर मैं खुद को आपकी कुर्सी पर देखता हूँ। इंटरव्यू लेने वाला चौंका, ओ मेरी जगह? आदिल घबरा गया, नहीं नहीं सर, मेरा मतलब है आपके साथ, नहीं पीछे, यानी कंपनी में। ठीक है, हम आपको बाद में बताएंगे। दूसरा इंटरव्यू यूं ही गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर बार कोई ना कोई गड़बड़। कभी वो ज्यादा बोल देता, कभी बिल्कुल खामोश हो जाता, कभी सवाल समझ नहीं आता, कभी जवाब ही ज्यादा दे देता। आहिस्ता आहिस्ता आदिल थकने लगा। उसे अपने दोस्तों की बात याद आई, वो सिर्फ ट्यूशन पढ़ा सकता है। उसके ख्वाब धुंधलाने लगे। उसे अपनी डिग्रियां कागज़ के बेवक़्त टुकड़ों की तरह लगने लगीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इंटरव्यू देते वक्त उसकी जहानत और फतानत कहाँ चली जाती है। एक दिन वो घर आया, बैग एक तरफ फेंका और माँ से बोला, अब मुझसे नहीं होता, मैं थक चुका हूँ, हर जगह नाकामी ही हाथ लगती है, पता नहीं मुझ में ऐसी क्या कमी है। उसकी माँ ने मुस्कुरा कर

0: चाय दी और कहा, कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मैं तो जी तोड़ मेहनत करता हूँ। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता बेटा, बगैर थके मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुमने एक मकड़ी और बादशाह का किस्सा नहीं पढ़ा? आदिल बचपन ही में वो किस्सा पढ़ चुका था। उसने कहा, पढ़ चुका हूँ माँ, वही किस्सा ना जिसमें एक बादशाह बार बार जंग हार जाता था। एक दफ़ा जब वो हार कर मैदान जंग से भागा तो एक खंडहर में पनाह ली। वहाँ उसने देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर थोड़ा ऊपर जाने पर वो ज़मीन पर गिर जाती। वो बार बार ऊपर चढ़ती और फिर नीचे गिरती। आखिरकार वो कामयाब हो गई। बादशाह ने जब देखा तो उसे ख्याल आया कि एक कमज़ोर मकड़ी जब हार नहीं मानती तो फिर वो क्यों हार मान ले। वो एक नए जोश के साथ उठ खड़ा हुआ और इस दफ़ा उसने दुश्मन को खदेड़ दिया। आदिल खामोश हुआ तो माँ ने कहा, बेशक यह किस्सा है, अब बताओ कि इस किस्से से हमें क्या सबक मिलता है। यही ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आदिल को अपनी रगों में खून की गर्दिश तेज़ होती महसूस हुई। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और कहा, मैं नाकाम नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। अगले इंटरव्यू में वो बिल्कुल बदला हुआ था। इस बार ना ज़्यादा परफ्यूम, ना रटे रटाए जवाब, ना दिखावा। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, आप अब तक कितनी जगह इंटरव्यू दे चुके हैं? कम अज़ कम 10 इंटरव्यू तो दे ही चुका हूँ, आदिल ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया। इंटरव्यू लेने वाले ने उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखा, फिर पूछा, आप बार बार इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? सर, क्योंकि मैं हार नहीं मानता, हर इंटरव्यू मुझे कुछ बेहतर बना रहा है, आदिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही, फिर इंटरव्यू लेने वाला मुस्कुराया, हमें ऐसे ही लोग चाहिए, वेलकम टू द टीम। आदिल को यकीन ही नहीं आया। बाहर निकलकर उसने आसमान की तरफ देखा और हंस पड़ा, इतने इंटरव्यू देने के बाद आखिरकार मैं कामयाब हो ही गया। जिंदगी के इंटरव्यूज मुश्किल ज़रूर होते हैं, मगर हर नाकामी हमें अगली कामयाबी के करीब ले जाती है। लेकिन और बातों के साथ साथ किसी की हौसला अफजाई भी ज़रूरी होती है।
1: जावेद भाई, अभी हम लोग सामेईन को एक अफसाना सुनवा रहे थे।
2: अफसाने का उन्वान क्या था?
1: उन्वान था हौसला।
2: हौसला,
1: जी जी जी। और अफसाना निगार थी मोहतरमा निशात परवीन। हौसले के ताल्लुक से जो उन्होंने पैगाम दिया है जावेद भाई, वाकई बड़ी अच्छी बात बताई है। हौसले की पुराज़म, हौसले के माने उसकी बात बड़े खूबसूरती के साथ उन्होंने कहानी में अपने पेश किया है,
2: बिल्कुल,
1: जो हमारे सुनने वालों के लिए यकीनी तौर पर फायदामंद
2: साबित हो, खासकर नई नस्लों के लिए फायदा।
1: जी जी जी,
2: हिम्मत और हौसले से काम लेने चाहिए।
1: जी जी,
2: और हिम्मत और हौसले से काम लेकर ही खलाई परवाज हम कर सकते
1: हैं, क्या बात
2: जो आज का दिन मनाया जा रहा है, तो इसमें भी हौसले की काफ़ी अशद ज़रूरत है। और फैज भाई देखिए, तो इतना अच्छा समझिए कि इन्होंने जब अफसाना पेश किया तो हम मोहतरमा निशात परवीन को भी मुबारकबाद देते हैं।
1: बेशक बेशक, मुबारकबाद
2: भी है। और फैज भाई देखिए, अब हम अभी तो हमारे पास वक्त बहुत है, और अब इसी अदबी और जज्बाती फ़ज़ा को बरकरार रखते हुए सामेईन को अगले मरहले की तरफ लिए चलते हैं, जहाँ सुखन की चाशनी और अकीदत की खुशबू आपका इस्तकबाल करेगी, सामीन का इस्तकबाल करेगी।
1: तो पेश है कलाम शायर के तहत जनाब गुलाम अहमद रजा का मुंतखब कलाम, जिसमें आप एक जान आप कहिए कि नातिया कलाम की रूहानी कैफियत से महजूज होंगे,
2: बिल्कुल,
1: और दूसरी जानिब एक खूबसूरत गजल की लताफत भी महसूस करेंगे,
2: यानी दोनों पहलू, नातिया कलाम और गजल की लताफत भी।
1: जी जी,
2: तो पेश है सामीन कलाम शायर के तहत जनाब गुलाम अहमद रजा का नातिया और गजलिया कलाम।
3: नाते पाक का मतला मुलायदा फरमाएं।

0: जावेद भाई, अभी हम लोग सामईन को कविता पौडवाल, सोनू निगम और शैलेंद्र की आवाज़ में कव्वाली सुनवा रहे थे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कव्वाली सुनने में भी हमारे सामईन को यकीन तौर पर लुत्फ मिला होगा, मज़ा आया होगा जी,
1: क्योंकि ये कव्वाली भी फिल्मी थी।
0: जी जी जी।
1: और फैज भाई, देखिए इसी माहौल को
0: अच्छा
1: और भी खूबसूरत बनाने के लिए सामईन को एक और कव्वाली सुनाते
0: हैं। जी जी जी जी, क्या बात है।
1: कव्वाली का सिलसिला और माहौल भी है।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: और फैज भाई, इस कव्वाली की जो आवाज़ है भूपेंद्र सिंह, अभिजीत और सोनी निगम, तो आइए सामईन सुनते हैं एक और कव्वाली।

0: जावेद भाई, अभी हम लोग सामेन को भूपेंद्र सिंह, अभिजीत और सोनू निगम की आवाज़ में कव्वाली सुनवा रहे थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और फैज भाई, अब हम लोग वक्त की बंदिश में आ चुके हैं।

आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़्म उर्दू। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार हैं विश्वनाथ ठाकुर। इनके स्वर में आरंभ में सुनते हैं मनौन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। गायक कलाकार हैं विश्वनाथ ठाकुर। इनके स्वर में अब आइए सुनते हैं देवी गीत।

लोक गीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे विश्वनाथ ठाकुर। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11:01 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो का एक गीत। आवाज़ें हैं पलक मुच्छल और साथियों की।

लीजिए आप सुनिए फिल्म बॉर्डर का गीत, बॉर्डर टू का गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और पलक मुच्छल ने।

परम सुंदरी फिल्म का गीत सुनिए, आवाज है सचिन जिगर, सुमंत मुखर्जी और अमिताभ भट्टाचार्य की।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से, प्रसारण आपके सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

दोस्तों, गुलदस्ता कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे फिल्म जगत के ऐसे घराने की जिसने बॉलीवुड को कई दशकों तक अपने अभिनय से, अपने प्रोडक्शन से, अपने निर्देशन से कई यादगार फिल्में दी और ये फिल्में उनकी कई पीढ़ियों के द्वारा दी गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज कपूर ख़ानदान की। कपूर ख़ानदान कई पीढ़ियों से फिल्म जगत में सक्रिय है। सबसे पहले उनके पितामह पृथ्वीराज कपूर के बारे में बात करें, जिन्होंने भी

फिल्में दुनिया में अनेकों अनेक फिल्में दी। आइए सबसे पहले सुनते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म मुगले आजम का ये गीत।

来来来。

पृथ्वीराज कपूर को तीन पुत्र हुए, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। तीनों ही पुत्रों ने फिल्म दुनिया में खूब नाम कमाया। बड़े पुत्र राज कपूर ने तो अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी खूब फिल्में बनाई। 1964 में उन्होंने एक फिल्म बनाई जो त्रिकोणात्मक प्रेम संबंध पर आधारित था। फिल्म का नाम था संगम। आज ये सुनते हैं उसे फिल्म का ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राज कपूर ने कई फिल्मों का निर्माण भी किया, उनका निर्देशन भी किया। 70 के दशक में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बॉबी। इसके गीतों ने क्या धूम मचा कर रख दी। आइए सुनते हैं अपने समय का ये लोकप्रिय गीत।

पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र हुए जिन्हें हम शम्मी कपूर के नाम से जानते हैं। चुलबुले अंदाज में उन्होंने फिल्मी दुनिया में दर्शकों को खूब झुमाया। उनके अभिनय करने का अंदाज ही कुछ और था दोस्तों। कई फिल्में उन्होंने दी जिसे लोग लंबे समय तक याद करेंगे, खासकर उनके अभिनय को। आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा अभिनीत ये फिल्म राजकुमार का।

पृथ्वीराज कपूर के तीसरे पुत्र हुए शम्मी कपूर। यंग बॉय की तरह दिखने वाले शम्मी कपूर ने फिल्म जगत में कई यादगार फिल्में दी। उनके द्वारा अभिनीत एक फिल्म आई जब जब फूल खिले। कश्मीर की वादियों पर आधारित इस फिल्म ने खूब नाम कमाया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे थे फल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

बहनों, श्रीना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है और पेड़ पौधे प्रकृति की अनमोल देन है। बहनों, पेड़ पौधे के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। अगर हम बात करें तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए फल और अनाज, रहने के लिए घर, लकड़ी तथा कई प्रकार की दवाइयाँ पौधों से ही प्राप्त होती है। इसलिए बहनों, पौधों का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को इसी बात के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 12 मई यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और बहनों, इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पौधों की सुरक्षा, उनकी देखभाल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। बहनों, आज के समय में बढ़ता प्रदूषण जो हम देखते चले आ रहे हैं, और जंगलों की कटाई, रासायनिक दवाइयों का अत्यधिक उपयोग और बदलता मौसम पौधों के लिए खतरा बन गया है। कई बार पौधों में कीड़े और बीमारियां लग जाती है जिससे फसलें खराब हो जाती है। इसका सीधा असर बहनों अगर हम देखें तो किसानों और आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए पादप स्वास्थ्य का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की बड़ी आबादी खेतों पर निर्भर करती है। किसान दिन रात मेहनत करके खेतों में अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, और अगर पौधे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अच्छी फसल नहीं होगी। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान और लोगों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बहनों, इसलिए पौधों की रक्षा करना किसानों के साथ साथ हम सभी की जिम्मेदारी है।

जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है बहनों। पर आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए तेजी से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं।

और मिट्टी को सुरक्षित रखने में भी पेड़ पौधे मदद करते हैं। अगर पौधे नष्ट हो जाएंगे तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पौधों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ जरूरी कदम हैं जो उठाने चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पौधों में रासायनिक दवाइयों का उपयोग कम करना चाहिए। पानी की बर्बादी हो जहाँ तक हो सके उसे रोकना चाहिए। पौधे केवल पर्यावरण की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बहनों, बल्कि लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। गाँव और शहरों में लगे वृक्ष हमें छाया देते हैं। कई बड़े बड़े पेड़ हैं जिसके नीचे अगर हम गर्मियों में बैठें तो सचमुच बहुत ही आनंद आता है। और कई औषधीय पौधे भी हैं जो बीमारी के इलाज में काम आते हैं। तो बहनों, अंत में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ पौधे ही स्वस्थ जीवन का आधार है। यदि पौधे सुरक्षित रहेंगे तो धरती पर जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने साथ साथ कम से कम दो वृक्ष जरूर लगाए और लोगों को भी जागरूक करे लगाने के लिए वृक्ष। हमें अपने आसपास हरियाली बढ़ानी चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुंदर पृथ्वी छोड़नी चाहिए। यह मेनू दिवस इसी बात का सबसे बड़ा उद्देश्य है इस दिवस का। और वैसे भी बहनों, हरी भरी धरती, नदियाँ मन को सुकून तो देती ही हैं और सचमुच सभी को बड़े अच्छे लगते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बहनों, हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह एक अभिशाप है, पर यही बाल विवाह का उद्देश्य पहले सामाजिक सुरक्षा, परंपरा और आर्थिक कारणों से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज समाज समझ चुका है कि बच्चों का बचपन, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बाल विवाह को रोकना और सही उम्र में विवाह करना ही समाज के लिए और समाज के विकास के लिए जरूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। विषय है कानूनी सलाह, बाल विवाह कानूनी विवेचना। भेंट वार्ताकार है डॉक्टर सुनीता कुमारी और उनसे बातचीत कर रही है नौमी शांति हेमब्रम।
2: बहनों नमस्कार। कानूनी सलाह के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे बाल विवाह के संदर्भ में। अगर हम अपने समाज की ओर देखें, थोड़ा पहले भी और अभी की दशा भी देखें, तो सामाजिक त्रासदियों में कुछ एक ऐसी त्रासदियाँ हैं जो हमें पीछे की ओर ले जा रही हैं। हम दहेज प्रथा की बात कह लें, या अभी आधुनिक समय में हम कन्या भ्रूण हत्या जैसी बात भी देख लें। इसी के साथ साथ है बाल विवाह। सती प्रथा की भी कुरीति रही थी, जब महिलाएं काफ़ी त्रासदीपूर्ण दौर से गुजरती थी। अब हालांकि उसमें बहुत कमी आई है। अब बाल विवाह की बात हमारे राज्य में सरकारी तौर पर भी बड़े ज़ोर शोर से की जा रही है, दहेज उन्मूलन, दहेज प्रथा के उन्मूलन की और बाल विवाह के रोकथाम की। तो आज इसी पर हम उसकी कानूनी विवेचना के बारे में थोड़ा जानेंगे, और इसके लिए हमारे साथ हैं शहर की जानी मानी कानूनविद और अधिवक्ता डॉक्टर सुनीता कुमारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दरअसल हम बाल विवाह को किस रूप में ले सकते हैं, बाल विवाह है क्या?
3: सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार। कहने का मतलब ये है कि बाल विवाह ऐसा विवाह है जब किशोर एवं किशोरी के माता पिता अपने लड़की लड़कियों की शादी वैधानिक उम्र अर्थात लड़के की स्थिति में 21 वर्ष से कम और लड़कियों की स्थिति में 18 वर्ष से कम उम्र में जब विवाह कर देने की सहमति देते हैं, या समाज के द्वारा ऐसे विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है जिसकी कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। शादी हेतु निर्धारित उम्र सीमा से कम उम्र में शादी करना ही बाल विवाह है। अच्छा। और यह एक प्रकार से सामाजिक कुरीति के रूप में बढ़ रहा है, इसके लिए जागरूकता लाना जरूरी है।
2: और बहुत समय से इस तरह की बात हमारे समाज में देखने को मिल रही है। कभी कभी तो ये तक कि बहुत ही कम उम्र में, साल भर हो, दो साल हो, चार साल, तीन साल में भी इस तरह से विवाह कर दिया जाता था। तो आखिर इन सब के पीछे क्या वजह रही होगी कि इस तरह की बात को माता पिता भी स्वीकारते थे और समाज भी इस पर कुछ बोलता नहीं था?
3: देखिए, ये कुरीति या प्रथा भारत में शुरू से नहीं थी।
2: अच्छा।
3: ये दिल्ली सल्तनत के साथ
2: जी
3: अस्तित्व में आया।
2: अच्छा।
3: और जब राजशाही प्रथा प्रचलन में थी,
2: हाँ।
3: तो भारतीय अपनी लड़कियों को विदेशी शासकों से बचाने के लिए,
2: हाँ।
3: या अपनी लड़कियों को बलात्कार या अपहरण से सुरक्षित रखने के लिए,
2: हाँ।
3: बचाव के रूप में बाल विवाह कर दिया करते थे।
2: अच्छा।
3: और यह धारणा लोगों के मन में घर गई थी कि लड़कियां बोझ होती हैं,
2: हाँ।
3: जितना जल्दी इनकी शादी कर दी जाए वो, हाँ। बोझ उतर जाएगा
2: जी,
3: और सर्वथा शिक्षा का भी अभाव उन लोगों में रहा
2: जी।
3: और रूढ़िवादी सोच, अंधविश्वास और

0: आर्थिक स्थिति भी इसके लिए काफी जिम्मेदार रहा है।
1: तो कुल मिला के कहें कि सामाजिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी या राजनीतिक परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थी जिसने इस तरह की सोच को जन्म दिया। तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते रहे हैं और आज भी क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं?
0: देखिए, बाल विवाह तो किसी भी मायने में फायदा दे नहीं सकता
1: जी,
0: इसकी हानियां ही हानियां हैं समाज में
1: जी।
0: इससे तो शिशु एवं माता की मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है
1: जी,
0: और साथ ही साथ शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बच्चे भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है
1: जी।
0: अब परिवक्ता की स्थिति में अपनी जिम्मेदारियां लड़कियां पूर्ण रूप से वहन नहीं कर पाती, जिससे घरेलू हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है
1: जी।
0: और चिकित्सीय सर्वे रिपोर्ट जो दिल्ली एम्स ने करवाई थी, इस बात का खुलासा हुआ कि HIV जैसे यौन संक्रमित रोग होने का हमेशा खतरा बना रहता है। अतः इसके लिए बड़े पैमाने पर रोकथाम की आवश्यकता है और हम आप ही मिल करके इसके रोग के लिए उपाय ढूंढ सकते हैं।
1: लेकिन जैसा कि हमारा विषय है कि बाल विवाह एक कानूनी विवेचना, इसका मतलब है कहीं कानून भी इसकी रोकथाम के लिए या इससे बच्चों को बचाने के लिए अब आगे आ चुका है, तो वो क्या क्या कानूनी प्रावधान हैं?
0: देखिए, कानूनी प्रावधान तो लंबे समय से होते रहे, ब्रिटिश काल से ही इसके लिए प्रयासरत थे। अनेक सामाजिक संगठनों ने काफी प्रयास किया कि ये बाल विवाह समाप्त हो जाए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1929 में एक बाल निरोधक कानून एक बिल पारित किया, बाल विवाह निरोधक कानून, जिसे शारदा एक्ट से संबोधित किया जाता था। शारदा एक्ट में उम्र, वैधानिक उम्र निश्चित किए गए कि लड़कों के लिए विवाह के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई। लेकिन विवाह इस अधिनियम से बाल विवाह रुका तो नहीं, लेकिन इसके बाद पुनः जब भारत आजाद हुई तो भारत ने अपने आजाद भारत में एक नया मतलब विधेयक पारित किया और इस अधिनियम का नाम रखा गया बाल विवाह अधिनियम 1955। इसमें भी वैधानिक उम्र विवाह के लिए रखा गया और विवाह के लिए जो वैध कारण थे उनमें एक वैध कारण इनको भी रखा गया कि विवाह की उम्र लड़कियों के लिए तो 15 वर्ष ही निर्धारित की गई थी और लड़कों के लिए 18 वर्ष।
1: अच्छा।
0: लेकिन जैसे ही बाल विवाह निरोध अधिनियम 1978 पारित हुआ
1: जी,
0: उसमें उम्र सीमा लड़कों के लिए विवाह के लिए 21 वर्ष कर दिया गया
1: जी,
0: और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। तो उस जो 1955 में जो बाल विवाह अधिनियम पारित किए गए थे उसमें संशोधित कर दिया गया
1: जी,
0: और इस विवाह अधिनियम में ये भी संशोधन किया गया कि जो भी विवाह बाल विवाह है इस वैधानिक उम्र से नीचे की उम्र में है वह विवाह जो है शून्य है और साथ ही साथ दंडनीय भी बना दिया गया।
1: अच्छा,
0: दंड इस मायने में किया गया कि जो कोई भी ऐसा व्यक्ति बाल विवाह करता है उसको विवाह अधिनियम की धारा 18 खंड क के अंतर्गत ये है आपका 15 दिनों की सजा, साधारण कारावासी है और 1000 का जुर्माना, साथ दोनों साथ ही साथ चल सकता है। लेकिन फिर भी वो समाज में इतना इफेक्टिव हो नहीं पाया
1: जी,
0: और बाल विवाह बढ़ते ही चले गए।
1: हाँ, तो ये जो आपने अधिनियम की बात बताई, ये जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, इससे समाधान की दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है?
0: समाधान के लिए सरकार ने सख्त कानून अधिनियम पारित किया 2006 में
1: जी,
0: बाल निरोध अधिनियम 2006 जो 1 नवंबर 2007 से प्रभावित हुआ, और इसमें सबसे बड़ी मायनों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह जो अधिनियम है सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं होगा, वरन मुस्लिम समुदाय और समाज के सभी वर्गों पर यह लागू होगा। और इसमें जो मतलब नियम बनाए गए उसमें धारा 7 के अंतर्गत अपराधों के अनुसंधान तथा गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है और यह पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी क्योंकि यह अजमानती अपराध बना दिया गया, और साथ ही साथ पुलिस बिना वारंट के ये कार्रवाई को शीघ्रतर आगे बढ़ा सकती है।
1: हाँ।
0: इस अधिनियम की धारा 8 में यह भी प्रावधान किया गया कि बाल विवाह के संबंध में दांडी कार्रवाई प्रथम श्रेणी के मेट्रो मतलब दंडाधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं, और धारा 9 के अंतर्गत यदि कोई पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा है और वह 18 वर्ष की कम महिला से विवाह करता है तो उसके लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है कि वह 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए की राशि अर्थदंड में उनको लगेगा।

0: जी जी
1: साथ ही साथ धारा 9, 10, 11 के अंतर्गत बाल विवाह करवाने वाले को, स्वीकृति प्रदान करने वाले को, सहयोग करने वाले को तथा बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले को भी 2 वर्ष का सजा निर्धारित की गई और वह सजा होगा कठोर कारावास के रूप में और 1,00,000 रुपये तक की जुर्माना। यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझे तो दोनों ही सजा उनको निर्धारित की जा सकती है।
0: जी,
1: ये हमारा समाधान है 2006 के अंतर्गत।
0: जी जी जी अच्छा, तो ये बातें तो हुई कि क्या क्या दंड का मतलब प्रावधान है, क्या किस किस तरह से दंडित किए जा सकते हैं जो इस तरह की बातों को समाज में बढ़ावा देते हैं। तो आखिर फिर शिकायत कहाँ की जानी चाहिए इसके लिए, जैसे सीधे सीधे पुलिस के पास जाएं या दंडाधिकारी के पास जाएं या किस तरह से?
1: सर्वप्रथम तो बाल विवाह के लिए हम मतलब शिकायत दर्ज करने का सवाल होता है तो लोग कंफ्यूज करते हैं या संदेह होता है कहाँ जाएं हम।
0: जी जी,
1: तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है।
0: हाँ।
1: जो सामाजिक सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में एक्सपर्ट हो।
0: हाँ।
1: उनको बहाल किया जाता है रोकथाम।
0: अच्छा, निषेध अधिकारी।
1: हाँ, निषेध अधिकारी जिनको एसडीएम कहते हैं।
0: अच्छा।
1: और हिंदी में तहसीलदार कहते हैं।
0: अच्छा।
1: उनको यह क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
0: हाँ।
1: फिर पुलिस को कोई भी व्यक्ति सूचित कर सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ लिखित आवेदन दे सकता है, बाल कल्याण समिति को सूचित किया जा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट जो हमारे कलेक्टर हैं उनको भी फोन के माध्यम से उनको बताया जा सकता है, महिला और विकास विभाग को भी इसकी सूचना दी जा सकती है, और यहाँ तक कि इसको सरल बनाने के लिए किसी भी पंचायत सदस्य को सूचित कर सकते हैं। पंचायत सदस्य को सूचित कर सकते हैं और आगे चलकर इसका है विद्यालय के शिक्षक से भी संपर्क किया जा सकता है और वह विद्यालय के शिक्षक बाल विवाह के रोकथाम के लिए जरूरी कार्यवाही करवाएंगे। चाइल्ड लाइन और सारथी हेल्पलाइन जिसके लिए लाइन नंबर भी सबको बता दिया गया है।
0: जी, तो एक बार फिर से बता दिया जाए।
1: हाँ, ये चाइल्ड लाइन या सारथी हेल्पलाइन नंबर हर इंटरनेट पर है, हर जगह है आपको, तो 7891022224 पर संपर्क कर आप बाल विभाग।
0: तो ये नंबर एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं ताकि हमारे जो भी बहनें सुन रही हैं या श्रोता भाई बहन जो भी सुन रहे हैं इस नंबर को नोट करके रखेंगे और समाज में कहीं भी इस तरह की त्रासदी को देखेंगे तो उसके रोकने के लिए पहल जरूर करेंगे। तो ये नंबर है 7891022224, अंग्रेजी में भी हम इसे दोहरा देते हैं 7891022224, यानी 7891022224। तो इस हेल्पलाइन पर भी संपर्क करके इस तरह की बात को रोका जा सकता है। तो मामला दर्ज करने के लिए भी क्या कोई समय होना चाहिए? कभी होता है कि थोड़ा समय होता है, कभी होता है कि हो सकता है लंबा समय होता है, या कभी होता है कि बस विवाह होने ही जा रहा है, तो उसकी अवधि या समय के बारे में क्या कुछ प्रावधान है?
1: अब बाल विवाह के समय यदि तत्काल नहीं रोका जा सके तो बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक व्यवस्था की गई है कि शिकायत अपराध घटित होने के 1 वर्ष के भीतर सक्षम न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ आप दायर कर सकते हैं
0: जी।
1: इसके बाद है कि बाल विवाह को अकृत्य और रद्द करने के लिए
0: जी।
1: जो जिस पक्षकार बालक या बालिका जिनका विवाह बाल विवाह हुआ है वह आवेदन अपने मित्र या संरक्षक के माध्यम से कुटुम्ब न्यायालय में भी कर सकते हैं और यदि बाल विवाह के पक्षकार वयस्क हो जाते हैं तो वयस्क होने के बाद 2 वर्ष के भीतर स्वयं भी न्यायालय में परिवाद दायर कर सकते हैं। अर्थात लड़के अपने बाल विवाह के खिलाफ 21 से 23 वर्ष तक
0: जी।
1: और लड़कियां अपने बाल विवाह के खिलाफ 18 से 20 वर्ष तक मुकदमा कर सकती हैं।
0: मतलब 21 के पहले अगर हुआ तो अभी वो 21 से 23 के बीच कर सकते हैं। और 18 से पहले अगर लड़की या युवती का विवाह हुआ है, किशोरी का विवाह हुआ है, तो वो 18 से 20 वर्ष तक यानी 2 वर्ष की अवधि तक वो इस बात के खिलाफ न्यायालय में जा सकती है कि हमारा बाल विवाह हुआ, ये मान्य नहीं है।
1: साथ ही साथ ये भी है कि कुटुंब न्यायालय के द्वारा बाल विवाह रद्द होने पर लड़की सभी कीमती वस्तुएं गहने उपहार वापस प्राप्त करने के अधिकार

0: कार्य।
1: अच्छा,
0: और बाल विवाह रद्द होने के समय
1: हाँ हाँ।
0: यदि उस लड़की का पति की उम्र 18 वर्ष से कम आयु का है
1: जी
0: तो
1: जी।
0: वह भरण पोषण के लिए उस लड़के के माता पिता या अभिभावक
1: हाँ।
0: से वह अंतरिम तथा अंतिम आदेश पारित करवा सकती हैं।
1: अच्छा, भरण पोषण,
0: भरण पोषण के
1: जी,
0: लिए
1: जी।
0: और साथ ही यदि बाल विवाह से किसी भी प्रकार से या ऐसे विवाह से कोई बच्चा उत्पन्न हो जाता है
1: हाँ।
0: तो न्यायालय उस बच्चे के श्रेष्ठ हितों को
1: हाँ।
0: ध्यान में रखते हुए अभिरक्षा का प्रावधान करती है।
1: जी जी
0: तो ये सारे बाल विवाह के लिए कानूनी प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
1: तो इन कानूनी सहायता को पाने के लिए, कानूनी उपचार को पाने के लिए कोई याचिका दायर करने में कौन सक्षम है या कौन पहल कर सकते हैं?
0: या इसको सरल बनाने के लिए कानूनी ये व्यवस्था की है कि बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति, संगठन, मित्र, सगे संबंधी, निवारण अधिकारी, स्वयं पीड़िता भी याचिका दायर कर सकती है। और यह याचिका साधारण आवेदन या पत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है। यह याचिका उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में
1: जी।
0: और सुप्रीम कोर्ट में साधारण आवेदन, साधारण पत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है, क्योंकि सरल बनाना है, समाज को इससे बचाना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी माध्यम से संज्ञान भी ले सकती, यदि आवेदन यदि पेपर में है या इसमें है कि उन्होंने पढ़ा कि बहुत बड़ी मात्रा में बाल विवाह होने की संभावना है तो संज्ञान लेते हुए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है और उसके उल्लंघन करने पर भी दंड की 2 वर्ष की सजा और 1,00,000 जुर्माना संज्ञान लेने पर उल्लंघन करने वाले को किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप याचिका दायर कर सकते हैं।
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। नहीं तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कानूनी प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, कौन इस पचड़े में पड़ता है, इस तरह की बात सोचते हैं, लेकिन बाल विवाह के संदर्भ में अगर इस कानूनी प्रक्रिया को इतना अधिक सरल बनाया गया है तो निश्चित रूप से समाज में इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और बहुत असर होगा। ये बात तो कानून ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ कानून की तामिला के लिए तो समाज के ही लोग होते हैं। समाज का क्या उस स्थिति में क्या कुछ रवैया होना चाहिए, क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए?
0: जी जी, आपने ठीक ही कहा, कानून कानून ही रह जाएंगे यदि समाज जागरूक ना हो
1: जी।
0: तो हमें समाज को जागरूक करने के लिए और इस बाल विवाह को की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए और सामाजिक संगठन को इसके लिए आगे आना होगा
1: जी।
0: पारिवारिक रूढ़िवादिता को तोड़ना जरूरी है और शिक्षा का फैलाव करना आवश्यक है। गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक, विधिक जागरूकता के माध्यम से भी कानूनी जानकारी, कानूनी सलाह, बाल विवाह के दुष्परिणामों को भी जानकारी देना जरूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा पुलिस की भूमिका अहम होगी
1: जी,
0: क्योंकि पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वह संज्ञान ले और संज्ञेय अपराध है और बिना वारंट के वह गिरफ्तार करेगी, तो इसके लिए पुलिस की भूमिका अहम होगी। उन्हें बाल विवाह के संबंध में कोई भी सूचना किसी के भी माध्यम से प्राप्त होता है तो उस सूचना को गंभीरता से ले, कार्रवाई जरूरी रूप से कार्रवाई करे, तभी यह बुराई जड़ से समाप्त होगी और लोग बाल विवाह से करने से घबराएंगे
1: जी,
0: पुलिस
1: जी।
0: भी
1: बिल्कुल। और हमें लगता है कि इस तरह की चेतना अब समाज में फैल रही है। 21 जनवरी को इसके लिए मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी और इसके बाद खबरों में भी हमने पढ़ा था कि इसी तरह से बहुत कम उम्र की 13 वर्ष की बच्ची के विवाह की जब बात हो रही थी, होने जा रहा था विवाह, तो उसकी सहेलियों ने ही पहल करते हुए बिल्कुल वो पुलिस तक गई और पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बाल विवाह को रोका और सभी पक्षकारों को समझाया और अभिभावक भी इस बात को समझे और उन्होंने इस बात की शपथ भी ली कि हम इस तरह का कार्य नहीं करेंगे, उसके बालिग होने के बाद ही उसका विवाह करेंगे। तो ये पहले तो चेतना फैलाने की बात है। कानून तो अपना काम करेगा ही और कानून के काम करने से हो सकता है कि कोई पक्ष पीड़ित भी हो, अगर वो गलत करे तो उसको उस पीड़ा को तो उठाना ही पड़ेगा।
0: सोच और मानसिकता में बदलाव सबसे और जरूरी है।
1: सबसे जरूरी है कि पहले ही हम चेत जाएं। जी,
0: जी
1: तो आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका धन्यवाद।
2: मैनो हम सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता, विषय था कानूनी सलाह, बाल विवाह, कानूनी विवेचना। भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर सुनीता कुमारी, उनसे बातचीत कर रही थी नौमी शांति हेमरम। और बहनों अब समय है गीत का, तो चलते चलते सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी लोक, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी,

0: तो श्रोताओ, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
1: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
1: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है।
0: जी।
1: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
1: जी,
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी, यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
1: जी,
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी,
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहनें, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी, तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से,
3: चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन, मोहन।
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या, विद्या।
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
4: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
4: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बच

0: बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
1: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
2: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक
3: में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
6: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
6: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
8: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
6: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
8: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
6: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
8: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके।

0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम
2: अकादमिक परामर्श। राजेश कुमार निमेश,

0: चन, अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
1: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक का अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने ही वाले हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं जय नारायण शर्मा। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये मनोन गीत।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं जय नारायण शर्मा और साथी। इनके गए लोक गीत आप एक बार फिर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद, जिसके लिए आइए शामिल होते हैं रांची के प्रसारण सभा में।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की परीक्षा रद्द की। CBI करेगी पेपर लीक मामले की जांच। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 जारी की। बालूघाट आवंटन के नियमों में बदलाव से अब लीज लेना होगा आसान। प्रदेश भाजपा ने JTET नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा, कमेटी का निर्णय अगली परीक्षा पर होगा लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेशा नियमावली को उसकी मूल भावना के विपरीत लागू करने पर सरकार से मांगा जवाब। और JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 3 मई 2026 को देश भर में आयोजित की गई थी। पेपर लीक के कारण यह परीक्षा रद्द की गई है। इस मामले की जांच के लिए NTA सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज CBI को सौंपेगी। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। खान विभाग ने बालू खनन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी की है। नई नियमावली में लीज भुगतान प्रणाली और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों में बदलाव किए गए हैं। नए प्रारूप के अनुसार लीज अवधि की गणना पंजीकरण की तारीख से होगी। इसके अंतर्गत लीज धारकों को अब भुगतान 3 किस्तों में करना होगा। इससे राज्य सरकार को 2000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष राजस्व मिलने की संभावना है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के धनबाद विधायक राज सिन्हा ने राज्य सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
2: इस राज्य में अधिकांश लोग मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो अंगिका बोलते हैं। पूरा पलामू, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, रांची, पटिया, पूरा संथाल परगना लगभग सभी जगह बोले जाते हैं कि इस राज्य की अधिकांश जनता के साथ सरकार ने अन्यायपूर्वक निर्णय लिया है। सरकार को इस निर्णय को बदलना चाहिए और बदलना होगा।
1: वहीं झरिया विधायक रागनी सिंह ने कहा कि भाषा किसी क्षेत्र या राजनीतिक दल की नहीं बल्कि लोगों की पहचान और सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए।
3: झारखंड में भी हमको लगता है कि 80% या 90% बिहारी है, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। आप हर किसी को सम्मान दीजिए, लेकिन ऐसा निर्णय ना लीजिए कि किसी को ठेस पहुंचे और कोई आंदोलन पे उतरना पड़े, यहाँ नहीं तो सदन में।
1: इधर इस मामले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी जो निर्णय लेगी वह अगली परीक्षा पर लागू होगा। वर्तमान JTET परीक्षा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा के वरीय नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के संरक्षण में संताल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। बोकारो परिसदन में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान

0: उन्होंने बताया कि पिटरवार प्रखंड की उलगड़ा पंचायत में एक विशेष समुदाय के लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
1: ये अबुआ सरकार और आदिवासी के जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है। सरकार तो हर जगह उसी तरह हो रहा, पूरा संताल परगना डिग्राफी बदल रहा है, उसमें बोकारो भी हो चुका। अबुआ सरकार में आदिवासी का जमीन सुरक्षित नहीं है, ना माँ बहन का सुरक्षित।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने अधिसूचित पेशा नियमावली को सही ढंग से लागू नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुवार सवालों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने पेशा नियमावली की मूल भावना के विपरीत संशोधन कर उसे लागू किया है। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने आयोग को शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी मांगी कि दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में याचिकाकर्ता वैष्णवी के प्राप्तांक अधिक हैं या कम। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पोलिंग पर बल दिया है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से उत्पन्न स्थिति से निपटने और राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 आह्वानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आग्रह राजनीतिक नहीं है बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित है। झारखंड समेत देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में वोटर कार्ड, ATM कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने कहा कि संबंधित विभाग और बैंकों से संपर्क कर दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि की जाएगी। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ शुरू हुआ। सेंसेक्स 1025 अंक गिरकर 74,990 पर कारोबार कर रहा है जबकि निफ्टी 299 अंक फिसल कर 23,526 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के मोरहाबादी इंडोर स्टेडियम में द्वितीय रांची जिला पेंचक सलाट चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन किया गया। इसमें 170 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मुख्य अतिथि आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि पेंचक सलाट आत्मरक्षा, एकाग्रता और अनुशासन विकसित करने का उत्कृष्ट माध्यम है। वहीं रांची जिला पेंचक सलाट एसोसिएशन ने बताया कि झारखंड के खिलाड़ियों ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

एसोसिएशन की ओर से जारी सूचना के अनुसार अब 15 मई की रात तक अपनी बोली जमा की जा सकती है। इससे पहले अंतिम तिथि 11 मई निर्धारित थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की परीक्षा रद्द की। CBI करेगी पेपर लीक मामले की जांच। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 जारी की। बालूघाट आवंटन के नियमों में बदलाव से अब लीज लेना होगा आसान। प्रदेश भाजपा ने JTET की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा, कमेटी का निर्णय अगली परीक्षा पर होगा लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेशा नियमावली को उसकी मूल भावना के विपरीत लागू करने पर सरकार से मांगा जवाब। और JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग का शेष भाग। इस भाग के कलाकार हैं जय नारायण शर्मा। आइए इनसे सुनते हैं ये पूर्वी

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज के हमारे कलाकार थे जय नारायण शर्मा। प्रसारण आपके सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए धारावाहिक पोषण नींव पर स्वास्थ्य महल की 6वीं कड़ी। इस धारावाहिक के लेखिका हैं डॉक्टर आर्थे स्मिथ और इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता हैं नवमी शांति हेम्ब्रम।

धारावाहिक पोषण नींव पर स्वास्थ्य महल का कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शरीर स्वास्थ्य की प्रारंभिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, अब शरीर की सूक्ष्म बनावट की ओर हमारी ये यात्रा धारावाहिक रूप से बढ़ रही है। क्या है शरीर का स्नायु तंत्र और शारीरिक क्रियाओं या गतिविधियों में इसका क्या योगदान है, आज की इस छठी कड़ी में सुनते हैं।

0: नाड़ी तंत्र शरीर के समस्त क्रियाकलापों के समन्वय के लिए अनिवार्य भूमिका निभाता है। शरीर के अंदर से आने वाली जानकारी तथा शरीर के बाहर से आने वाली जानकारी नाड़ी तंत्र के ही द्वारा मिलती है।
1: कोई भी जानकारी पहले नाड़ी तंत्र में आती है और नाड़ी तंत्र उस जानकारी को तुरंत प्रक्रिया में लाता है और उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है।
0: शरीर के द्वारा जानकारी लेने की ये किसी एक अंग द्वारा आसान तरीके से भी पूरी हो सकती है या फिर सामान्य से थोड़ा हटकर जटिल रूप में या समस्त शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भी संभव है।
1: हमारा शरीर क्रिया करने के लिए दो प्रकार के तंत्रों से संबद्ध है, केंद्रीय नाड़ी तंत्र और परिसर संबंधी नाड़ी तंत्र।
0: केंद्रीय नाड़ी तंत्र मस्तिष्क एवं सुषुम्ना का घनत्व रूप है। ये शरीर के नियंत्रण के लिए केंद्र का काम करता है।
1: सुषुम्ना नाड़ी ऊतक का एक श्वेत रज्जु है जो 18 से 24 इंच लंबा होता है और जो मस्तिष्क से निकलकर एक संकरी मार्ग के द्वारा पीछे की ओर जाती है और हमारी रीढ़ की हड्डी का आकार लेती है।
0: हमारी सुषुम्ना दो विभागों में बंट जाती है, बाहरी भाग को श्वेत द्रव्य एवं आंतरिक भाग को धूसर द्रव्य कहते हैं।
1: श्वेत द्रव्य नाड़ी का आरंभिक तंत्रिका तंतु है जबकि धूसर द्रव्य नाड़ी का आरंभिक शरीर का।
0: सुषुम्ना एवं मस्तिष्क तीन उत्तकीय परतों से घिरा है जिसे मस्तिका वरण कहते हैं। जब इन झिल्लियों या परतों में प्रदाह होता है तो उसे मस्तिका वरण शोथ कहते हैं।
1: सुषुम्ना केंद्रीय नाड़ी तंत्र एवं परिसरीय नाड़ी तंत्र को परस्पर जोड़ने एवं प्रतिवर्त के लिए समन्वय केंद्र की भांति कार्य करता है।
0: नाड़ी की कोशिकाएं पुनः निर्मित नहीं होती और नाड़ी कोशिकाओं के मृत होने से नाड़ी क्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
1: सुषुम्ना नाड़ियां सुषुम्ना के ऊपर से नीचे तक आती हैं। वे सुषुम्ना नाड़ियां जो ऊपर की ओर होती हैं वे हमारी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करती हैं।
0: जो सुषुम्ना नाड़ियां मेरु स्नायु नीचे की ओर होती है वे हमारी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करती है। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग के स्नायुओं के क्षय होने से व्यक्ति अपाहिज हो जाता है।

0: मस्तिष्क नाड़ी तंत्र का व्यवस्थात्मक एवं प्रक्रियात्मक केंद्र है और ये सजगता, संवेदना, स्मरण शक्ति एवं समन्वय का स्थल है।
1: ये सुषुम्ना एवं कपाल संबंधी नाड़ियों से जानकारियां एकत्रित करता है, उन पर विचार करता है और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया की तैयारी करता है।
0: इसके साथ ही मस्तिष्क बिना बाहरी साधन के कार्य की एक योजना तैयार करता है। मस्तिष्क के पास दो बिल्कुल एक समान अर्धपिंड हैं, जिन्हें हेमिस्फेरस कहते हैं।
1: ये हेमिस्फेरस किसी गोलाकार रचना का आधा भाग होता है। मस्तिष्क का बाहरी हिस्सा धूसर द्रव्य का होता है, इसका ये नाम इसके धूसर रंग के कारण पड़ा।
0: ये धूसर द्रव्य कोशिकीय पिंडों से बना होता है। मस्तिष्क का आंतरिक हिस्सा श्वेत द्रव्य कहलाता है और ये आरंभिक स्नायु रेशों से बना होता है।
1: प्रत्येक हेमिस्फीयर या अर्धपिंड के तीन बड़े हिस्से होते हैं। सेरिब्रम ये मस्तिष्क का ऊपरी और अगला भाग होता है।
0: सेरेबेलम ये मस्तिष्क का पोन्स तथा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के पीछे स्थित और इनसे जुड़ा भाग होता है। ब्रेन स्टेम ये बहुत सारे टुकड़ों का सम्मिश्रण है।
1: सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसमें 10 विलियन से भी अधिक कोशिकाएं होती हैं। ये तर्क शक्ति एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है और व्यक्ति की बुद्धि एवं व्यक्तित्व को परिभाषित करता है।
0: सेरिब्रम ये पांचों प्रकार के ज्ञान सूंघना, सुनना, देखना, स्पर्श करना तथा चखना, पेशीय क्रियाओं के करने, याद करने, तर्क करने तथा नवीन वस्तुओं का निर्माण करने की क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है।
1: सेरिब्रम के दो भाग होते हैं, दाहिना एवं बाया। कुछ मानते हैं कि व्यक्ति की रचनात्मकता एवं व्यक्तित्व से ये निश्चय किया जा सकता है कि व्यक्ति सेरिब्रम के किस भाग पर निर्भर है।
0: सेरिब्रम के दो छोर स्नायु के द्वारा परस्पर वार्ता का कार्य करते हैं, जिनसे ये जुड़े होते हैं।
1: सेरेबेलम धूसर एवं श्वेत उत्तकों का एक बड़ा समूह है जो प्रेरक क्रियाओं का समन्वय केंद्र है।
0: जब हम अपनी शारीरिक क्रिया जैसे चलना, गेंद खेलना आदि करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का ये भाग निश्चय करता है कि किस पेशी का उपयोग कैसे और कितने बल के साथ करना है।
1: सेरेब्रम की ही तरह सेरेबेलम दाहिने एवं बाएं दो हिस्सों में बटा है और ये दाहिना एवं बायां छोर एक दूसरे को स्नायुओं के द्वारा जोड़ते हैं अथवा संबद्ध करते हैं।
0: मस्तिष्क स्तंभ सेरेब्रम को सुषुम्ना से जोड़ती है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों का सम्मिश्रण अथवा जटिल रूप है और प्रत्येक टुकड़े या हिस्से की एक विशिष्ट भूमिका है।
1: सार रूप में हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क स्तंभ हमारे रक्तचाप को नियमित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे श्वासों की दर तथा हमारी ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाली किसी बात की जानकारी सेरिब्रम से होती है।
0: मस्तिष्क स्तंभ बाहरी वातावरण की या क्रियाकलापों की जानकारी मस्तिष्क को देता है तथा उसके वास्तविक कारणों की जानकारी मस्तिष्क से लेकर उसे परिसरीय नाड़ी तंत्र तक सीधा पहुंचाता है।
1: केंद्रीय नाड़ी तंत्र शरीर के प्रत्येक भाग से स्नायुओं की श्रृंखला के द्वारा जुड़ा है, जिसे परिसरीय नाड़ी तंत्र कहते हैं।
0: परिसरीय नाड़ी तंत्र दो अलग अलग अवयवों में विभाजित है। पहला स्वसंचालित या स्वतंत्र नाड़ी तंत्र और दूसरा संवेदना संबंधी कायिक नाड़ी तंत्र।
1: स्वचालित नाड़ी तंत्र अवचेतन स्तर पर कार्य करता है, हमारा इस तंत्र की कार्य प्रणाली पर वश नहीं होता है। ये हमारे हृदय के सामान्य कार्य को व्यवस्थित करता है।
0: ये हमारे रक्तचाप, आंत, लीवर, गुर्दों, रक्तवाहिनियों तथा फेफड़ों को व्यवस्थित रखता है। ये तंत्र दो उप इकाइयों का सम्मिश्रण है जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है।
1: पहली उप इकाई है अनुकंपी। यानी सहानुभूति से संबद्ध या फिर अनुकंपी कह सकते हैं, दूसरा पारानुकंपी या स्वैच्छिक स्नायु जाल का एक भाग।
0: अनुकंपी नाड़ी तंत्र हमारी योग्यता को इस रूप में व्यवस्थित करता है कि संघर्ष करो या समाप्त हो जाओ, ये हमारे शरीर का ताप और तेवर दर्शाता है।
1: इसके विपरीत पारानुकंपी तंत्र हमारे शरीर को शीतल अवस्था में रखता है, या यूं कहें कि जोश आने नहीं देता।
0: संवेदना संबंधी कायिक नाड़ी तंत्र हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों से मिले ज्ञान को केंद्रीय नाड़ी तंत्र तक पहुंचाता है और केंद्रीय नाड़ी तंत्र द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त कर देने के बाद वो उस प्रतिक्रिया को कंकाल पेशियों और शरीर के अन्य सही इंद्रियों या अंगों तक पहुंचाता है।
1: इस तंत्र की स्नायुओं का आरंभ मस्तिष्क में होता है, इसे कपाल संबंधी स्नायु कहते हैं। सुषुम्ना में मेरुदंडीय स्नायु होती है।
0: कपाल संबंधी स्नायु हमारे ज्ञान और हमारी मांसपेशीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। यूं कहें कि ये स्नायु हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों एवं कुछ कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करती है।
1: मेरुदंडीय स्नायु हमारे कंकाल पेशी से संबद्ध क्रियाओं का अधिकांश एवं हमारे स्वैच्छिक नाड़ी तंत्र का अधिकांश भाग नियंत्रित करती है।
0: हमारे स्नायु तंत्र के कार्य के लिए ये जरूरी है कि स्नायु शरीर एवं वातावरण से जानकारी लेकर उसे केंद्रीय स्नायु तंत्र को लौटाए।
1: केंद्रीय स्नायु तंत्र उस जानकारी को प्रक्रिया में लाता है और इसे हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में वापस भेजता है।
0: ये जानकारी हमारे पास अनिवार्य रूप से समन्वित होकर तुरंत पर्याप्त और सही प्रतिक्रिया में परिवर्तित होती है।
1: शारीरिक चोट, अनुवंशिकी समस्याएं, दवा, यहाँ तक कि पर्यावरणीय प्रदूषण स्नायुओं द्वारा संचार को जोड़ने वाली जटिल श्रृंखला को क्षतिग्रस्त कर सकता है।
0: अब हम पेशी संस्थान पर चर्चा करेंगे। इसे शरीर तंत्र भी कहते हैं। शरीर का ये तंत्र तीन वृहत प्रकार की पेशी का घनत्व है। ये हैं कंकाल संबंधी, हृदय संबंधी एवं मुलायम पेशियां।
1: सभी पेशियां या तो आकुंचित होकर लंबाई में छोटी हो सकती है या शिथिलन अथवा सिकुड़न छोड़कर लंबाई में बड़ी हो सकती है, किंतु सभी पेशियों की क्रियाएं अलग अलग है।
0: स्नायु उन्हें और प्राणियों की संपूर्ण शारीरिक रचना को जोड़ती हैं। नरम पेशियां स्नायु उद्दीपन की अनुक्रिया में धीरे से प्रतिक्रिया करता है।
1: हमारे पास उनकी पूरी क्रियाकलापों का चेतन नियंत्रण नहीं है तथा प्रत्येक पेशी आकुंचित होने या शिथिल होने के लिए अपने पड़ोसी पेशी से स्वतंत्र है।
0: ये पेशियां बहुत ही स्वच्छंद रूप से अंतरांगी अंगों एवं रक्त वाहिनियों में पाई जाती हैं। इन पेशियों का आकुंचन एवं शिथिलन रक्तचाप को बढ़ा या घटा सकता है।
1: मूत्र त्याग की क्रिया में खराबी का कारण या बचाव कर सकती हैं तथा भोजन निगलने तथा पचाने में सहायक भी हो सकता है।
0: हृदय पेशियां स्नायु उद्दीपन की क्रिया में अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करती है। हमारा इन पेशियों पर कोई चेतन नियंत्रण नहीं होता, किंतु इन पेशियों की कोशिकाएं सामूहिक रूप में अधिक आकुंचित या शिथिल होती हैं, स्वतंत्र रूप में या अलग अलग नहीं।
1: ये पेशियां केवल हृदय में पाई जाती हैं तथा इनका कार्य हृदय में पंप करना है।
0: कंकाल संबंधी पेशियों को ऐच्छिक पेशी या इच्छा द्वारा नियंत्रित पेशी भी कहते हैं। इन पेशियों में रेशे की अधिकता होती है।
1: पेशीय स्नायु उद्दीपन के

0: प्रति बहुत ही जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, जो हमारे चेतन नियंत्रण में होता है, तथा पेशीय कोशिकाओं का ये बड़ा समूह परस्पर मिलकर कार्य करता है।
1: ये कोशिकाएं हमारी शारीरिक गतिविधियों, प्रतिबिंबात्मक प्रतिक्रियाओं एवं श्वास क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये पेशियां हमारे शरीर में प्रायः सभी जगह पाई जाती हैं।
0: पेशियों के आकुंचन के लिए इनमें ऊर्जा का होना आवश्यक है, अर्थात उनमें ATP का होना अनिवार्य है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये ATP हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से बनता है।
1: इसके साथ ही हमारे पेशीय क्रियाकलापों को सुचारू रखने के लिए हमें कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम की भी जरूरत पड़ती है। ये पोषक तत्व भी हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं।
0: कंकाल पेशी की चर्चा करते हुए हम ये बताना चाहेंगे कि पेशी पुट्ठों के द्वारा हड्डी के साथ जुड़ी रहती हैं।
1: जब पेशियां हड्डियों को आकुंचित और शिथिल करती हैं, तो वे उसी के अनुरूप कार्य करते हैं और हमारा शरीर गतिशील होता है।
0: हड्डियों के गतिशील होने की प्रक्रिया ये है कि प्रत्येक हड्डी दो पेशियों के साथ अवश्य जुड़ी होती हैं और दो पेशियां एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, और इस तरह एक पेशी हड्डी को खींचती है तो दूसरी पेशी उसे दबाव के साथ धक्का देती है।
1: कंकाल पेशी में जाने वाली जानकारी हमारे चेतन नियंत्रण में होती है, इसलिए इन पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं।
0: कंकाल पेशी तंत्र के पास लाल पेशी रेशे होते हैं, जिसे मागोग्लोबिन कहते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और ATP उत्पन्न करते हैं। ये पेशियां बिना थके लंबे समय तक काम कर सकती हैं।
1: दूसरे प्रकार के रेशे को श्वेत पेशी रेशा कहते हैं। ये ऐठन वाले रेशे को दूर कर देते हैं, क्योंकि ये तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, किंतु ये जल्द थक जाते हैं।
0: त्वचा संबंधी तंत्र या त्वचीय तंत्र त्वचा, बाल, नाखून एवं ग्रंथियों से बना है। त्वचा इस तंत्र का सबसे बड़ा भाग या अंग है, और शरीर का ये सबसे बड़ा अंग या हिस्सा हमारे शरीर के कुल वजन का 15% होता है।
1: त्वचा हमारे शरीर और बाहरी वातावरण के बीच एक ऐसी सुरक्षात्मक बाड़ है, जो अपनी मरम्मत आप करने में सक्षम है।
0: त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं, जो कोशिकाओं का कसा हुआ सघन स्वरूप होता है और इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं।
1: बाह्य त्वचा शारीरिक अवरोध या सीमा के रूप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद की परत को डर्मिस या वास्तविक त्वचा कहते हैं। इसमें मौजूद रक्त वाहिनियां बाह्य त्वचा को पोषण देती है और उष्मा को नियमित करने का कार्य करती है।
0: इसमें कुछ संबद्ध करने वाले ऊतक होते हैं, जो त्वचा को संबल प्रदान करते हैं। वास्तविक त्वचा बाह्य त्वचा को अपत्वचीय या त्वचा के नीचे ऊतकों से भी जोड़ती है।
1: त्वचा के इस निचले भाग में हम रोम कूप पाते हैं, जहां से रोएं या बाल निकलते हैं। त्वचा संबंधी तंत्र के अन्य सदस्य तथा पसीने की ग्रंथि भी यही मिलती है, जो हमारे शरीर के ताप को नियमित रखने में महत्वपूर्ण है।
0: त्वचा के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक स्वयं को सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में प्रस्तुत करना भी है। ये तीन प्रकार के प्राथमिक सुरक्षात्मक कार्य हैं: संक्रमण अवरोध, जलवरोधी सीमा, यांत्रिक या भौतिक अवरोध।
1: हमारी त्वचा हमारे शरीर को सूर्य किरणों के क्षतिकारक प्रभावों से बचाती है। त्वचा हमें ये सुरक्षा वर्णक या रंजक के द्वारा प्रदान करती है, जिसे मेलानिन कहते हैं।
0: त्वचा पर अधिक मेलानिन उपस्थित रहने पर त्वचा काली दिखती है। जब सही रूप में सुरक्षा नहीं हो पाती है, तो हमारी त्वचा ताप नियमित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: हमारी त्वचा पसीने के द्वारा हमारे शरीर का ताप कम करने में सहयोग करती है।

0: है तथा कटी हुई रक्त वाहिनियों द्वारा बहते या रिश्ते रक्त को बंद कर उसे सुरक्षा प्रदान करती है।
1: आकुंचन में पसीना निकलना बंद हो जाता है तथा त्वचा के निकट स्थित कटी नस के बंद होने पर उस जगह पर त्वचा पर ताप या जलन घट जाती है।
0: यद्यपि हम जानते हैं कि आंत एवं गुर्दे हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों एवं जल को उत्सर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारी त्वचा भी शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये हमें अतिरिक्त नमक एवं जल तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थों से मुक्ति प्रदान करती है। ये महत्वपूर्ण रसायन बनाने में मदद करती है। इनमें से एक है विटामिन डी का निर्माण।
0: सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अथवा उसके संपर्क में आकर त्वचा संश्लेषित होकर वास्तविक विटामिन डी बनाती है। अंततः त्वचा बाह्य वातावरण एवं शरीर के मध्य एक महत्वपूर्ण संयोजन तंत्र प्रदान करती है।
1: त्वचा हमारी दबाव, ताप, दर्द और स्पर्श को महसूस कर उस ज्ञान को केंद्रीय नाड़ी तंत्र के पास तुरंत भेज देती है, ताकि नाड़ी तंत्र शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया बता सके। हमारे अच्छे दिखने के लिए स्वस्थ त्वचा का होना आवश्यक है।
0: अभी हम कुछ ऐसे तत्वों का उल्लेख करेंगे जिनमें हमारी त्वचा क्षतिग्रस्त भी हो सकती है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक या अधिक कार्य करने में अक्षम भी हो सकती है।
1: पोषण रहित आहार या अपर्याप्त आहार से हमारी त्वचा पतली एवं उसकी अखंडता के कम होने या समाप्त होने के दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। हार्मोन के असंतुलन की वजह से त्वचा क्षतिग्रस्त हो सकती है।
0: बाल हमारी त्वचा का ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो मौलिक नहीं होता बल्कि अन्य पदार्थ से उत्पन्न होता है और जो वास्तव में मानव में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है।
1: हमारे सिर के बाल हमें सिर को कड़ी धूप एवं जाड़े के मौसम में सिर को ताप रहित होने से बचाता है। हमारे बाल की छोटी गुहा या रोम कूप वास्तव में बाह्य त्वचा है जो त्वचा के अंदर में विकसित होता है और एक नली के आकार का होता है।
0: कठोर त्वचा रोम कूपों अथवा बालों के द्वारा धकेली जाती है, जैसे कि बालों की कोशिकाएं गुणित होती हैं और मरती हैं। बाल लंबे समय तक लगातार बढ़ते हैं जब तक कि वहां कोई चोट, बीमारी, आहार में असंतुलन, हार्मोन में असंतुलन तथा दवा का दुष्प्रभाव न हो।
1: नाखून हमारे हाथ एवं पैर की उंगलियों में पाए जाने वाले सुरक्षात्मक तश्तरी होते हैं। वास्तव में ये त्वचा से पनपते हैं और बाह्य त्वचा से विकसित होते हैं।
0: एक स्वस्थ नाखून की जड़ अत्यधिक बाह्य त्वचा से संबद्ध कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जैसे ही ये कोशिकाएं मृत होती हैं तो बहुत सख्त हो जाती हैं।
1: नई विभाजित नाखून की जड़ कोशिकाओं को भीतर से धक्का देकर ऊपर नाखून के विस्तर पर ला देते हैं। नाखून पूरी जिंदगी बढ़ते हैं।
0: संक्रमण, आहार में कमी या समस्या, चोट आदि के कारण नाखून नष्ट या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि नष्ट हुए नाखून फिर से पूरी तरह विकसित होने लगे।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700।

0: दो चार दो।
1: हाँ।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: चेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आप सुन रहे थे धारावाहिक पोषण नींव पर स्वास्थ्य महल की 6वीं कड़ी। इस धारावाहिक की लेखिका थी डॉक्टर आरती स्मिथ और इस धारावाहिक की प्रस्तुतकर्ता थी नवमी शांति हेम्ब्रम। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे पटना से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया। एनटीए ने बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जाँच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी तथा जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमंता बिस्व सरमा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए दोनों जिलों में 25 बूथ बनाए गए हैं। इनमें भोजपुर में 14 और बक्सर में 11 बूथ हैं। उपचुनाव में 6,000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। मतों की गिनती 14 मई को आरा में की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य

और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नर्सों

0: पूर्णिया के अमौर में सबसे अधिक 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 3 मई को मुनक़दा नीट UG इम्तहान मनसूख करने का फ़ैसला किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह फ़ैसला तलबा के मफाद और कौमी इम्तहान निज़ाम पर भरोसे को बरकरार रखने के पेश नज़र लिया गया है। NTA ने बताया है कि हुकूमत ने पेपर लीक होने के इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात के लिए मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के सपुर्द करने का फ़ैसला किया है। एजेंसी का कहना है कि वो CBI के साथ मुकम्मल तआवुन करेगी और तहकीकात के लिए ज़रूरी तमाम मवाद रिकॉर्ड और मदद फराहम करेगी। NTA ने मज़ीद कहा है कि इम्तहान के लिए नई तारीख का ऐलान अलग से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और मई के लिए मुंतखब करदा इम्तहान मराकज़ तब्दील नहीं होंगे और दोबारा इम्तहान में वही इस्तेमाल किए जाएंगे। एजेंसी के मुताबिक दोबारा इम्तहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी और कोई इजाफी इम्तहान फीस भी नहीं ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी बार असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में मुनक़दा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हेमंत बिस्व शर्मा के साथ 4 दीगर अरकान असम्बली ने भी बतौर वजीर हलफ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकज़ी वज़रा और बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत BJP की हुकूमत वाली दीगर रियासतों के वज़ीर आला भी तकरीब में मौजूद थे। बिहार कानून साज कौंसिल के भोजपुर बक्सर मकामी अथॉरिटी के ज़िमनी इंतखाब के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान वोटिंग जारी है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग के लिए दोनों अजला में 25 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 14 भोजपुर में और 11 बक्सर में वाक़ हैं। इस ज़िमनी इंतखाब में 6,000 से ज़ायद वोटर्स 6 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फ़ैसला करेंगे। वोटों की गिनती 14 मई को आरा में की जाएगी। आज आलमी यौम नर्स है। ये दिन जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के यौम पैदाइश की मुनासबत से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल। ये दिन मरीजों की देखभाल, समाजी सेहत और मुआशी तरक्की में नर्सों के अहम किरदार के एतराफ़ और उनके एहतराम की अलामत है। इस मौके पर वजीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद JP नड्डा ने नर्सों को मुल्क के सेहत के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी और उम्मीद का सुतून करार दिया। नर्स डे के मौके पर राजधानी पटना समेत रियासत भर में कई प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। साबिक वजीर और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर रहनुमा बागी कुमार वर्मा का इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 77 बरस थी। उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था। उनके इंतकाल पर वजीर आला सम्राट चौधरी, नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी, असम्बली स्पीकर प्रेम कुमार और अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। मारूफ ज़रई साइंसदान और पद्मश्री एवार्ड याफ्ता गोपाल जी त्रिवेदी का आज पटना में इंतकाल हो गया। वो गुज़श्ता चंद दिनों से बीमार थे और उनका पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के बाशिंदा थे और उन्होंने लीची को फ़रोग देने के लिए नई तकनीकों की खोज की थी। उनकी मौत पर समाज के मुआज़्ज़िज़ लोगों ने गहरे सदमे का इजहार किया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में मानसून की आमद के लिए साजगार हालात बने हुए हैं। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक जनूबी बंगाल के खलीजी हिस्से में मानसून दस्तक दे सकता है। इसी दौरान महकमा का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाली हिस्सों में ज़्यादातर मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान कुछ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की वार्निंग भी जारी की गई है। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के अमौर में सबसे ज़्यादा 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।

0: कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का
3: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित

0: नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के सेंगोतयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
4: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था।

0: टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिश्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM के 110.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनी फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में ही हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनामिका का गीत, आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अपना फिल्म में अपनापन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के ठीक 3 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। आज के हमारे कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मैथिली सिंह। आइए इन्हीं की युगल आवाजों में सुनते हैं ये गजल।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। आज के हमारे कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मिताली सिंह की आवाज़ में ये

आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। कलाकार थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और FM के 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 हो चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिसके लिए आइए शामिल होते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं। 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है।

0: महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनका उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा महेश्वरी।
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप

0: पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, यू नो शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि
3: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
2: बिल्कुल।
3: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक के संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
2: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
3: क्या बात है।
2: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
3: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
2: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
3: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
2: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
3: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई बाजार में।

0: पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
1: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
0: हाँ,
1: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगे।
0: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाया जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
1: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही।
0: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रही, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे।
1: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
0: जी,

बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी

0: कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की एक लोहार की, ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की एक लोहार की यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन? बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहां जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मजा आता था। हमारी चाचियां और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
1: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय।
0: वो भी, और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब
1: हाँ
0: उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, और
1: हाँ
0: फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है। तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहां उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए।
1: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी,
0: वो
1: और
0: जो
1: महिलाओं को
0: पुरानी
1: मदद भी
0: छुरी जो
1: मिलेगी।
0: होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हमको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
1: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
0: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई हैं, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का, दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज्यादा ही, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो

0: बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी, और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों के जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
1: हाँ,
0: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो बड़े वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
1: और
0: बड़ा
1: इसी
0: हो रहा है।
1: तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
0: चलिए

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी, अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे, तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ,

0: स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है, वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना। सदाशिव जी, इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें।
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था, और दिन भर हम घूमकर शाम

0: घर लौटे थे।
1: पिटाई नहीं हुई थी?
0: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा, इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ, हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे। इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
1: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
0: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
1: जी।
0: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं। नाटक करता रहा
1: जी,
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
1: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई
1: जी।
0: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
0: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
1: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
0: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
0: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ा इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
0: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले,
0: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
1: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
0: पुरानी
1: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
0: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
0: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
1: जी।
0: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
1: जी।

0: वहाँ पहुँच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुँच गए, लेकिन पूना से बम्बई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चेत, वो नाटक उसमें से, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे अनंत जो कर रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं, मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह, हाँ।
1: विजय मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजय जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं, फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम

0: हम आपको मिलना चाहते हैं तो आप बम्बई आइए।
1: जी।
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे। अब वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरापुरकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए

0: हैं, बराबर हैं। आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था। अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गाँव आया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे, आइए आइए बैठिए। लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। और लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है, वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बार जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया, तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था, एक और एक लड़के का रोल करता था। वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया, और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था। और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई, और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था। और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्स अप नाटक किया। और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है, और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंडसअप नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्ध सत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
0: जी, जी।
1: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए
0: जी। मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि

0: मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उसने उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, खुद उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बेटक नहीं है। मैं वहीं रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी, और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घूम दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, वो उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
0: जी।
1: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी

0: तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें? अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे। तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
1: जी।
0: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
1: जी।
0: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
1: जी।
0: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
1: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
0: नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है। इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
1: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
0: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
1: जी,
0: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
1: महारानी
0: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे, ऐसा होना चाहिए
1: जी।
0: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़ी है। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
1: जी।
0: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
1: जी जी।
0: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है, तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया, और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की,

0: या और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार है वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह। ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने जी। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था, मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की माया ही हो गई जैसे
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी,
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है गालिबान उनके मकान की। हारे हुए परिंदे जड़ा उड़ के देख तो, आ जाएगी जमीन पे छत आसमान की। बुझ जाए सरे आम ही जैसे कोई चिराग, कुछ यूं है शुरुआत मेरी दास्तान की। गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों के साथ मैं प्रशांत कुमार आर्य उपस्थित हूँ आप सभी श्रोताओं के बीच कार्यक्रम युववाणी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी मेरी ही तरह कुशलता से होंगे। साथियों, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आप जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में। फिर होगा कार्यक्रम का साप्ताहिक स्तंभ विज्ञान वार्ता, जिसमें वार्ताकार आकांक्षा गुप्ता से आप सुनेंगे पृथ्वी पर जीवन की कहानी। इसके इतर आप सभी से कुछ संगीत पहेली भी पूछे जाएंगे एवं अंत में होगा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग समसामयिकी। और कार्यक्रम में आपके मनोरंजन का खास ध्यान रखते हुए आपको सुनाएंगे कुछ हिंदी फिल्मी गाने। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को और आरंभ में ही लेते हैं इतिहास फिल्म के इस प्यारे से ट्रैक का आनंद, जिसकी शब्द रचना की है समीर ने, इनके पंक्तियों को संगीतबद्ध किया है दिलीप सेन एवं समीर सेन ने, और आवाजें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की।

0: इस प्यारे से गीत के बाद अब आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य और हमारी धरती का स्वास्थ्य दोनों ही पौधों पर निर्भर करता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका 80% और जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं उसका 98% पौधों से प्राप्त होता है, फिर भी वे खतरे में हैं। हर साल लगभग 40% खाद्य फसलें पौधों के कीटों एवं रोगों के कारण नष्ट हो जाती है, जिससे कृषि को नुकसान पहुंचता है। बढ़ती वैश्विक भूख और बढ़ जाती है तथा ग्रामीण आजीविका भी खतरे में पड़ जाती है। पौधों के रोगों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को $220 अरब से अधिक का नुकसान होता है तथा आक्रामक कीटों से कम 70% अरब डॉलर का नुकसान होता है। ऐसे में पौधों को कीटों एवं रोगों से बचाना पौधों के स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने की तुलना में कहीं अधिक किफ़ायती है। जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियां पारिस्थितिक तंत्रों को बदल रही हैं एवं जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रही हैं। साथ ही कीटों को पनपने के लिए नए अनुकूल वातावरण बना रही हैं। इन संकटों के मद्देनज़र हमें लोगों और हमारे प्यारे ग्रह पृथ्वी के लिए पौधों की रक्षा करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में नामित किया है ताकि वैश्विक स्तर पर इस बात की जागरूकता बढ़ाई जा सके कि पादप स्वास्थ्य की रक्षा कैसे भूख को समाप्त करने, जैव विविधता एवं पर्यावरण की रक्षा करने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। साल 2026 के लिए इस दिवस की थीम खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा रखी गई है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि हानिकारक कीटों और आक्रामक प्रजातियों से पौधों को बचाना वैश्विक खाद्य संकट को दूर करने के लिए अनिवार्य है। पौधों का स्वास्थ्य केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य की नींव है। स्वस्थ पौधे ही सुरक्षित भविष्य की पहचान हैं। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा और सुरक्षित ग्रह देना चाहते हैं तो हमें आज ही पौधों की रक्षा का संकल्प लेना होगा। साथियों, चर्चा में इतना ही। अब हम आज के साप्ताहिक स्तंभ विज्ञान वार्ता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर, इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें

0: और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
5: 8700001424।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है। अब आइए सुनते हैं वार्ताकार आकांक्षा गुप्ता से पृथ्वी पर जीवन की कहानी के बारे में एक विज्ञान वार्ता।
4: वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी पर जीवन की कहानी हम जीवाश्मी की दस्तावेजों प्रदर्शन और विश्वविद्यालय में हमेशा से एक जैसा ही रहा है। यह ब्रह्मांड की संरचना से शुरू होते हुए धरती पर जाके समाप्त हो गया। धरती ऐसा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। आज के जीव जंतुओं के बीच समानताएं हमें यह इशारा करता है कि उनके पूर्वज भी कहीं ना कहीं एक ही होंगे। 99% से भी ज़्यादा जीव जंतुओं का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। कर्म सजीव जंतुएं अपने संसाधनों और पोषण को बांट चुका है। आखिरकार यह जीवन है क्या? जीवन की कुछ तकनीकी बातें इस प्रकार है। पहला, जन्म। जंतुएं अपने जैसे ही जन्म देते हैं क्योंकि जिंदगी तो जिंदगी से ही आती है। दूसरा, विकास। अनुवांशिक आदतें एक दिशा में विकास होती है। तीसरा, पोषण का सदुपयोग। जंतुएं पोषण लेती है और उसे कर्म करने में खपत करती है। चौथा, उदिक्वेशी मेल। परिणाम स्वरूप जीवन तब बना जब जीव जंतु और वातावरण आपस में मिले, क्योंकि वातावरण बहुत ही शांत और स्थल है। सभी जीवों और संरचनाओं में 99% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। ये सभी CO2, H2O, नाइट्रोजन और कुछ मिथाइल, हाइड्रोजन और अमोनिया के रूप में रहते हैं। जीवन के बीच के मध्य। पहला, स्पेशल सृजन सिद्धांत। फादर सौर्य जो सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक थे, जिनका कहना था कि जिंदगी अमानुष शक्ति से बनी है। बाइबल के अनुसार आदम पहला आदमी और ईवी सबसे पहले स्त्री थी जिसने भगवान ने बनाया था। हिंदू धर्म के अनुसार यह दुनिया भगवान ब्रह्मा ने बनाया और मनु और श्रद्धा सबसे पहले आदमी और स्त्री थे। मुसलमान समुदाय के अनुसार अल्लाह उनके निर्माता हैं। स्पेशल सृजन सिद्धांत में कोई भी तकनीकी जुड़ाव ना होने के कारण इसे हटा दिया गया। फिर जो दूसरा मत आया वो थैलस, एरिस्टोटल, प्लाटो जैसे वैज्ञानिकों ने दिया। स्वैच्छिक उत्पादन के सिद्धांत। इस परिकल्पना के अनुसार जीवन निर्जीव चीज़ों से स्वैच्छिक रूप से निकला है। प्राचीन इजिप्ट में यह माना जाता था कि नाइल नदी की मिट्टी जब धूप की किरणों से गर्म हो जाती है तो वे मेढक, चूहे आदि को जन्म देती है। इस मत को भी सही न मानकर हटा दिया गया। विनाशकारी सिद्धांत। यह सिद्धांत के अनुसार धरती पर समय समय पर विनाशकारी क्रांति होती आई है जिसमें सभी सजीव नष्ट हो गए, फिर एकाएक वो अजैवी पदार्थ से बन गए। आधुनिक मत। इस धरती पर जन्म भौतिकी और रासायनिक अणु की प्रतिक्रिया से होती है जिससे व्यणु बनती है। व्यणु फिर मिलकर अजैवी और कार्बनिक यौगिक बनाती है। समय बदलता रहा और बदलते समय नए वैज्ञानिक लाता रहा जिनका अपना

मत रहा उनके अलग अलग क्षेत्र में रहे। अपने सिद्धांतों के साथ वैज्ञानिकों ने अपने तर्क भी रखा जो सही भी रहा, जैसे उष्ण जलीय रंध। लंबे समय में चले आ रहे ओपेरिन और हाल्डन के विचार को उस समय गहरा धक्का लगा जब कोई युवा वैज्ञानिकों ने इस बात से असहमति जताई कि आत्सुप में जन्मे प्रथम जीव में अपनी ऊर्जीय आवश्यकताओं की पूर्ति अवयव द्वारा दी गई। उनका कहना था कि ओपेरिन और हाल्डन के विचार जैव ऊर्जिकी एवं उष्मगातिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं। प्रोफेसर विलियम मार्टिन के निर्देशन में माइकल रूसेल ने जीव की प्रथम उत्पत्ति का वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, उष्ण जलीय रंध्र सिद्धांत नाम के। इस सिद्धांत में कहा गया कि जीव उत्पत्ति आत्सुप में नहीं होकर समुद्र के पंदे पर धात्विक लवणों से निर्मित चट्टानों पर बने सूक्ष्म उष्ण जलीय रंध्रों से हुई है। सूर्य से पुराना है पृथ्वी पर जन्म। प्रोफेसर विलियम मार्टिन के निर्देशन में माइकल रूसेल ने जीव की प्रथम उत्पत्ति की वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, उष्ण जलीय रंध्र सिद्धांत नाम के। इस सिद्धांत में कहा गया कि जीव उत्पत्ति आत्सुप में नहीं होकर समुद्र के पंदे पर धात्विक लवणों से निर्मित चट्टानों पर बने सूक्ष्म उष्ण जलीय रंध्रों से हुई होगी। सूर्य से पुराना है पृथ्वी पर जीवन। प्रथम जीव पृथ्वी पर नहीं जन्मा अपितु सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में अंतरिक्ष के किसी जीवधारी पिंड में आया। यह परिकल्पना जीव विज्ञान के इतिहास में बहुत पुरानी है। वैज्ञानिकों को मानना है कि हेडियन काल में जीवन सूक्ष्म बीजाणु किसी एक ग्रह के वायुमंडल से निकलकर अंतरिक्ष की लंबी और कठिन यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर किसी अन्य ग्रह पर उतर सकते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जीवन की उत्पत्ति एक बार नहीं होकर कई बार कई स्थानों पर हुई तथा वहां से जीवन हर दिशा में फैलता गया। मात्र अणुओं का समूह नहीं है जीवन। जीवन मात्र अणुओं का समूह नहीं। जीवन के विश्व में जो जो जानकारी बढ़ती जा रही है प्रथम जीव को समझना उतना ही कठिन होता जा रहा है। हैरोल्ड हॉर्विज ने समझाया, जीव कोशिका से बना होता है। कोशिका से 50-90% लगभग जल का बना होता है। सभी जीवों में ऊर्जा का प्रवाह फास्फेट बांध के जल उपघटन के माध्यम से होता है। चौथा, वृद्धि करते प्रत्येक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। पांचवा, जनन करने वाले प्रत्येक जीव उसके जीनोटाइप में उत्परिवर्तन के कारण स्वयं से कुछ भिन्न संतानें उत्पन्न करती हैं। सभी जीवित कोशिकाएं में पर्याप्त द्रव गति से होने वाली रासायनिक क्रिया एंजाइमों से उत्प्रेरित होती है। विकास सिद्धांत तो कई हैं, जैसे लामार्क सिद्धांत, डार्विनिज्म वाद, ह्यूगो डी वरीज वाद। लामार्किज्म सबसे पहला सिद्धांत था। उसके खोज के उदाहरण स्वरूप हम ये मान सकते हैं कि जिराफ के पूर्वजों के पास छोटे गर्दन और पैर हुआ करते थे, पर वे ऐसे जगह पर रहते थे जहाँ कोई सतह वनस्पति नहीं उगती थी, इसलिए वे अपने गर्दन और पैर को तनाव में रखकर पेड़ पर लदे पत्तियाँ खाते थे, जो परिणाम स्वरूप आज उनके पास लंबे गर्दन और पैर हैं। परंतु यह सिद्धांत को हटा दिया गया क्योंकि इसमें बहुत कमी थी। फिर आया डार्विनिज्म का सिद्धांत, जो बहुत सही और सटीक माना गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण लेख हैं। पहला, त्रिव गुना से बढ़ना। सभी जीव के पास अधिक उपजाऊपन है और वे एक ज्यामितिक अनुपात से बढ़ते हैं। जैसे कोई कीड़ा 100 अंडे देता है, एक मछली कई 100 बार अंडे देती है। समेत खाना और जगह, बावजूद जीवों को तीव्र गति से बढ़ते हुए खाना और जगह दोनों ही इस धरती पर बहुत सीमित हैं। अस्तित्व का संघर्ष, यह तीन प्रकार का होता है। भीतरी संघर्ष, ऐसा लड़ाई जो व्यक्ति या प्राणी अपने ही जाति से करे। दूसरा, अंतर संघर्ष, जो संघर्ष व्यक्ति दूसरे जाति के लोगों से करे। तीसरा, वातावरण संघर्ष, ऐसा संघर्ष जो जीव और वातावरण के बीच हो। प्राकृतिक चुनाव, ऐसे ही जीव धरती पर बने रहते हैं जिनके पास लाभकारी रूपांतर हैं क्योंकि वो आसपास का सामना करने के लिए उचित हैं। आदमी का विकास, जगह, जीवाश्म में ये प्रमाण देती है कि आदमी की बीज एशिया, चाइना, भारत के शिवालिक पर्वतों में हुआ है। जो रूपात्मक बदलाव आदमी के विकास में हुआ है वो है लंबा और संकीर्ण नाक, दूसरा टोड़ी का बनावट, तीसरा चेहरे का फैलाव, चौथा शरीर पर बालों की कमी, पांचवा लंबाई में वृद्धि, पांचवा दिमाग का आकार और चालाकी में बढ़त आदि। पौराणिक कथना अनुसार सृष्टि रचयिता ने जीवन के उत्पन्न के लिए मुख्य पांच तत्वों से हुआ, मिट्टी, पानी, धूप, हवा एवं आकाश। पेड़ पौधे पृथ्वी की एक शोभा एवं जीवों के भरण पोषण हेतु तैयार किया गया, जिसका ज्ञान वनस्पति विज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। और जीवन की संरचना के मुख्य रूप में उसका प्रथम उद्देश्य उसका आहार भोजन होता है।

0: जब जीवों का भूख शांत हो जाता है तो वो अपनी सुरक्षा हेतु प्रयास करता है, जो सारे जीवों का इस पृथ्वी पर मुख्य उद्देश्य माना जाता है। परंतु मानव सारे जीवों में श्रेष्ठ इसलिए जाना जाता है कि उसके पास बुद्धि है, जो उसके उपरांत जो ज्ञान प्राप्त होती है, जिससे ज्ञान विज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इसे विज्ञान के सहारे वो सांसारिक उपज प्राप्त करता है और सफलता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव जीवन का मूल उद्देश्य सांसारिक, सामाजिक एवं पारंपरिक कार्यों को संपन्न करने हेतु संसार को सारे जीव जंतुओं, पेड़ पौधे एवं अन्य स्तनधारी जानवरों को पूर्ण सुरक्षा एवं उचित दिशा दिखाने हेतु मनुष्य को परमात्मा के काम में होने के प्रेरित करता है। मानव विवेकशील है, अतः यह सुख मानव जीवन के लिए सच्चा सुख कहा जाएगा।
1: अभी आप आज के साप्ताहिक स्तंभ विज्ञान वार्ता में वार्ताकार आकांक्षा गुप्ता से सुन रहे थे पृथ्वी पर जीवन की कहानी। अब आइए बढ़ते हैं संगीत पहेली की ओर। दोस्तों, संगीत पहेली में पिछले सप्ताह हमारी साथी स्वाति ने आप सभी से पूछा था, छैया छैया गीत में छैया छैया का जिक्र कितनी बार हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब है 50 से 60 बार। एवं सही जवाब बताने वाले हमारे श्रोता थे कहलगांव से सुजीत रॉय एवं सुरखीकल भागलपुर से आकाशदीप एवं बादल। दूसरा प्रश्न था, तुम साथ हो किस फिल्म का गीत है। इस प्रश्न का सही जवाब है तमाशा। और सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता थे सुल्तानगंज से कुणाल एवं भीखनपुर से विशाल और सुमित। दोस्तों, अब आप आज की संगीत पहेली ध्यान से सुनिए। राम जी ओ राम जी गीत के गीतकार कौन है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, राम जी ओ राम जी गीत के गीतकार कौन हैं। इस पहेली का सही जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है phairbhagalpur@gmail.com। अब आइए जानते हैं हाल फिलहाल की घटनाओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण खबरें। एक्टर सी जोसेफ विजय, जो थालापैथी विजय के नाम से मशहूर हैं, ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ दिलाई। डीआरडीओ एवं इंडियन एयरफोर्स ने ओडिशा कोस्ट पर तारा वेपन सिस्टम का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया। तारा यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है, जो सामान्य अनगाइडेड बॉम्ब्स को प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स में बदल सकती है। भारत 44 वर्षों के बाद एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियंस की मेजबानी कर रहा है। यह प्रतियोगिता 10 से 17 मई 2026 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित की जा रही है। भारत सरकार ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया है। साथियों, करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज बस इतना ही। अब लीजिए सुनिए युववाणी कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं विजू शाह, गायक कलाकार हैं उदित नारायण एवं साधना सरगम और फिल्म का नाम है मोहरा।

इस गीत के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। आशा करता हूँ आप सभी श्रोता मित्रों को हमारी ये प्रस्तुतिकरण पसंद आई होगी। अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त प्रशांत कुमार आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म धुरंधर के इस गीत के साथ, जिसके बोल लिखे हैं जैस्मिन सैंडलर्स ने, संगीत दिया है शाश्वत सचदेव ने। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मधुबंती बागची ने, जैस्मिन सैंडलर्स और शाश्वत सचदेव ने।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म तेरे इश्क में। इस फिल्म से इस गीत को अपनी आवाज़ दी है और संगीत से सजाया है AR रहमान ने। वहीं इस गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

0: सुनते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं। हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से

0: उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत सुने फिल्म हक से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अरमान खान और विशाल मिश्रा ने। संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने, वहीं गीत के बोल लिखे हैं कौशल किशोर ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुने फिल्म स्काई फोर्स से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है विशाल मिश्रा ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, वहीं संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म मेट्रो इन दिनों से। अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत, संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने, वहीं गीत के बोल लिखे हैं कैसरुल जाफरी ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5:55 हो रहे हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण के तहत आप सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय होगा पर्वत से मैदान तक संरक्षण के उपाय और जन जागरूकता। वार्ताकार होंगे अरुण मोय दत्ता। संध्या 7:52 पर आप सुन सकेंगे सुगम

संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, कलाकार होंगे विजय कुमार दास। रात्रि 8 बजे प्रसारित होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे महेंद्र मयंक का लिखा नाटक अकल का ताला। रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार, और 10:30 पर आप सुनेंगे भावगीत का कार्यक्रम। कल प्रातः 5:50 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे कृषि पर आधारित कार्यक्रम खेत खलिहान। 6:05 पर होगा चिंतन मनन। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे डॉक्टर नवजीवन से भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय होगा शिशुओं में फेफड़ों का संक्रमण। 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान। 7:00 प्रसारित होगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्यांजलि में कवि दिनेश प्रसाद चौधरी से उनकी कविताएं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल 9:06 पर, 10:00, दिन के 11:00, 11:30 पर कार्यक्रम गुलदस्ता के तहत, 2:30 पर कार्यक्रम चित्रपट से के तहत, 5:30 पर, 8:00 कार्यक्रम रजनीगंधा में, 10:00 और 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कल 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगी पायल चक्रवर्ती। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम, कलाकार होंगे चामालाल मंडल। 10:45 पर हमारे पटना केंद्र से प्रसारित होगा समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चलें। दिन के 12:00 आप सुनेंगे शहरी महिला कार्यक्रम नारी लोक। दिन के 1:00 प्रसारित होगा लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार होंगे विनय कुमार शुक्ला। 1:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिला कार्यक्रम घर आंगन। दिन के 3:00 आप सुनेंगे रविंद्र संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे हेमंत मुखोपाध्याय। 3:25 पर आप सुनेंगे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। कल 5:00 आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। 6:00 प्रसारित होगा किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे विशेष भेंटवार्ता कार्यक्रम के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के मूल मंत्र, इस विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे यश विशेन, जो सिविल सेवा परीक्षा 2022 में भागलपुर निवासी चयनित अभ्यर्थी हैं। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, कलाकार होंगे अभिजीत आनंद। और 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये था आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:00 को है प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शंकर का नमस्कार।
1: सभी श्रोताओं को रामू का भी नमस्कार। शंकर भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार रामू भाई, कहिए कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल तो है ना?
1: हाँ शंकर भाई, सब कुशल मंगल तो है, पर अभी देखिए पिछले कई दिनों से जो रह रहकर आंधी तूफान बारिश ओलावृष्टि हो रही है, इससे प्रकृति और जो प्रकृति में जनमानस हैं उनको लाभ कम और हानि कुछ अधिक ही हो रही है शंकर भाई,
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: है कि नहीं? और देखिए मौसम का जब मिजाज बिगड़ता है तो उसके बाद क्या होता है कि सीधा असर

0: हम लोगों के पर्यावरण पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है, है कि नहीं? और जब हमारी प्रकृति जो है वो पेड़ पौधे हो, नदी तालाब हो, झरने हो या फिर पर्वत हो, उस पर उसका बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है। तो क्या होता है फिर, हम लोग प्रकृति के सहारे जीने वाले जो सभी पशु पक्षी है, मनुष्य है, कीड़े मकोड़े हैं, वो सभी जीवों के स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ता है। शंकर
1: बिल्कुल
0: भाई,
1: आपने सही बात कही। रामू भाई, आपने जब पेड़ पौधे जीव जंतुओं के स्वास्थ्य की चर्चा की तो मैं एक बात बताऊं रामू भाई कि आज 12 मई है और आज के दिन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस कहिए, पादप स्वास्थ्य दिवस कहिए,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: शंकर भाई, हम लोग मनाते हैं। ठीक है रामू भाई, हमारे जीवन में भोजन से लेकर घर मकान वस्त्र औषधि शिक्षा क्रीड़ा हर क्षेत्र में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और रहेगा
0: जी।
1: इसलिए रामू भाई हमारे भोजन की 80% खुराक तो पौधों से ही आती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर फसल ही हमारी बीमार हो जाए तो समझिए हमारी भोजन की थाली भैया खाली हो गई।
0: एकदम एकदम,
1: और हम लोग भूख प्यास से तो तड़पेंगे ही, साथ साथ बीमार भी पड़ जाएंगे।
0: इसलिए यह दिवस जो है शंकर भाई, वो पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा, गरीबी को दूर करने, जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में वैश्विक जागरूकता के लिए मनाया जाता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल,
0: और कोई भी दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है शंकर भाई कि आम लोग जागरूक हों, क्योंकि जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे तो उस दिवस को मनाने की सार्थकता नहीं रह जाएगी।
1: उसके बारे में अच्छे बुरे चीजों को समझे जाने
0: जी,
1: है ना, ये जरूरी है।
0: और इसका उद्देश्य है कि पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, टिकाऊ कृषि कैसे करें और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: और यह दिन इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे स्वस्थ पौधे जो हैं वो हमारे जीवन को सहारा देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जलवायु को नियंत्रित भी करते हैं। शंकर भाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए असमय मौसम परिवर्तन से FAO के अनुसार हर वर्ष लगभग 40% हमारी खाद्य फसलें कीड़े और पादप जनित बीमारियों से नष्ट हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और हमारी फसलें हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती, जैसा कि आपने भी बताया, क्योंकि भारत की लगभग 50% से अधिक आबादी खेती पर ही तो निर्भर करती है।
0: निश्चित रूप से। और कहा भी गया है शंकर भाई कि हमारा देश जो है वो ऋषि का और कृषि का देश है।
1: बिल्कुल,
0: है कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इस दिन का इसीलिए उद्देश्य ये भी है कि लोगों को यह समझाना कि पौधों की सुरक्षा सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी की स्थिरता से भी जुड़ी हुई है कि नहीं?
1: क्योंकि स्वस्थ पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को संतुलित तो करते ही हैं
0: जी।
1: और पेड़ पौधे CO2 सोखने के साथ साथ मिट्टी बांधने, जैव विविधता को बनाए रखने में भी मददगार है।
0: बिल्कुल।
1: और बीमार जंगलों का मतलब ही है रामू भाई जलवायु संकटों का बढ़ना।
0: निश्चित रूप से।
1: और जब जलवायु संकट बढ़ेगा तो जनमानस तो बस त्राही त्राही फिर।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: और देखिए ना, इसलिए क्या होता है कि अक्सर हम लोग अपने घर की बात कर लें या फिर ऑफिस कार्यालय की बात कर लें, उसमें पौधे तो लगा देते हैं लेकिन उनके देखभाल के मामले में थोड़े लापरवाह हो जाते हैं शंकर भाई। और देखिए, इन पौधों को भी देखभाल की जरूरत तो होती ही है।
1: बिल्कुल।
0: और घर के अंदर रहने वाले जो पौधे होते हैं ना, उसमें खेतों जैसा प्राकृतिक माहौल तो उनको नहीं मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए इन पौधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है शंकर भाई।
1: इसलिए श्रोताओं से विनती पूर्वक हम कहना चाहेंगे राम भाई कि खेती बाड़ी में प्रभावित जो बीज हैं उनका मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस तरह के बीज का हम चुनाव करें
0: जी,
1: है ना, जो हमारे कृषि विभाग के द्वारा प्रशंसा की गई है कि ऐसे बीजों का आप चुनाव करें तो ऐसे बीजों का ही चुनाव करें और अंधाधुंध कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग से बचें।
0: बिल्कुल।
1: और विदेश यात्रा से फल फूल बीज पौधे छुपा कर ना लाए भाई, क्योंकि इसके साथ साथ नए कीट भी आपके घर आ सकते हैं
0: जी।
1: और घर के इर्द गिर्द गमले में नीम तुलसी गेंदा अवश्य लगाएं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये पौधे प्राकृतिक कीटनाशक पौधे होते हैं और संक्रमित पौधों को कचरे में ना फेंक कर जला दें या मिट्टी में दफना दें।
0: एक बात और हम बताएंगे शंकर भाई, इसमें हम जोड़ना चाहते हैं कि पौधे जो होते हैं ना, वो अपनी हर तकलीफ को वो बोल तो नहीं सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अपनी पत्तियों के जरिए वो दिखाकर बताते हैं। पत्ता देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये पौधा में कुछ बीमारी से ये ग्रसित हो गया है। और किसी भी पौधे की जो ग्रोथ है ना, उसका विकास जो है उसकी जड़ों पर टिका होता है शंकर भाई।
1: बिल्कुल।
0: अब देखिए, गमले में हम लोग छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उसका जो रूट रॉट होता है, यानी मतलब जड़ का जो सड़ना होता है ना, वो एक बड़ी समस्या है शंकर भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जो अक्सर ड्रेनेज होल बंद होने की वजह से होती है।

इसलिए महीने में एक या दो बार मिट्टी की हल्की गुड़ाई जरूर करना चाहिए और पानी तभी देना चाहिए जब ऊपर की मिट्टी छूने पर सूखी लगे। और देखिए

0: खत्म हो जाते हैं। अगर गमले में मान लीजिए फंगस दिख रही हो तो थोड़ी सी हल्दी या दालचीनी का जो पाउडर होता है ना, वो मिट्टी में अगर मिला देने से वो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है शंकर भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये सब क्या है कि छोटी छोटी जानकारी अगर हम लोगों को रहेगी तो हम लोग पौधे का स्वास्थ्य ठीक रख सकेंगे।
1: और देखिए रामू भाई, अभी पौधे के स्वास्थ्य की बात हम लोग कर रहे थे, आपको पता ही होगा कि 8 मई से हम लोग वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मना रहे हैं, जिसका आज अंतिम दिवस है
0: जी।
1: तो रामू भाई, आंकड़े ये बताते हैं कि हर साल सड़क हादसों में लगभग 12 लाख लोग मारे जाते हैं, और यदि हम सिर्फ भारत की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं से ही हो रही हैं
0: जी,
1: जो दुनिया भर से ज़्यादा है रामू भाई। और 5 से 29 साल के युवाओं की मौत की सबसे बड़ी वजह सड़क हादसे ही हैं, जिनकी मौत के बाद उस घर का चिराग तो बुझ ही जाता है रामू भाई। साथ ही हम सबों को आर्थिक हानि भी उठाना पड़ता है
0: जी,
1: क्योंकि भारत की जीडीपी का 3% यानी लगभग 5.96 लाख करोड़ रुपए हर साल हादसों की वजह से ही बर्बाद होता है
0: जी,
1: और 90% हादसे इंसानी गलती से ही होती है
0: जी,
1: इसे चाहे तो हम रोक सकते हैं।
0: देखिए, अगर मूल रूप से अगर हम कहें शंकर भाई, तो छोटी छोटी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर हम गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं घर से, तो अगर दोपहिया वाहन लेकर निकल रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, है कि नहीं। अगर 4 चक्का से हम लोग जा रहे हैं तो उसमें क्या है कि सीट बेल्ट का प्रयोग करें
1: जरूर।
0: उसके बाद गति जो है, वो गाड़ी की गति जो है वो नियंत्रित करके चलाना चाहिए।
1: 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकते हैं,
0: जिस तरह का सड़क है मान लीजिए, जैसा भीड़ भाड़ वाला जगह है उस हिसाब से चलना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो क्या है कि अगर हम छोटे छोटे चीज को ध्यान में रखते हैं तो बड़े बड़े हादसे को टाला जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: है कि नहीं। और मान लीजिए कि अपने ये घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर घर के छोटे बच्चे हैं वो गाड़ी चलाना अगर सीख भी लिए हैं तो भी उनको गाड़ी दे करके सड़क पर नहीं भेजना है, है कि नहीं।
1: समझदारी इसी में है कि सतर्कता बिल्कुल रखनी चाहिए
0: जी।
1: कहावत ही है, सतर्कता हटी तो
0: दुर्घटना घटी
1: घटी
0: जी। चलिए, अभी तो हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और ये जो सड़क सप्ताह चल रहा है उस पर अभी चर्चा किए शंकर भाई
1: जी।
0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया सद्देवी गीत से हम लोग शुरुआत करते हैं।
1: आइए सुनते हैं।

0: हाँ, साजी साजी फूल थरिया, कितना अच्छा गीत था, पूरा माहौल एकदम भक्तिमय हो गया शंकर
1: बिल्कुल
0: भाई,
1: बिल्कुल
0: है कि नहीं?
1: बिल्कुल
0: तो देखिए शंकर भाई, अब हम लोग ये देवी गीत तो सुने ही, बहुत अच्छा गीत था। अब हम लोग संक्रमण की बात करते हैं। संक्रमण तब होता है जब शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीव जो है वो प्रवेश करते हैं और तेजी से प्रजनन करते हैं। अब इसका कुछ कारण भी होता है कि वायरस से जैसे कि बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं, बैक्टीरिया से हो जाता है, कवक से हो जाता है, जो भी परजीवी है। अब देखिए किसी व्यक्ति को अगर कोई संक्रमित बीमारी है तो उससे भी आप संपर्क में आएंगे तो भी आपको
1: बिल्कुल
0: प्रभावित हो जाएंगे
1: बिल्कुल
0: उससे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अगर हम लोग दूषित भोजन या पानी पीते हैं तो उससे भी हम लोग बीमार
1: बिल्कुल
0: बीमार हो जाते हैं,
1: हाँ
0: है कि नहीं? तो एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से हम लोग और विस्तार से जानते हैं कि संक्रमण कारण और निवारण।
1: आइए सुनते हैं।
0: जी
2: श्रोताओं, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। और अगर हम अस्वस्थ होते हैं तो हमारे लिए खुद व्यक्तिगत तौर पर, हमारे घर परिवार समाज और खास तौर से अगर कहा जाए तो राष्ट्र के लिए भी ये निश्चित रूप से हानिकारक होता है। लेकिन जीवन के इस उतार चढ़ाव में कई प्रकार की रोग और बीमारियां जो हैं, व्याधियां जो हैं, वो समय समय पर हम पर आक्रमण कर देती है। आज भागदौड़ की जिंदगी है, इस भागदौड़ की जिंदगी में हम कई जगह आते जाते हैं, कई प्रकार के कार्य भी क्या करते हैं, इस क्रम में कई बार संक्रमण के भी हम शिकार हो जाते हैं, जो कि संक्रमण हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम कैसे और क्या हम शिकार हो गए, जो कि कई रूप और कई रंग का होता है, जो हम नहीं जान पाते हैं, जिसकी विधिवत जांच करवाई जाती है तो फिर हमें पता चलता है कि हमें किस चीज़ का संक्रमण है या किस प्रकार का संक्रमण है। संक्रमण के तो लिए खास तौर पर आज की बात अगर हम करें तो आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसी व्यक्तित्व, एक ऐसे शख्सियत को हमने आमंत्रित किया हुआ है जो कि इस विषय पर, इस क्षेत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। और भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों की भी बात करें तो यहाँ के संक्रमण के दृष्टिकोण से सबसे वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर कुमार सुनीत। इन्हें हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका अपने श्रोता भाइयों बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। और पहली बात हम जानना चाहेंगे, एक आम हमारे जो श्रोता हैं, जो सुनते हैं हमारे कार्यक्रम को प्रतिदिन, उनके लिए कि ये संक्रमण होता क्या है, किस प्रकार से होता है।
3: सबसे पहले सारे श्रोताओं को मेरा अभिवादन। जहां तक संक्रमण की बात है, जब एक

0: कोई कीटाणु या परजीवी शरीर में, मानव शरीर में प्रवेश करता है, तब शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। उस रिएक्शन की वजह से जो भी लक्षण पैदा होते हैं,
1: जी
0: तो वो बीमारियों के लक्षण के रूप में प्रकट होती हैं। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि हर संक्रमण बीमारी ही पैदा कर दे, ये जरूरी नहीं है।
1: अच्छा
0: ये निर्भर करता है मरीज के प्रतिरोधी क्षमता पर।
1: अच्छा अच्छा मैंने शरीर में हमारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है, प्रतिरोधक क्षमता,
0: जी
1: उस पर वो निर्भर करेगा।
0: जी
1: बहुत अच्छा। तो ये प्रतिरोधक क्षमता जो है, सबके अंदर अलग अलग प्रकार की हुआ करती होगी।
0: देखिए, वो सारे मनुष्यों में प्रतिरोधक क्षमता एक जैसी ही होती है।
1: जी
0: हाँ, अब जैसे उम्र के एक्सट्रीम्स में, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे या बिल्कुल बुजुर्ग,
1: जी
0: इन लोगों में प्रतिरोधी क्षमता थोड़ी कम होती है।
1: अच्छा
0: जिन लोगों को क्रॉनिक इलनेस है, मान लीजिए कि कोई मधुमेह से ग्रसित है,
1: जी
0: या आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे HIV,
1: HIV, बिल्कुल
0: HIV से ग्रसित मरीज जो होते हैं, उनकी मुख्य परेशानी यही होती है कि साधारण से साधारण संक्रमण भी जो होता है, वैसे कीटाणु जो एक अन्य मनुष्य में बीमारी पैदा करने की क्षमता नहीं रखते हैं, वो भी HIV के मरीज में बीमारी पैदा कर देते हैं, सिर्फ
1: अच्छा
0: इस वजह से कि उनकी प्रतिरोधी क्षमता बिल्कुल नगण्य हो जाती
1: जी
0: है।
1: जी और रही बात है कि अब संक्रमण किस किस प्रकार का से हो सकता है, हमें ये हम जानना चाहेंगे।
0: जी, संक्रमण होने के कई तरीके होते हैं। एक पहला तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब आप जो संक्रमित वस्तु या चीज़ है उससे आपका सीधा सीधा स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो,
1: जी जी
0: या किसी लिक्विड से आपका सीधा कांटेक्ट हो।
1: जी जी
0: जैसे अभी जिस बीमारी की हमने बात की, HIV की,
1: एड्स के बारे में।
0: जी,
1: जी
0: तो ये सीधे सीधे जैसे यौन संसर्ग से होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: ब्लड के किसी प्रोडक्ट से हो सकता है,
1: जी जी
0: बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट से हो सकता है।
1: जी
0: तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट के तरीके से इस तरह की बीमारियां होती हैं।
1: जी
0: दूसरा, हवा से,
1: जी
0: हवा से यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन,
1: अच्छा
0: मतलब हवा में बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कीटाणु रहते हैं
1: जी
0: जो आपके शरीर में ज़्यादातर श्वास की नली से प्रवेश करते हैं।
1: जी जी
0: एक इसका बहुत कॉमन सा जो उदाहरण है
1: जी
0: वो है यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस।
1: अच्छा
0: इसका मोड ऑफ स्प्रेड यही है।
1: जी
0: उसके अलावा आप इंजेक्शन से हो सकता है।
1: जी जी
0: इंजेक्शन से अगर आप इन्फेक्टेड नीडल यूज़ करते हैं,
1: जी
0: खास करके आप देखेंगे ड्रग एडिक्ट्स में ये बहुत कॉमन है। कभी कोई, मान लीजिए किसी मरीज़ पर ही कोई प्रोसीजर किया गया, कोई जांच ही की गई,
1: जी
0: संयोगवश अगर, मतलब मान लीजिए कि वो नीडल या इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड है,
1: जी
0: तो उससे भी शरीर में संक्रमण का प्रवेश हो सकता है, कीटाणु का प्रवेश हो सकता है,
1: जी जी
0: जो बाद में संक्रमण पैदा कर सकता है और बीमारी भी पैदा कर सकता है।
1: जी
0: इसके अलावा वाटर बोर्न, फूड बोर्न, खाने में,
1: जी
0: जैसे कि आप हैजा देखते हैं, टाइफॉइड देखते हैं,
1: जी
0: साधारण पीलिया
1: जी
0: जो हेपेटाइटिस ए कहते हैं, पोलियो है,
1: जी
0: ये सब वाटर बोर्न और फूड बोर्न कैटेगरी में आते हैं।
1: जी
0: अमीबियासिस जो दस्त होता है साधारण,
1: जी जी
0: वो हाथों से, हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है।
1: अच्छा ये भी होता है।
0: जी, तो आजकल आप पश्चिम में भी यू तो हाथ मिलाने की जो
1: परंपरा है
0: समाज में जो परंपरा है वो बहुत
1: जी
0: पुरानी है,
1: जी
0: लेकिन इधर हाल के वर्षों में रिसर्च पाया गया है कि हाथ मिलाने से डिजीज़ ट्रांसमिशन बहुत होता
1: तो
0: है।
1: इस दृष्टिकोण से तो अपनी भारतीय पद्धति जो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी जी
0: हाथ जोड़ लेना उससे कहीं बेहतर है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अच्छा डॉक्टर सुनीत जी, ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे जांच वगैरह के लिए हम जब भी जाते हैं या कहीं भी चिकित्सक के यहाँ जाते हैं, तो वो रक्त की भी जांच करवाते हैं
0: जी
1: या फिर पेशाब की जांच होती है, पखाने
0: जी
1: की जांच होती है, तो

0: वो भी तो संक्रमण कुछ ना कुछ होता होगा या पता चलता होगा?
1: देखिए ऐसा है कि जो रक्त की जांच होती है, जो साधारण जो आप देखते होंगे कि सीबीसी या टीसीडीसी लिखते हैं लोग,
0: जी
1: तो इसमें जो शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है किसी संक्रमण से
0: जी
1: वो आपको दिखाई देता है। मतलब कुछ प्रतिरोधी कोशिकाएं होती हैं, कुछ प्रतिरोधी सेल्स होते हैं जिनकी संख्या बड़ी रहती है।
0: जी जी
1: मान लीजिए कि कोई एक कम समय का इन्फेक्शन है तो उसी हिसाब से उस तरह के जो सेल्स हैं वो बढ़े रहेंगे। तो ये एक पैथोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि अगर ये इस तरह का कुछ आ रहा है ब्लड में तो ये दर्शा रहा है कि कुछ इन्फेक्शन है। इसके अलावा और भी कई टेस्ट होते हैं जिनको सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, जो अलग अलग खास बीमारियों के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे आप देखते होंगे विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए, मलेरिया के लिए अलग टेस्ट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि पेशाब को कल्चर के लिए बोला गया,
0: बिल्कुल
1: तो अगर आपके मूत्र नली में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसके लिए अगर आप कल्चर करें, कि कल्चर में बेसिकली होता यह है कि आपके मूत्र को एक ऐसा वातावरण दिया जाता है जिसमें कि कीड़े आराम से पनप सकें,
0: जी
1: मतलब उसका भोजन दिया जाता है,
0: जी
1: तो उसमें कीड़े अगर होंगे तो वो पनपते हैं और पता चल जाता है। फिर उसके बाद कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा ये पैथोलॉजिस्ट आपको बताते हैं।
0: डॉक्टर सुनील, एक बात जानना चाहेंगे, ये तो संक्रमण के बारे में विस्तार से हम लोगों ने बातचीत की। अब चूंकि हमारे शरीर पे एक शब्द पहले जो उभर कर आई कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर वो निर्भर करता है कि संक्रमण कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, होगा या नहीं होगा, तो हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे विकसित करें, एक विशेषज्ञ के तौर पर हमारा आहार और विहार कैसा हो, इस विषय में हमारे श्रोता भाइयों के लिए जरा प्रकाश डालते हैं।
1: देखिए आहार जो है वो बिल्कुल बैलेंस डाइट जो कहा जाता है वही लेना चाहिए। ज़्यादा वसा युक्त चिकनाई युक्त भोजन से परहेज करना चाहिए। जहाँ तक आहार की बात है, हमारा जो जो सदियों से चला आ रहा जो परंपरागत जो आहार है हिंदुस्तान में, उसमें काफ़ी मसाले होते हैं। अगर सही मात्रा में उन मसालों का भी उपयोग किया जाए, अगर आप इतिहास में भी देखें तो मसालों का प्रयोग शायद इसी वजह से हुआ भी था। कहीं कहीं पर पानी में कुछ गंदगी थी जो बीमारियां पैदा करती थी, उनसे बचाव के लिए ही मसालों का प्रयोग शुरू हुआ था। तो अगर आप एक बैलेंस डाइट ले, हेल्दी हैबिट्स रखें, नियमित व्यायाम करें और अपने आसपास साफ सफाई करें।
0: जी
1: इसमें एक खास बात है शौचालय की सफाई, अपने पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना, और ख़ास करके एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा जिस पर जोर दिया जा रहा है वो है हैंड वॉशिंग, हाथों को अच्छी तरह से धोना। मतलब अगर आप खाना खाने वाले हैं तो खाने के पहले अच्छी तरह से हाथों को धोएं, गंदे हाथों से ना अपना नाक छुएं ना अपनी आंखें छुएं। हैंड वॉशिंग इन्फेक्शन को रोकने में सबसे कारगर है।
0: यानी कि हम मूल रूप से अपनी साफ सफाई पर अगर ध्यान रखते हैं और आहार और विहार को संतुलित रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो विकसित रहती है, चाहे उम्र कुछ भी हो, वय
1: कुछ
0: कुछ।
1: टीके भी हैं, कुछ
0: जी
1: टीकों की भी जरूरत पड़ती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए, काफी बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए टीके उपलब्ध हैं,
0: जी
1: तो भारत सरकार का जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से बचपन में सारे टीके दिलवा दिए जाए
0: जी
1: तो बेहतर होता है।
0: जी और रही बात है कि संक्रमण कारण और निवारण, इस विषय पर डॉक्टर कुमार सुनीत, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाश डाला और हमारे श्रोता भाइयों के लिए स्पष्ट तौर पर सब कुछ आपने वैसा बताया कि संक्रमण हो ही नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार से चलना है और क्या क्या किया जा सकता है, उम्र के किसी वय पर हों या किसी भी मुकाम पर हों। श्रोताओं की ओर से ही हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद आपका बुलाने।
2: जी निश्चित रूप से, संक्रमण कारण और निवारण इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए

0: वार्ताकार डॉक्टर कुमार सुनील को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इसके भेंटकर्ता थे डॉक्टर विजय कुमार मिश्र। चलिए कार्यक्रम में आगे और भी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे शंकर भाई, पहले कुछ जरूरी संदेशों को सुन लेते हैं।
1: आइए सुनते हैं।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
2: क्रेश,
3: ट्रेश
1: और बाल्टी बॉय।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
5: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
6: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद जरूरी संदेश सुनने के बाद फिर से एक बार हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और रामू भाई, अभी तो दौर बदल गया है
7: जी,
6: लेकिन हमारा जो गीत संगीत है ये हमारे कुछ पौराणिक चीज़ों की भी कभी कभी याद दिला देता है।
7: निश्चित।
6: एक समय वो था जब कोई पति विदेश कमाने चला जाता था और पत्नी गाँव में रहा करती थी, खेती बाड़ी करती थी, क्या परेशानियां होती थी उनके सामने उनके बिना। तो
7: पूर्वी के माध्यम से हाँ,
6: पत्र कहाँ था उस वक्त, पत्र भी बहुत कम था। ऐसे जगह पे पति रहते थे, वहां पत्र भी पहुंचना मुश्किल था। लेकिन एक पत्र के माध्यम से इस गीत को एक पत्र बनाया गया
7: जी,
6: और उस माध्यम से
7: मतलब उनके मन में जो विरह होता था उसको व्यक्त करते
6: थे। इस पूर्वी के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, पतिया में लिखी के हम।

0: जी, अब कुछ मौसम की भी जानकारी दे दीजिए शंकर भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल रामू भाई, पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी तूफान, तेज हवा चलना, मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता प्रातःकाल में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने का अनुमान है।
0: जी।
1: और पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा भी चल सकती है रामू भाई। इसलिए सामान्य सलाह दी जाती है किसान भाइयों को कि आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रख दें और खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित कर दें, और खाद, कीटनाशक, ऐसी दवाओं का यदि छिड़काव करना ही हो तो आसमान साफ रहने पर करें
0: जी।
1: और मूंग और उड़द की खेती का समय अभी लगभग खत्म होने को है, लेकिन चल रहा है, इस माह तक चलेगा। और कुछ किसान भाई हमारे खेत में डाल चुके हैं जिसमें अब फूल भी आने लगा है।
0: जी।
1: तो मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी ध्यान से करते रहें, और यदि ऐसा कुछ दिखे तो बचाव के लिए हेतु मैलाथियन 50 EC प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव वर्षा ना होने की संभावना पर ही करें
0: जी।
1: और साग सब्जी में नेनुआ, करेला, लौकी, खीरा क्षतिग्रस्त होने वाले जो हैं, जिनसे कि कीट उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनके प्रकोप पे थोड़ा सा ध्यान दें। और 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मैलाथियन 50 EC को 1000 पानी के घोल में मिलाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार आप छिड़काव कर सकते हैं, और ये भी वर्षा की संभावना यदि होने की ना हो तो ही करें
0: जी।
1: और बात आती है अब रामू भाई पशुपालन की भी। देखिए हमारे किसान भाई जो हैं खेती गृहस्थी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कारण कि पशुपालन से दूध दही तो प्राप्त होता ही है, उन्हें जैविक खाद की भी प्राप्ति हो जाती है
0: और आमदनी का भी एक स्रोत है शंकर भाई।
1: स्रोत है बिल्कुल। तो जो पशु ब्याने वाली हैं यानी प्रसूति के रूप में हैं, तो प्रसूति बुखार से उन्हें बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रति दिन दें, और दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10

0: ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से ही दें, और हरा चारा जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं।
1: निश्चित रूप से ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। निश्चित रूप से किसान भाई जो हैं वो अगर इस तरह से खेती बाड़ी करते हैं तो उनका फायदा उनको जरूर होगा, और हमारे पशुपालक भाइयों को भी इसका बहुत जरूर लाभ मिलेगा, है कि नहीं
0: जी।
1: और अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बाह्य ध्वनांकन पर आधारित मूंग की खेती पर किसान से की गई बातचीत को, और इसके संकलन करता है रविशंकर रवि।
0: श्रोताओं, आए दिन हम अपने इस कार्यक्रम में आपको तरह तरह के किसान भाइयों से बातचीत करवाते हैं, और वो किस किस तरह की खेती करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं ताकि आप भी लाभान्वित उससे हो सकें। आज मेरी मुलाकात हो रही है आर्मी के सेवानिवृत्त कैप्टन जलधर मंडल जी से, और इनसे हम आज सुनेंगे कि मूंग की खेती ये किस तरह से करते हैं और मूंग की खेती से क्या क्या फ़ायदा ये प्राप्त करते हैं। आइए सुनते हैं इनके मुख से ही। नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार सर।
0: चाचा जी, आप ये बताएं कि मूंग की खेती आप लोग किस तरह करते हैं?
2: अरे मूंग का खेती हम लोग चना चाहे सरसों या गेहूँ, तीन फसल होता है
0: जी।
2: वह चना पक जाने के बाद में और सरसों भी पक जाने के बाद में और गेहूँ भी पक जाने के बाद में तीनों को कटाई कर लेते हैं। कटाई के बाद में यदि नमी रहता है, बारिश होता है और वो नमी रहता है, तब तो उसमें मूंग बो देते हैं। 4 kg का बीघा लगता है मूंग, उसको बो करके 2 बार जुताई करके पटाटर चला देते हैं। और यदि बारिश नहीं है, नमी नहीं है, तब तकरीबन उसको सिंचाई करते हैं, चाहे बोरिंग से चाहे कोई जूस का भी जो साधन है, हम लोगों का बोरिंग है तो बोरिंग से हम सिंचाई कर लेते हैं
0: जी।
2: उसके बाद में सिंचाई के बाद में जब जुतने लायक होता है खेती, उसमें हल चलने लायक ट्रैक्टर चलने लायक होता है, तब उसको पहले तो मूंग बो देते हैं 4 kg का बीघा के साथ, और उसको 2 बार जुताई करके फावड़ा उसमें चला देते हैं। जो बराबर हो जाए तो तकरीबन 7-8 दिन में पौधा निकल जाता है।
0: अच्छा, जब आप मूंग का बीज डालते हैं खेत में तो उस समय किसी भी तरह के खाद का भी प्रयोग करते हैं?
2: नहीं, मूंग में कोई खाद का जरूरत नहीं पड़ता, नहीं देते हैं, क्यों खाद देने से मूंग अधिक बढ़ जाएगा तो उसमें फली नहीं आएगा, इसलिए मूंग में कोई भी किसान खाद नहीं डालता है।
0: अच्छा अच्छा, ये जब आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो इस बार कितने बीघा का आप खेती कर रहे हैं?
2: हम मूंग का खेती 5 बीघा हम इस बार किए हैं।
0: 5 बीघा?
2: हाँ 5 बीघा किए हैं। जब सबसे पहले तो जो भी सरसों जो सबसे पहले कट जाता है वो तो हमें 2 बीघा पहले सरसों था तो कट गया, वर्षा हुआ था उसमें नमी था तो उसमें अभी हो गया कि 1.5 महीना उसमें पौधा हुआ बड़ा हो गया, उसको सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ा और अभी वह फूलने लगा। बीच में एक बार सूखा पड़ा तो उसमें एक बार सिंचाई करना पड़ता है, एक बार सिंचाई कर दिया उसमें फूल लग गया है, अब 15-20 दिन के बाद में फली भी लग जाएगा उसमें से।
0: अच्छा, इसकी जो उपयुक्त खेती का समय जो है वो क्या है, फरवरी मार्च अप्रैल किस महीने में इसको बोने से ज़्यादा फायदा रहता है?
2: तकरीबन मई महीने में, मई के शुरुआत में बो देते हैं, तो अधिक देरी होने पर नहीं, जैसे अभी बोएगा तो फिर धान का बारिश भी होता है और धान का समय आ जाएगा और वर्षा होने लगा तो मूंग गल जाता है, सड़ जाता भी होगा नहीं। शुरू मई के शुरू में जितना जल्दी गेहूँ चाहे चना चाहे सरसों जितना जल्दी कटता है उसको जल्द ही बोने से उसमें टाइम मिलता है अधिक, तो टाइम मिलने के बाद में उसमें पौधा भी बढ़ता है और उसमें फल और फूल देता है, पक भी जाता है टाइम से, बरसात नहीं होता है तो उससे पहले हम लोग उसको मूंग को तोड़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। और लेट होने पर जैसे अभी बोएगा किसान, अभी जून चल रहा है, अभी जो किसान बोएगा तो उसको अभी उसको खेती का टाइम आ जाएगा, बारिश का टाइम आ जाएगा, उसको अधिक नहीं निकाल पाएगा, थोड़ा बहुत निकाल ले, अधिक पूरा नहीं निकाल पाएगा। फिर रोपा का टाइम तो जितना हो सके तो जितना जल्दी सरसों कटे चाहे चना कट जाए जगह हो जितना जल्दी हो उसको बोना चाहिए।
0: अच्छा, तो ये जब आप खेत में डाल देते हैं तो फल आने तक में कितने दिन का समय लगता है?
2: तकरीबन 2.5 से 3 महीने तक

0: ताकि फल पक जाता है उसमें आने में।
1: अच्छा,
0: 2 महीने तो फल आ जाता है लेकिन 2.5 से 3 महीने तक लगता है उसमें फल पकने का।
1: अच्छा, तो जब ये फल पकता है तो क्या उसकी फली को तोड़ते हैं?
0: हाँ, फली को देखो हम लोग अभी हाइब्रिड मूंग का खेती करते हैं, जो मूंग बड़ा बड़ा होता है उसमें, यानी उंगली से अधिक होता है और मोटाई होता है उसमें, यह एक उसमें टहनी में इकट्ठा 7-8 का ग्रुप में वो फली देता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो वह तोड़ने में आसान होता है और उसमें दरमन भी बहुत होता है।
1: अच्छा, तो इसका दरमन कैसे जाता है, जैसे बीघा पे कितना केजी लगभग?
0: बीघा पे तो 1.5 क्विंटल से लेकर के 2 क्विंटल तक बीघा, अच्छी तरह से यदि मूंग होगा तो 1.5 क्विंटल से लेकर 2 क्विंटल पर बीघा होगा।
1: अच्छा, ये एक ही बार में वो फल दे देता है या एक बार तोड़ने के बाद फिर से फल उसमें आता है?
0: ना, इसमें ऐसे मूंग में कि फल पक गया थोड़ा, यानी 1 रुपये तक में है तो 4 आना पक जाता है, 25% पक गया तो तोड़ लिए, तोड़ने के बाद में उसमें फूल और फल भी रहता है, तो फिर वह फल 10-15 दिन के बाद में तो फिर वह फल ही पकता है।
1: अच्छा,
0: तब हम उसको तोड़ते हैं, फिर तीसरा तोड़ नहीं होता है, 3-4 बार मूंग को तोड़ा जाता है, इकट्ठे नहीं पकता है।
1: अच्छा, चलिए, मूंग की खेती आप इस तरह से करते हैं। अच्छा, कुछ किसान भाई को देखते हैं कि मूंग की खेती अछारा के तरह करते हैं, मतलब खेत को पहले पटा देते हैं पानी से, उसके बाद उसमें मूंग डालते हैं, उसकी उस तरह से खेती कैसी होती है?
0: हाँ, वो भी ठीक है कि खेत को बहुत आदमी क्या करता है, खेत को जुताई करके सूखे में ही
1: अच्छा
0: मूंग छींट देता है और उसके बाद में सिंचाई कर देता है, तो उसमें जितना होता है ना पूरा उसमें मूंग का, मूंग उसमें पूरे का पूरे 100% पूरा उसमें आ जाता है, उसका बीज ऊपर में कोई ऊपर में हो चाहे नीचे भी गया तो सिंचाई होता तो पूरा जो जम जाता है बीज, वो भी अच्छा किस्म का होता है।
1: अच्छा, एक बात बताइए चाची, जैसे आपने अभी बताया तो कि 4 केजी का बीघा लगता है, जुताई 2 बार होता है, तो कितना लगभग 1 बीघे में खर्च पड़ता है और क्या लगभग मुनाफा आपको होता है?
0: वह खर्च तो जुताई का 45 मिनट, उसमें 1 बीघे में 2 चास करने में 40 से 45 मिनट लगता है, 45 मिनट का मतलब 1 बीघे का 600-700 रुपया लग जाता है तकरीबन जुताई का। हम मूंग 4 केजी हुआ तो 70-75 रुपया का मूंग बिकता है, 300 का मूंग हो गया, 75 रुपया केजी हुआ तो 300 रुपये का मूंग हो जाता है, तो 300 यह हो गया
1: 700-800 रुपया
0: तक में 1000 1 बीघे में बुआई हो जाता है उसमें।
1: और फिर तोड़ने में?
0: हाँ, तोड़ने में तो उसको मजदूर से हम लोग 3 हिस्से में,
1: अच्छा,
0: यानी 3 हिस्सा हम लेते हैं, 1 हिस्सा उसको देते हैं,
1: ठीक है,
0: वही है तोड़ने में, वही आजकल तो मजदूर नहीं लगता है, वह सब मजदूर अपने से यानी 4 भाग में बांटते हैं, 1 भाग वह लेता है, 3 भाग हम लेते हैं, जैसे जैसे टाइम अधिक बीतते जाता है। पहले वाले में तो है कि 3 हिस्सा हम लिए 1 हिस्सा उसको दिए, यानी 4 केजी में 3 केजी हमको देता है 1 केजी उसको देते हैं।
1: अनुमान के तौर पे 1 बीघे में कितना केजी मूंग आपको प्राप्त होता है सब खर्च काट के?
0: हाँ, सब कर खर्च करके 2 क्विंटल हो या खर्च काट करके 2 क्विंटल होता है, तो 2 क्विंटल का 60 रुपया दर से
1: अच्छा,
0: उसमें होता है
1: था। अच्छा,
0: तो 60 रुपया दर से 14-12 हजार 1 2 क्विंटल हो तो 12 हजार होता है 1 बीघे में। हाँ, और उसमें खर्चा 1000 तकरीबन है, तो मूंग में फायदा अधिक है। और उसमें दूसरा बात है कि उसमें जब पानी पड़ता है तो उसमें जुताई करके मूंग का जितना बीज है और पौधा सब है वो खेत में गल भी जाता है, तो एक तरह से कंपोस्ट खाद बन जाता है।
1: अच्छा, मतलब तोड़ने के बाद जो पौधा बचता है फल को तोड़ने के बाद उसको आप खेत में गला के जैविक खाद बना देते हैं?
0: हाँ, खेत में तोड़ने के बाद में देखते हैं बरसात का हुआ वही नहीं फल रहा है तो उसको हम जुताई करके
1: उसके बाद गला देते हैं, धान रोपते
0: फिर उसके बाद धान रोपते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात, आपसे जानकारी मिली चाचा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, फिर से आपको एक बार पुनः धन्यवाद।
2: जी निश्चित रूप से, अभी हम लोग ये मूंग की खेती पर जो बातचीत सुने निश्चित रूप से हमारे किसान भाई को बहुत फायदा होगा इसका, शंकर भाई है कि नहीं?
3: और देखिए रामू भाई, अन्न तो उपज कर लेते हैं हमारे किसान भाई, लेकिन उसे भंडारण करने की सही विधि भी जानना जरूरी है उनके लिए।
2: निश्चित।
3: और देखिए, अन्न हम उपज कर लिए, खमार पे लाके रख दिए, अब बारिश हो गई अचानक, तो ऐसी भी व्यवस्था घर में रखनी चाहिए, कुछ

0: पन्नी त्रिपाल जो कि अचानक कुछ ढक के हम बचा सकें,
1: बिल्कुल
0: तो वो तो हो गया कि भाई जब आप खमार पे रखे हैं तो, लेकिन जब अन्न को आप उपज कर लेते हैं उससे दाना निकाल लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से सुखाना चाहिए, धूप में अच्छी तरह से सुखाने के बाद फिर अच्छे बोरी में बंद करके। और देखिए भंडारण करने की जो आम तौर पे विधि है कि गांव घर में लोग कहते हैं निस्वार एक पौधा होता है, और जैसे आपने कुछ देर पहले अभी नीम की पत्ती की बात कही थी, तो नीम की पत्ती, निस्वार का पत्ता, लाल मिर्च, ऐसे सब चीज़ों को कुछ ना कुछ बोरी में डाल करके और आप पैक कर दें, बढ़िया से बंद कर दें, सील कर दें उसे, और फिर रखें ऐसे जगह पे जहां पानी का कोई रिसाव या फंगस की संभावना ना हो।
1: तो हम लोग एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से और विस्तार से इस पर जानते हैं शंकर भाई कि अनाज भंडारण कैसे करें। वार्ताकार हैं श्रवण कुमार सिंह, आइए इनकी बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक सुने।
2: किसानों के लिए सबसे आवश्यक है कि अनाज भंडारण कैसे करें। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर आइए हम किसानों को जानकारी दें कि अनाज भंडारण के लिए आवश्यक क्या है, किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो अनाज भंडारण किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और भंडारण के लिए कुछ बातें हैं जिसे किसानों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तो आइए इन बातों को ध्यान में रखें। वो पहली बात है, अनाज भंडारण के लिए सर्वप्रथम यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनाज अच्छी तरह हम साफ कर लें। उसके बाद यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनाज में नमी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा 12% से कम हो। जिस बोरे में अनाज का रखाव किया जाना है उस बोरे को अच्छी तरह से सफाई करने के बाद गर्म पानी में, गर्म पानी का अभिप्राय है खौलते हुए पानी में, कम से कम 5 से 10 मिनट तक डुबा कर रखें, ताकि उसमें जो जीवाणु विषाणु है, कीड़े मकोड़े है, वो समाप्त हो जाए। उसके बाद बोरे को सुखाकर अच्छी तरह रखें। जिस गोदाम में भंडारण कर रहे हैं या करने की योजना है वहाँ अच्छी तरह सफाई करें। सफाई के बाद चूना करें। चूना करने के बाद कमरे को अच्छी तरह से सूखने दें। यदि यह नहीं कर सकते हैं तब किसानों के लिए दूसरा भी विकल्प है कि यदि आपका कोई कमरा है और उस कमरे की लंबाई 10 10 mm है, तो उसमें 50 EC डेल्टा मैथिलीन को 10 लीटर पानी में घोलकर फर्श एवं दीवारों पर छिड़काव स्प्रे करें। छिड़काव करने के बाद अच्छी तरह से, छिड़काव के लिए यह आवश्यक है कि छिड़काव के लिए डेल्टा मैथिलीन के अलावे नोवान, मैलाथियोन 50 EC का भी प्रयोग किया जा सकता है। छिड़काव के बाद कमरे को अच्छी तरह से सूखने दें। कमरे को अच्छी तरह से सूखने के बाद सूखे हुए बोरे में जो गर्म पानी से आपने पहली पहले धोया था उस सूखे हुए बोरे में अनाज भरें। अनाज में सल्फास या गेमेक्सिन पाउडर का प्रयोग करें। 1 टन अनाज में 3 टेबलेट सल्फास का उपयोग किया जा सकता है। भरे हुए बोरे को, अनाज से भरे हुए बोरे को अच्छी तरह से पैकिंग करें। पैकिंग करने के बाद यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस बोरे को जमीन पर कभी भी नहीं रखें, क्योंकि अनाज नमी के कारण खराब हो सकता है। इसके लिए सावधानी रखने की जरूरत है कि लकड़ी, पुआल, प्लास्टिक आदि का उपयोग करें और उस पर अनाज के बोरे को अच्छी तरह से

0: रखें। अनाज के बोरे को दीवार से सटाकर कभी भी नहीं रखें, क्योंकि अनाज खराब हो सकता है, वर्षा के दिनों में पानी पड़ सकता है। वर्षा के दिनों में एक बातें हैं जिसे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि अनाज के बोरे को अच्छी तरह से ढक दें, जिससे अनाज खराब नहीं हो, नमी की मात्रा अनाज को प्रभावित नहीं कर सके।
1: तो अनाज भंडारण कैसे करें, इस विषय पर बहुत ही अच्छी और विस्तार से जानकारी दी शंकर भाई इन्होंने। और अभी आप बता भी रहे थे कि किस तरह से हमारे पास ये होना चाहिए भंडारण करने के लिए घर में, किस तरह से हमारे पास जो भी ड्रम है, बोरी है, या फिर वहाँ पर नमी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं?
2: बिल्कुल। और समय हो चला है हम लोग के विदा लेने का रामू भाई, तो तब तक हम कहेंगे अपने श्रोताओं से, फिर मिलेंगे आप अपने कार्यक्रम में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने और अपनों का ध्यान रखें, और दें अपने शंकर को विदा। नमस्कार
1: सबको, रामू का भी नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, संध्या के 7 बजने को है। अब हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द की। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्यपाल ने बिहार आई बैंक का नाम बदलकर झारखंड आई बैंक करने का दिया निर्देश। संस्थान को आयुष्मान योजना से जोड़ने के भी आदेश। बिजली पानी संकट को लेकर राजधानी रांची समेत राज्यभर में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को बताया संवेदनहीन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि कार्यशाला संपन्न। कम बारिश की आशंका के बीच मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए सुखाड़ योजना बनाने के निर्देश। और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश और आंधी से मौसम बदला। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात बाधित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शिक्षा में मेडिकल दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में बिहार आई बैंक ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इसका नाम जल्द बदलकर झारखंड आई बैंक करने और भूमि संबंधी समस्याओं को तुरंत सुलझाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने संस्थान को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने तथा आधुनिक सुविधाओं के लिए सीएसआर फंड जुटाने पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। धनबाद में प्रेस वार्ता कर श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते झारखंड में अवैध हथियारों की खेप पहुंच रही है, जो बेहद चिंताजनक है।
2: इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है, जो प्रिंस खान दो ऑडियो इधर वायरल हुआ, किस प्रकार से पाकिस्तान के रास्ते पंजाब के रास्ते इलीगल आर्म्स को मंगाया जा रहा, इसके बाद भी सरकार मौन। यानी ये गठजोड़ देश के अंदर ही अंतरराज्यीय ही गिरोह ये नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल गिरोह भी, तो इसमें से हेमंत सोरेन क्या कर सकते।
0: राजधानी रांची समेत राज्यभर में बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। रांची में आयोजित विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिजली कटौती और पेयजल किल्लत का जल्द समाधान नहीं हुआ तो भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन और उग्र करेगी।
3: झारखंड की राजधानी रांची में लोग पानी और बिजली को मांग को लेकर को लोग उतरने का काम किए हैं और उसी प्रकार का दृश्य पूरे राज्य में बनी हुई है और प्रत्येक प्रशासनिक जिले में इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता सड़कों पर उतरने का काम किया है। लेकिन सरकार देशुद्ध सोई हुई है, इनको आम लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है।
0: जमशेदपुर में पहाड़ों और नदियों के संरक्षण को लेकर 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में देश भर के पर्यावरणविद और विशेषज्ञ जुटेंगे। जल पुरुष राजेंद्र सिंह और विधायक सरयू राय के संरक्षण में होने वाले इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य नदियों और पर्वतों के संवर्धन के लिए सशक्त कानून बनाने की ठोस पहल करना है।
4: पहाड़ों और नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें एक सशक्त कानून बनाए। अब इसका संरक्षण संवर्धन जरूरी इसलिए है कि हमारा जो विकास हो रहा है उस विकास में सबसे अधिक खतरा पहाड़ों और नदियों पर ही है। तो जब तक कोई कानून ऐसा सशक्त नहीं रहेगा जिसके आधार पर जिला प्रशासन या कोई भी कठोर कानूनी कार्रवाई कर सके, इसलिए एक ही विषय रखा है सेमिनार में और वह है लॉ फॉर माउंटेन्स एंड लॉ फॉर रिवर्स।
0: रांची स्थित सेना भर्ती कार्यालय ने आज घोषणा की है कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के तहत कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन 1 जून से 15 जून तक किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोरहा टोली से 4 दिनों से लापता 18 महीने की अदिति पांडे की तलाश के बीच आज सुबह गाड़ी गांव नाले से कुछ क्षत विक्षत अवशेष बरामद हुए हैं। सिटी एसपी

0: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय कृषि कार्यशाला में आज कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। उन्होंने बताया कि अल नीनो के कारण कम बारिश की आशंका को देखते हुए सभी जिलों को आकस्मिक सुखाड़ योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हजारीबाग में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लेकर सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। रांची से आई नोडल अधिकारी प्रियंका सांगा ने बताया कि इस ऐप से मरीज, डॉक्टर, लैब और फार्मेसी आपस में जुड़ेंगे।
1: एक रिव्यू मीटिंग रखा था हमारे सिविल सर्जन की अध्यक्षता में। इस फाइनेंशियल ईयर की जो रिपोर्ट थी उनसे हम लोगों ने साझा किया और उनको बताया कि अभी तक उन्होंने कितना इस मॉड्यूल को अच्छी रीति से स्टार्ट किया है, नहीं किया है, बीएसएनएल की कनेक्टिविटी मिली है, नहीं मिली है, उनको भी हम लोगों ने शामिल किया कि अपने प्रॉब्लम्स को रखे, जहाँ प्रॉब्लम्स है वो उनको नोट डाउन कराए।
0: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर आज सदर अस्पताल में विधायक ममता देवी और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली दर्जनों नर्सों को सम्मानित किया। विधायक ने अस्पताल की सफलताओं का श्रेय नर्सों के सेवा भाव को दिया।
2: आज इंटरनेशनल नर्सेस डे आज मनाया जा रहा, सभी हमारी नर्स बहनें उसको बहुत बहुत बधाई। हमारे रामगढ़ जिले में अगर हमारा सदर अस्पताल आज नई ऊंचाइयों को अगर छू रहा है, कई सारे अवार्ड अगर प्राप्त कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारी नर्स बहनें वहां पर काबिले तारीफ हैं। यहां के स्टाफ, यहां के डॉक्टर सभी का भरपूर सहयोग रहता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में भी ये सदर अस्पताल और भी विकसित हो।
0: मौसम। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आंधी के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबर है। इससे बिजली के तार टूट गए और आवागमन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आगामी 17 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ द्वारा 15 मई से बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में अंडर 16 समर क्रिकेट कैंप का आयोजन किया जाएगा। महासचिव असीम कुमार सिंह ने बताया कि 20 दिनों के इस कैंप में खिलाड़ियों को फिजिकल फिटनेस और क्रिकेट की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द की। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्यपाल ने बिहार आई बैंक का नाम बदलकर झारखंड आई बैंक करने का दिया निर्देश। संस्थान को आयुष्मान योजना से जोड़ने के भी आदेश। बिजली पानी संकट को लेकर राजधानी रांची समेत राज्यभर में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को बताया संवेदनहीन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि कार्यशाला संपन्न। कम बारिश की आशंका के बीच मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए सुखाड़ योजना बनाने के निर्देश। और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश और आंधी से मौसम बदला। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात बाधित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7:11 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए अरुण मोय दत्ता से वार्ता। वार्ता का विषय है पर्वत से मैदान तक संरक्षण के उपाय और जन जागरूकता।
4: पर्वत से मैदान तक पर्यावरण संरक्षण का दृष्टिकोण मिट्टी के कटाव को रोकना है, वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करना है, स्थानीय लोगों की आजीविका को सहारा देना है और जल संसाधनों को संरक्षित करना है। पर्वत से मैदान तक पर्यावरण संरक्षण का एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि पारिस्थितिकी तंत्र परस्पर जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों, पर्वतों, पहाड़ियों में की गई सुरक्षा गतिविधियों का सीधा सकारात्मक प्रभाव निचले मैदानी इलाकों, नदियों, घाटियों पर

पड़ता है। यह अवधारणा जल संभर प्रबंधन पर आधारित है, जहां पानी के बहाव के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाती है। पर्वत से मैदान तक पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख सिद्धांत यह है कि एकीकृत जल संभर प्रबंधन, यह सिद्धांत पूरे भूदृश्य को एक इकाई मानता है। इसका उद्देश्य ऊपरी पहाड़ियों पर वर्षा जल का संचयन करना, मिट्टी के कटाव को रोकना और भूजल को रिचार्ज करना, ताकि मैदानों में पानी की निरंतर आपूर्ति बनी रहे। ऊपरी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा। नदियां और नदी तंत्र अक्सर पर्वतों में शुरू होती है, इसलिए पर्वतीय वनों और जल ग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा मैदानी इलाकों के लिए आवश्यक है, ताकि बाढ़ को रोका जा सके और बारहमासी जल प्रवाह बना रहे। मिट्टी और जल संरक्षण, पर्वतीय ढलानों पर वनीकरण और मृदा संरक्षण के उपाय, मैदानों में उपजाऊ मिट्टी के बहकर आने गाद को कम करते हैं। इससे नदियों की गहराई बनी रहती है और बाढ़ का खतरा कम होता है। भूदृश्य आधारित दृष्टिकोण। यह सिद्धांत पश्चिमी घाट या हिमालय जैसे पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट की सुरक्षा को कृषि और शहरी नियोजन के साथ जोड़ता है। जैव विविधता का ह्रास रुकता है। सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ आजीविका स्थानीय समुदायों को वनों के प्रबंधन और संरक्षण में शामिल करना, ताकि वे पारिस्थितिकी तंत्र का सम्मान करते हुए अपनी आजीविका जैसे जड़ी बूटी चराई चला सके। नीति और विनियमन। अरावली जैसी पर्वत श्रृंखलाओं में अवैध खनन पर रोक लगाना और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करना, जो उत्तर भारत के मैदानों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा दीवार का काम करते हैं। भारत ने पर्यावरण क्षेत्र के विस्तार में प्रगति की है, फिर भी इसे वन स्वास्थ्य और जैव विविधता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। घने वनों का क्षरण, मैंग्रोव का ह्रास और जनजातीय अधिकारों का उल्लंघन एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करता है। वन प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करना आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरक्षण कानूनों की प्रभावी पुनर्स्थापना सतत विकास को प्राप्त करने की कुंजी है। भारत में वास्तविक वन संरक्षण के लिए प्रकृति और निवासियों दोनों के लाभ हेतु पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन में पर्वतों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पर्वत वर्षा कराने में सहायक होते हैं और नदियों का स्रोत बनते हैं। वे जैव विविधता के संरक्षण में मदद करते हैं, क्योंकि वहाँ उनके अनेक वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं। पर्वतों पर फैले वन वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करते हैं। ये जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। पर्वत मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को कम करते हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान देते हैं। इस प्रकार पर्वत पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। भारत में पर्वतों के पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्य रूप से अरावली और हिमालय श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने अवैध खनन पर रोक, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, वन रोपण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 500 मीटर के दायरे में खनन पर रोक, प्रतिबंध जैसे कड़ी उपाय अपनाए गए हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख उपाय। अरावली क्षेत्रों में प्रतिबंध। गुजरात से दिल्ली NCR तक पूरी अरावली श्रृंखलाओं में नए खनन पट्टे पर पूर्ण रोक है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। मार्च 2023 में शुरू की गई इस परियोजना के तहत 29 जिलों में बंजर भूमि को हरा भरा करने और

जल निकायों को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। वैज्ञानिक मानचित्रण, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की वैज्ञानिक परिभाषा तय की है ताकि पर्यावरणीय क्षरण को रोका जा सके। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत यह मिशन हिमालयी ग्लेशियरों और पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए काम करता है। वनीकरण और पुनर्वास सरकारी फंड, कैंपा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से वनीकरण और अवैध खनन वाले क्षेत्रों का पुनर्वास किया जा रहा है। पर्वत से मैदान तक संरक्षण के उपाय, पर्वतीय क्षेत्रों में संरक्षण, उद्गम स्थल, वनीकरण और पुनर्वनरोपण, ढलानों पर सघन वृक्षारोपण करना ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके और जल धारण क्षमता बढ़े। सीढ़ीदार खेती, पहाड़ों पर ढलान के अनुरूप सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करना जिससे पानी का बहाव कम हो और मिट्टी न बहे। अतिचारण पर रोक, पहाड़ी चरागाहों में पशुओं की अनियंत्रित चराई को रोकना क्योंकि इससे वनस्पति नष्ट होती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। खनन पर नियंत्रण, अरावली जैसी संवेदनशील पर्वत श्रृंखलाओं में अवैध खनन और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना। सतत पर्यटन, पर्यटन को बढ़ावा देते समय पर्यावरणीय नियमों का पालन करना और कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना। मध्यम ढलान और तराई क्षेत्रों में संरक्षण, जल संरक्षण और चेक डैम, नालियों और छोटी नदियों पर छोटे बांध, चेक डैम बनाकर पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करना और भूजल पुनर्भरण करना। घास की पट्टियां, ढलानों पर घास की पट्टियां लगाना जो मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं। पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा, सड़कों के निर्माण में ढलानों को कम काटना और भूस्खलन को रोकने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करना। मैदानी क्षेत्रों में संरक्षण, नदी किनारों को पीर लगाकर कटाव को रोकना और गाद को मैदानों में आने से पहले नियंत्रित करना। रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग और मिश्रित खेती को बढ़ावा देना ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। मैदानों में जल भराव को रोकने के लिए उचित जल निकासी प्रणाली विकसित करना। तराई के इलाकों में स्थित झीलों और वेटलैंड्स को बचाना जो बाढ़ को रोकने में प्राकृतिक बफर का काम करते हैं। पर्वत से मैदान तक जन भागीदारी, स्थानीय समुदायों को वनीकरण और संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना अति आवश्यक है। शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना, लोगों को वनों की कटाई के खतरों और संरक्षण के विशेष महत्व के बारे में जागरूक करना। ये सारी उपाय और जन भागीदारी न केवल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं बल्कि स्वच्छ जल की आपूर्ति और जैव विविधता की रक्षा में भी मदद करते हैं। भारत सरकार ने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। 2026 के संदर्भ में इन योजनाओं का विवरण विस्तृत रूप में बताया गया है। पर्वतमाला परियोजना, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, यह योजना मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए है। भारत सरकार की उद्देश्य है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के विकल्प के रूप में रोपवे विकसित करना। इसके तहत वर्ष 2026 तक देश भर में लगभग 1,25,000 करोड़ की परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें प्रमुख हैं सोनप्रयाग, केदारनाथ जैसी प्रमुख रोपवे परियोजनाएं। यह पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए सहायक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं, जनवरी 2026 में सरकार ने 10,000 किलोमीटर से अधिक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे मैदानी पठारी राज्यों को भी शामिल किया गया है।

0: प्रसाद योजनाएं पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों पर बुनियादी ढांचे का विकास करना, नदी घाटी परियोजनाएं, ये पहाड़ों से निकलने वाली नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करती है। अंत में हम कह सकते हैं, पर्वत से मैदान तक पर्यावरण संरक्षण का दृष्टिकोण मिट्टी के कटाव को रोकता है, वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करता है और स्थानीय लोगों की आजीविका को सहारा देता है और जल संसाधनों की संरक्षित करता है।
1: हमारा पर्यावरण आज के इस कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे पर्वत से मैदान तक संरक्षण के उपाय और जन जागरूकता इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे अरुण मोय दत्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7:24 हो रहे हैं। 7:30 पर हमारे पटना केंद्र से प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
2: 8700014242।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस थोड़ी ही देर में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
4: और इस गीत के बाद
3: छाया की

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द, पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। अब विद्यालयों को शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों का फार्मर आईडी बनाने के लिए आज से शुरू हुआ विशेष अभियान। और पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, गया और अरवल समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी विद्यालयों की

0: मनमानी रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने कहा कि निजी विद्यालयों को शुल्क की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय शुल्क में मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे, साथ ही किसी भी अनावश्यक शुल्क पर रोक रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को पुस्तक और पोशाक खरीदने की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा छात्रों की फीस बकाया होने पर भी उन्हें परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा सकेगा और न ही उनके परिणाम पर रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले निजी विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों का फार्मर आईडी बनाने के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और स्वयं के नाम से दर्ज जमाबंदी की जानकारी देनी होगी। श्री सिन्हा ने कहा कि यह अभियान डिजिटल इंडिया को और गति देगा।
1: देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है डिजिटल इंडिया और हमारा डिजिटल किसान का एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री, ये उसको एक बड़ी ताकत देगा। भूमि विवाद हटाएगा, उसके परिमार्जन म्यूटेशन को क्लियर करेगा और आने वाला पीढ़ी को उसकी जमीन की पूरी जानकारी भी मिलेगा। सरकार को उर्वरक, बीज, ये सब अनुदान जो देते हैं वो सही लोगों के हाथ में जाएगा। बिचौलिया, माफिया, भ्रष्ट लोग बाहर होंगे।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमंता बिस्व सरमा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हो गया। ब्यौरा हमारे भोजपुर संवाददाता से।
2: बिहार विधान परिषद के भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार उप निर्वाचन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों जिलों के विभिन्न प्रखंड मुख्यालय स्थित बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। भोजपुर के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने बताया कि 97.96% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस सीट पर जदयू के कन्हैया प्रसाद तथा राजद के सोनू राय में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि चार निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। मतों की गिनती 14 मई को आरा में होगी। यह सीट पूर्व MLC राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। आकाशवाणी समाचार के लिए आरा से मुकेश कुमार सिन्हा।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इधर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। नर्स दिवस पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में IIT पटना को पंजाब स्थित IIT रोपड़ के साथ जोड़ा गया है। IIT पटना के निदेशक TN सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि इस पहल के तहत पंजाब के 60 चयनित युवा बिहार आएंगे और बिहार के युवा पंजाब जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को राज्यों की सांस्कृतिक विविधता, परंपरा, तकनीक और सामाजिक जीवन से अवगत कराना है।
3: एक प्रदेश के विद्यार्थियों को दूसरे प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ के शिक्षा के आयाम को देखने का एक सुनहरा अवसर है। IIT पटना इस बार पंजाब प्रदेश के साथ इसकी पेयरिंग है। पंजाब के विद्यार्थी 60 की संख्या में यहाँ पे आएंगे और उनको बिहार के जो प्रमुख शिक्षा संस्थान, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक धरोहर जो है उन सबों का भ्रमण करने का और उनको समझने का अवसर मिलेगा। और इसी तरह से बिहार के विद्यार्थी

0: साथियों को भी पंजाब ले जाकर के पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर और वहाँ के सामाजिक संस्थानों को देखने का अवसर मिलेगा।
1: राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज मुंगेर विश्वविद्यालय की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने विश्वविद्यालय के कामकाज में पारदर्शिता और शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, बांका, गया और अरवल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है।
5: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर बांका के बेलहर थाना क्षेत्र के बलिहारी गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों को बचाने और एक वर्ष तक सोने की खरीद नहीं करने की अपील का आम लोगों ने स्वागत किया है।
6: मैं नित्या कुमारी पटना से, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करती हूं। मैं अगले एक साल तक सोने के आभूषण नहीं खरीदूंगी, साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की बचत पर ध्यान दूंगी। LPG की जगह इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करूंगी। लोगों को भी मैं इस पहल में जागरूक करूंगी।
7: मैं निशा कुमारी छपरा से, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है महिलाओं से, तो मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं और मैं आशा करूंगी कि आप भी अपने देश और अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी रहेंगी।
8: मैं रोमी कुमार जीव का CM, मैं सभी सदस्यों को समझाई कि सोना ना खरीदें एक साल और तेल कम खर्च करें।
9: अनिल कुमार, औरंगाबाद। यह कदम भारतीय मुद्रा को मजबूत करने में सहायक साबित होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
1: रेलवे ने अमृतसर, न्यू जलपाईगुड़ी, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन फारबिसगंज और निर्मली सरायघाट के रास्ते करने का फैसला किया है। वही रेलवे ने पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जमुई स्टेशन पर ठहराव दिया है। यह ट्रेन 15 मई से जमुई स्टेशन पर रुकेगी। पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता बागी कुमार वर्मा का निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। बागी कुमार वर्मा का पार्थिव शरीर विधानमंडल परिसर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बागी कुमार वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जाने माने कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री से सम्मानित गोपाल जी त्रिवेदी का आज पटना में निधन हो गया। गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और उन्होंने लीची की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों की खोज की थी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई

0: गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। दूरदर्शन केंद्र पटना के वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक राजन कुमार का निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर दूरदर्शन केंद्र पटना और आकाशवाणी पटना के अधिकारियों और कर्मियों ने गहरी शोक संवेदना जताई है। बक्सर के वीर कुमार सिंह सेतु चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने 45 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के हरियाबारा टोल प्लाजा के पास पुलिस ने एक चारपहिया वाहन से 180 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 461 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सासाराम नगर निगम की महापौर काजल कुमारी ने आज 1,20,00,000 रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न सड़क और नाला का उद्घाटन किया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा में लौरिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर शिव कथा और रामलीला का भी मंचन होगा। शेखपुरा जिले में आज विकास और समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय सांसद अरुण भारती ने की। बैठक में जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई और कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जहानाबाद जिले के 25,000 रुपए के इनामी अपराधी पप्पू सौ को पुलिस ने बक्सर से गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द। पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। अब विद्यालयों को शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों का फार्मर आईडी बनाने के लिए आज से शुरू हुआ विशेष अभियान। और पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, गया और अरवल समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: अरवल जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।
1: अरवल जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। 2 मई से शुरू हुआ यह अभियान 30 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इससे पूर्व जिले में 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया, जिसमें नागरिकों ने बड़ी संख्या में ऑनलाइन माध्यम से जनगणना में भाग लिया। अब मकान सूचीकरण के तहत प्रगणक द्वारा स्वगणना में भाग नहीं लेने वाले लोगों को भी जनगणना में शामिल किया जा रहा है। उसके लिए जिले के सभी कर्मियों और चार्ज अधिकारियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिले में बीते 9 मई को वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 195 मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया। इनमें 68 सुलहनीय आपराधिक मामले तथा 64 बैंक ऋण से संबंधित मामले शामिल थे। इसमें 17,03,726 रुपए का सेटलमेंट हुआ तथा ट्रैफिक चलान से 3,02,500 रुपए की वसूली की गई। लोक अदालत के लिए 4 पीठों का गठन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों जिले में तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ तथा कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिले के सभी पंचायतों में 19 मई से सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इसमें आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाएगा तथा प्राप्त शिकायतों की निगरानी और निष्पादन सहयोग शिविर समाधान पोर्टल पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहयोग शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, इसके लिए जिले में प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों जिले में किसान को डिजिटल पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से किसान पंजीकरण का कार्य बड़े स्तर पर किया गया। एग्री एस्टेट परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत किसानों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया गया, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुगम तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न पंचायतों और प्रखंडों में विशेष शिविर आयोजित किए गए तथा किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया गया। इस अभियान में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जिला पदाधिकारी को पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने जिले में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक बताया। इधर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे सभी पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लाभुकों से जल्द अपना जीवन प्रमाणीकरण कराने की अपील की गई है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 19,681 पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो सका है। प्रशासन द्वारा ऐसे लाभुकों की सूची तैयार कर उन्हें जागरूक करने तथा प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। बीते दिनों भू अभिलेख निदेशक सुहर्ष भगत जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विशेष भू सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य की समीक्षा की। उन्होंने जिला पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता को जिले के सभी 312 राजस्व ग्राम में भू सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद अरवल जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह देखा गया। परिणाम घोषित होने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
0: अभी आप सुन रहे थे अरवल जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।

मीडियम वेव 205.7 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 7:52 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए विजय कुमार दास की आवाज़ में सुगम संगीत। आरंभ में प्रस्तुत है गोपाल दास नीरज का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी यहीं पर संपन्न हुआ। कलाकार थे विजय कुमार दास। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमे, और हर नगमा अपनी उस फिल्म की पहचान है, चाहे वे 90 के दशक के गीत हों या आज के दौर के गीत। तो दोनों ही तरह के गीत आज हम सुनेंगे। आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म ज़रा हट के ज़रा बच के, इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, वहीं संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

आप सुन रहे हैं रजनीगंधा। तो चलिए अब कार्यक्रम में अगला गीत एक ऐसी फिल्म से जो 2007 में आई थी। इस फिल्म को 90 के दशक की ब्यूटी क्वीन और टॉप मोस्ट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, इनकी अंग्रेज़ी में कहते हैं कि कमबैक फिल्म के बारे में बड़ी चर्चा थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाई थी, लेकिन इसके जो गीत थे आज भी लोगों की जुबां पर हैं। आइए सुनते हैं इस फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये गीत। संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने, इस गीत के बोल लिखे हैं जयदीप साहनी ने।

0: इलाकाई मामलात पर नजरियात का तबादला करेंगे।
1: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पास ले जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहे हैं, कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे के बारे में बात करते हुए जनाब जसवाल ने कहा कि उनके दौरे के दौरान तवानाई की यकीनी फरामी पर बातचीत होगी। जनाब जसवाल ने वजीर आजम के नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड्स के दौरों के सिलसिले में भी मुत्तला किया।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद किए जाने से मुतालिक खबरों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जसवाल ने कहा कि इन खबरों से इस बात की तस्दीक होती है जो पहले से मालूम था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में एक मखसूस मुकर्रर और तालमेल से की गई कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नीस्तो नाबूद करना था।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत खुद को तमाम रुकावटों के मुकाबले अपने तौर पर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, ख्वाह वो रुकावटें इक्तसादी हों, तकनीकी हों या जोग्राफियाई सियासी। नई दिल्ली में CII सालाना बिजनेस समिट 2026 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया हर रोज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम, जोग्राफियाई, सियासी और कारोबारी सूरत हाल की वजह से बहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत लगातार इस मुखालिफ सूरत हाल को मौके में तब्दील करता रहा है। भारतीय इक्तसादी बुनियादों को इंतहाई वसी तर करार देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत कभी दबाव में नहीं आया और चैलेंज भरे दौर में हमेशा ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अहलकारों, अवामी शिकायतों और पेंशन के महकमे के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की सदारत करेंगे। काफी वक्त से इल्तिमा में पड़ी 985 शिकायतों पर, जिनका ताल्लुक 37 वजारतों और महकमों से है, अदालत में बरमौका हल के लिए गौर किया जाएगा। पेंशन और पेंशन याफ्तगान के महकमे ने बताया कि अब तक 15 पेंशन अदालतों के जरिए तकरीबन 28,000 मामलों पर गौर किया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 20,000 को बरमौका ही निपटा दिया गया, जिससे कामयाबी की 71% की शरह का इजहार होता है। स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि NCERT और CBSE ने मुश्तरक तौर पर तीसरी जमात से आठवीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच और मसनूई जहानत से मुतालिक एक नई दरसियात तैयार की है। इस पहल के मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि यह दरसियात पहले ही नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद मुतला किया कि NCERT 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए भी मसनूई जहानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए राजस्थान में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। कल तक गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए साहली कर्नाटक में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस दौरान मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 से 3 दिनों के लिए शिमाल मशरकी खित्ते, अंडमान और निकोबार जजायर और अरुणाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमेरिका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। सेंसेक्स 1456 पॉइंट्स या 1.92% की कमी के साथ 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में 436 पॉइंट्स या 1.83% की कमी आई और ये 23,380 पर बंद हुआ। गैर मुल्की करेंसी की मार्केट में आज रुपए की कदर में 32 पैसे की कमी आई और $1 की कदर रिकॉर्ड कम होकर 95.63 रुपए हो गई। बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी

0: प्रमोश तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जेरमी गॉन्टिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। बैंकॉक में इस साल BWF सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय के टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला अख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं रेडियो नाटक अक्ल का ताला। इस नाटक के लेखक हैं महेंद्र मयंक।

0: बाप के होटल में खाते खाते घेड़ा हो गया है। अरे मरता भी नहीं है, दिन भर मटर गस्ती करते रहता है। शर्म कहीं का, शर्म नहीं आती? बूढ़ा बाप दिन रात चाक चलाकर बर्तन बनाता है। यह भी नहीं होता कि मिट्टी सान दे, थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। किस्मत फूटी है इसकी। अरे हुनर सीख लेगा तो भविष्य में काम आएगा काम।
1: लो देखो, सुबह हुई नहीं कि बकबकी शुरू हो गई, आराम से सोने भी नहीं देते।
0: हम बकबक करते हैं, कमाए धमाए सारे बस, उल्टे कहता है बकबक करता है।
1: हाँ, इसी बकबकी से बड़का भैया दिल्ली भाग गए, समझे आप?
0: क्या बोला?
1: दिन रात झगड़ा झंझट करते रहते थे, अब मेरे पीछे पड़ गए हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। हमको भी भगा कर ही दम लेंगे क्या?
0: तुमको भी जाना है तो जाओ, लेकिन अपनी कनियन को भी साथ ले जाना। बड़के भाई की, बड़का भाई की तरह तुम भी अपनी कनिया को मेरी छाती पर छोड़ के मत जाना। बेशरम कहीं का, कमाते कमाते मेरा दम फूल रहा है, बेटा को कोई परवाह ही नहीं। यह भी नहीं होता कि मट्टी लाकर सान दे, चाक पर लौदा रख दे, देखते रहता है, पर थोड़ा भी अफसोस और दर्द नहीं होता कि बूढ़ा बाप इस उम्र में भी दिन भर मेहनत करके तुम सबका पेट भरता है।
1: हमने कितनी बार कह दिया है कि हमसे कुम्हारगिरी नहीं होगा, आप हड़िया धैला बनाते रहिए, पौनिया वाला काम हमसे नहीं होगा। आज तक क्या किए बोलिए, क्या किए? 10 बीघा जमीनों खरीदे क्या? इस पौनिया गिरी से तो कुछ नहीं कर पाए और मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गए हैं। एक बार कह दिया ये मिट्टी विट्टी का काम हमसे नहीं होगा, चाहे जो भी कह लीजिए।
0: अरे जब भूख मरेगा तब पता चलेगा, अभी आटा दाल का भाव मालूम नहीं है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करता है। जा दिल्ली, झुग्गी झोपड़ी में जब रहेगा तब पता चलेगा, बड़का भाई को पता चलेगा।

0: आज 2 बरस हो गया क्या पैसा घर भेजा है। यहाँ यहाँ दोनों बहू का खाना पीना के साथ साथ खाना पीना के साथ साथ दवा दारू भी करना पड़ता है। इस बूढ़ी हड्डी को चूस चूस कर जान मार देगा नालायक कहीं का। अभी तुमको पेट में भूख नहीं पीठ में है। अरे अरे यही गांव की मट्टी और हवा काम आएगी। यहाँ खटिया पर बैठे बैठे सपना देखते रहता है।
1: हाँ तो सपना पूरा करके भी दिखाऊंगा। और ये मत समझना कि बड़का भैया की तरह अपनी कन्या को इस नरक में तुम दोनों की सेवा के लिए छोड़ दूंगा। काम मिलते ही आकर ले जाऊंगा उसको, फिर तुम दोनों एक छत्र राज करना।
0: अरे अरे हमें क्या दिखाएगा, रजुआ मोतिया जोगिया तो दिल्ली में ही कमाता था, आज खाट पर पड़ा बीमारी से मर रहा है। उल्टे बाप दादा की जमीन बिक गई इलाज में, और कहता है सपना पूरा करके दिखाएंगे, वो भी अरमान पूरा कर ले। तुमरा बड़का भैया 2 साल से सिर्फ सपना ही देख रहा है।
1: आप कुछ भी कहिए, समझे ना, आप कुछ भी कहिए, हम मानने वाले नहीं है।
0: अरे अरे अरे तुम पर भूत सवार हो गया है, पुश्तैनी काम छोड़कर मरने जा रहा है, तो जा जल्दी से जा, छोड़ मेरा पिंड।
1: तुम मरिए इसी गांव में।
0: हाँ मरेंगे,
1: चाक मरेंगे, चाक चलाते रहिए, सड़ते रहिए, कुड़िया पुछिया बढ़ाते रहिए।
0: बाल पोस कर बड़ा किया इसी दिन के लिए, आज आज मेरा ही जन्मा हमें हमें उपदेश देता है, इस कुम्हारगिरी को तुच्छ समझता है।
2: अरे भोरे भोर बाप बेटा का कचकच फिर शुरू हो गया, जलखै भी होगा कि दोनों लड़ते ही रहोगे।
0: तुम्हारी माँ जलखै के लिए चिल्ला रही है, चल अंदर और मेरी बात पर शांत होकर सोच, तुम्हारे बाप हैं हम, तुम्हारे हित की ही बात करेंगे। चल चल अब जलखै कर ले, नहीं तो तुम्हारी माँ फिर चिल्लाएगी।
2: अरे क्या हुआ गुड़िया के बाबू, क्या हो गया तुमको, लगता है दम्मा फिर से उखड़ गया। अरे माधव संभाल अपने बाप को, देखता क्या है, संभाल संभाल, भोरे भोर कच कच करके क्या हाल कर दिया है बाप का, देख रे माधव देख। ओहो लाइट पीता है।
1: अरे हाँ हाँ, अरे दम फूल गया तो हमी को दो, अजीब बखेड़ा है, समझ में नहीं आता। चलो बाबू चलो अंदर चल कर लेट जाओ, थोड़ी देर आराम हो जाएगी, फिर जलखै कर लेना। अरे चलो भी।
2: अरे बांस भर सूरज चढ़ गया और अभी तक दोनों महारानी फो फो करके सो रही है, जैसा बेटा वैसी बहू।
3: अरे ओ हरिया, घर में है या नहीं रे?
0: बिरजू रे आओ, कहो कैसे आना हुआ?
3: अरे हरिया जा रहे थे सब्जी लाने, तो सोचा रास्ते में अजीज दोस्त से मिलता चलूं।
0: हाँ क्यों नहीं भाई, हाँ हाँ।
3: घर में अकेला हूँ, सारा काम खुद निपटाना रखता है, थक जाता हूँ, औलाद होता तो सहारा मिलता, लेकिन लगता है बे औलाद ही इस दुनिया से स्वर्ग सिधार जाऊंगा, स्वर्ग सिधार जाऊंगा।
0: अरे बिरजू मत्रो मत्रो भाई, इस तरह मन को कमजोर मत कर, देख देख बिरजू भाई, अरे मेरे घर की भी तो वही कहानी है, 2 बेटा होते हुए भी नसीब में सुख नहीं है भाई। दिन रात कोल्हू के बैल की तरह खटता हूं, तो चूल्हा जलता है, मैं ना रहूं तो पता नहीं घर का क्या हाल होगा। मेरा तो दोनों बेटा नालायक और काम छोर है रे बिरजू। एक को पैसा कमाने का लूर है, एक को पैसा।
3: अरे हरिया, तेरे दोनों बेटे नालायक निकले, लेकिन सीता जैसी बेटी तो है ना, जो शादी के बाद भी तुम्हारे और भाभी जी का इतना ख्याल रखती है। तुम्हें तो कम से कम एक बेटी का बाप होने का सुख भगवान ने दिया है, मुझे तो वो भी नसीब नहीं।
0: हाँ बिरजू,
3: लोग बेटा बेटी में फर्क करते हैं, लेकिन देख तेरी बेटी समाज के लिए एक उदाहरण है, जो शादी के बाद भी अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखती है, उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगी रहती है। सही कहा है कि बेटा तभी तक बेटा है जब तक उसकी शादी ना हो जाए, लेकिन बेटी हमेशा बेटी रहती है।
0: हाँ बिरजू भाई, अगर गुड़िया ना होती तो हमारे जीने की आस खत्म हो गई रहती। हरी बेटी है जो हम जिंदा है। अरे बेटी तो दो दो खानदान को संभालती है, लेकिन लेकिन बेटा में वो बात है बिरजू भाई, एकदम नहीं, एकदम नहीं बिरजू भाई। बिरजू भाई, हम कहते हैं बेटी पर ही तो हम जिंदा है। हाँ बिरजू भाई, हाँ
3: सच कहूँ तो हमें अपने बच्चों से ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हरिया। ना उम्मीद रखूंगा ना दुख होगा, बस बस इतनी इच्छा है कि बच्चे जहाँ रहे खुश रहे स्वस्थ रहे। बस अब चलता हूँ हरिया, फिर मिलूंगा।

0: गुड़िया माँ,
1: कहो क्या कहते हो?
0: ये बरसात है कि काल बरस रहा है?
1: ठीक के कहते हो गुड़िया के बाबू, हमको तो छोटका का फिकर लगा है। पता नहीं भागलपुर पहुंचा भी होगा कि नहीं।
0: फालतू फिकर मत करो, वह नालायक तो सांझे पहुंच गया होगा। इस समय तो दिल्ली वाली रेल में आराम से पसरा होगा। बाप माए गया जहन्नुम में, तनिक भी फिकर है उसको?
1: अरे लेकिन मैं तो माँ हूं ना।
0: चाहे बेटा सपूत हो या कपूत, हमको लगता है गुड़िया माए, मेरा दम्मा फिर उखड़ गया है।
1: अरे नहीं नहीं नहीं,
0: देखो देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, दोनों में से कोई बेटा लायक नहीं निकला। बड़का तो पहले से दिल्ली में है, छोटका भी आज भागिया गया, रह गए हम दोनों परानी और तुमरी दोनों बिगड़ल बहू। एक तो हमरी कमजोर हड्डी और ऊपर से दम्मा का प्रकोप।
1: क्या हो गया, क्या हो गया?
0: जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।
1: ऐसा मत कहो बुढ़िया के बापू, कुछ नहीं होगा तुमको। और फिर फिकर काहे के लिए करते हो? अरे हम भी कुमार की बेटी है, तुम्हारा सारा काम अब मेरे जिम्मे। मैं खुद चाक चलाऊंगी, मिट्टी सानूंगी और रंग रोगन भी करूंगी। तुम चिंता क्यों करते हो गुड़िया के बाबू? बस आराम करो, आराम करो, तुम सो जाओ तुम।
0: गुड़िया माँ, गुड़िया माँ
1: सो जाओ।

0: सो जाओ।
1: सुनो सुनो, ये तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत जो संहार कर रखे थे वो बेटी के पास चुपचाप रख दिया है। नहीं तो तुमरा नालायक बेटा क्या एक को पैसा बचने देता, जबरदस्ती छीन लेता तुमसे। भगवान की दया है कि इतने बड़े घर में गई है वो। बस एक वही है जिस पर भरोसा है। हे भगवान, हे भगवान, हे राम,
0: बैठ जाओ गुड़िया के बाबू, बैठ जाओ। ये क्या हो गया है तुमको, क्या हो गया? हे भगवान, इतनी रात को इस पानी बरसात में अब मैं किसके पास जाऊं, किसको बुलाऊं? मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं?
1: तुम बचाओ, रुको रुको गुड़िया मैं, आओ तुम मेरे पास बैठो।
0: हाँ, गुड़िया मैं बैठती हूँ
1: मेरे पास बैठो। हाँ, तुम मेरे पास बैठो।
0: अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मरीगले हो गुड़िया के बाबू, अब हम केकरा भरोसे जीवे हो, हमरा छोड़ी के चल लो गेले। आओ गुड़िया के बाबू, हमरा छोड़ी के चल लो गेले हो गुड़िया।

देखना छोटकी, गुड़िया आ गई है, कोई न कोई चाल जरूर चलेगी, बुढ़िया को उसकाएगी। जिस दिन से हम दोनों गोतनी आई हैं, बुढ़िया उसी की बात पर चलती है रे। हम लोग तो बस घर की नौकरानी बनकर रह गए हैं, गुड़िया तो कानून की पोटली है। कब तक बेटी काम आएगी।

0: माँ, तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती माँ। कितनी बार तुम्हें समझाया पर मानती ही नहीं हो। अब भोगो, दोनों भाभियां पक्के के घर में रहती है और तुम्हें गोहाल में डाल दी है। छी छी छी, यहाँ कितनी बदबू आती है। अब देखती रहो यहाँ कुड़िया फुचिया, गंदरा बुथरा पे सो, अगर कहीं डिबरी गिर गई तो इसी में जलकर मर जाओगी। दोनों भाभी तुम्हारी जान लेकर रहेगी। जिंदगी भर बाबू जी तोड़ मेहनत किए, इन लोगों का भरण पोषण किए, पर परिणाम क्या निकला? यही नर्क की जिंदगी। बाबू जी तो हम सबको छोड़कर चले गए, अब तुम धूप की तरह जल रही हो। अब हरियाली आने वाली नहीं है माँ, अब हरियाली आने वाली नहीं है।
1: गुड़िया, जब साईं ही छोड़कर चला गया तो अब किसको दोष दो बेटा?
0: उपाय है माँ, मैं जैसा कहूँ तू वैसा ही कर, सब ठीक हो जाएगा। अब अकल से काम लेना होगा, फिर देखना, दोनों बहुएं तुम्हें तो तलहत्ती पर रखेंगी, तलहत्ती पर। कोई कष्ट नहीं होगा तुम्हें।
1: समांग रहा नहीं, एक बाल्टी पानी भरने को कहती हूँ तो दोनों आना कानी करती है। तिरस्कार से जीवन चल रहा है बेटा, किसी तरह दो जून खाना दे देती है, बस वही काफी है मेरे लिए।
0: रो मत माँ, रो मत। देखो देखो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तुम्हारी तो इतनी सेवा करेगी ना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। जब तक जियोगी आनंद से रहोगी। समझती क्या है दोनों अपने आप को?
1: कौन सा करिश्मा बेटी, कौन सा करिश्मा करोगी?
0: देखो माँ, मैं एक ताला लाई हूँ, तुम्हारा बक्सा कहाँ है?
1: यहाँ लो। हाँ, लो
0: लाओ, ये पोटली सहज कर रखो, ये पोटली सहज कर रखो, और जोर जोर से बोलना ताकि दोनों बहुएं जग जाए, और इसको बक्से में रखना और ये ताला लगा देना। हाँ सुनो, किसी को चाबी नहीं देना, हमेशा साड़ी में बांध कर रखना। हाँ सुन, दो चार रोज में इस पोटली को उझल देना, फिर गिनना और पुनः सबको समेट कर बक्से में रख देना और ताला लगा देना।
1: ठीक है बेटी, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगी, वैसा ही करूंगी बेटी।
0: जब तक तुम जिंदा रहोगी ना, ये बक्सा नहीं खुलेगा।

0: ए जी,
1: कहो रमा।
0: जानते हैं, जब से गुड़िया आई है रात भर माय बेटी सोती नहीं है, गुतुर गुतुर करती रहती है। बक्सा खोलती है और बंद करती है। न जाने कितना गहना चुरा कर बेटी को दे दी है। प्या पैसा भी काफी है जी। हम लोगों को तरसा कर रखती थी और बेटी को थाती रखने दे दिया था। बुढ़वा मरने को तो मर गया, सारा धन दौलत बेटी के जिम्मे छोड़ गया। जानते हैं कि नहीं? अरे हम एक कनपासा के लिए तरसते रहे। आपकी बहन जब भी आती है बुढ़िया को कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। आपके दिल्ली जाने के बाद ऐसा एक भी महीना नहीं गुजरा जिस महीने वो नहीं आई हो। और जानते हैं, मैंने कानों सुनी एक बात बताती हूँ। ऐसा सुना बेटी अपने माँ को शिक्षा दे रही थी कि माँ ताला बंद कर रखना बक्से में, नहीं तो भाभी सारा माल चुरा लेगी। चाबी को बक्सा बंद करने के बाद केठी में बांध कर रखना। अब बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ?
1: देखो रमा, अगर माँ का जेवरात ऐसा कौड़ी लेना ही हो तो माँ की सेवा जी जान से करो। हा? उसके दिल को जीतो। अरे जिंदे में नहीं तो मरने के बाद तुम्हारा ही ना होगा।
0: बुढ़िया भी मरेगी भी क्या? कितनों को मार कर मरेगी बुढ़िया। अरे अमृत पी के आई है, बीमार भी कभी पड़ते नहीं देखा।
1: खबरदार रमा, दोबारा इसी बात की तो तेरी जीभ निकाल लूंगा। अरे जो माँ बाप हम लोगों को पाल पोष कर बड़ा किया उसी की निंदा करती हो? अरे अरे जी नहीं गल जाता है ऐसी बात करते हुए। फिर कभी ऐसी बातें मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? वह दिन भूल गई जब हम दोनों भाई दिल्ली चले गए थे, बाबूजी के पीठ पे कौन था? कोई नहीं, अकेले बाबूजी स्वयं मिट्टी सान कर, लौंदा बनाकर, बर्तन में रंग रोगन करके घर को चलाया। माँ बेचारी देह धून कर बाबू का साथ दी, लेकिन तुम लोगों को भूखे नहीं मरने दिया। तुम दोनों आराम से पक्के के मकान में रहती हो और माँ बेचारी को दरवाजे पर सुलाती। दोबारा बुढ़िया मत कहना, माँ कहते शर्म आती है क्या? अरे सेवा करो सेवा, मेवा मिलेगा, पुण्य कमाओ, आशीर्वाद मिलेगा माँ का। हम दिल्ली से क्या लाए? कुछ नहीं, सिर्फ सीख कर आए मेरे को तेरे को। अगर बाबूजी इलाज नहीं कराते तो हम दिल्ली में ही मर जाते, गंदी बस्ती में रहकर प्राण त्याग देते। शर्म नहीं आती? कहती है बुढ़िया मरती भी नहीं है, अमृत पीकर आई है। दोबारा ये सब सुनना नहीं चाहता हूँ, समझी रमा?
0: अच्छा अच्छा छोड़ो भी, लेकिन देखो जी अब हम भी तुम्हारे साथ दिल्ली जाएंगे।
1: अरे मेरे साथ कहाँ जाएगी, हम तो नरक में रहते ही है, यमुना नदी के किनारे पुस्ता पर, वहां तो मच्छर भूंज देता है, एक रात भी नहीं काट सकोगी, समझी? यहाँ जिस तरह रहती हो, खुला दरवाजा खुला आंगन, वहां थोड़े मिलेगा। सभी जगह दुर्गंध ही दुर्गंध है। दिल्ली अमीरों की जगह है, लाखों रुपया महीना कमाने वाले को अपना घर तक नहीं है, फ्लैट में रहता है, चार दीवारी में बंद रहता है, वहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। हम जैसे मजदूर वर्ग के लोग तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हैं।
0: सच में?
1: उससे तो अच्छा है अपना गांव। जितना मेहनत वहां करते हैं अगर उतनी ही मेहनत लगन से गांव में करे तो सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं।
0: तो फिर ऐसा करो जी, अब दिल्ली मत जाओ, यही दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी कर लेंगे।
1: हमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी भूल की जो बाबूजी से हुनर नहीं सीख पाए, जवानी के तैस में एक न सुनी, नहीं तो आज हम बेकार नहीं रहते। पुश्तैनी काम आज जरूर काम आता, चाक चलाते, घैला बर्तन बनाते, कितना अच्छा रहता। ठीक ही कहा है, दूर का ढोल सुहाना होता है।
0: जाने भी दो, पर हिम्मत मत हारो। इतने आदमी गाँव में ही रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, हमारे पास तो दो कट्ठा की बाड़ी है, इसमें सब्जी उगाएंगे। और देखो आजकल सब्जियां भी तो कितनी महंगी बिकती हैं। दो कट्ठे की जमीन में हम लोगों का भरण पोषण तो अच्छी तरह से हो ही जाएगा जी।
1: तुम्हारी सोच बिल्कुल सच है, अब हम दिल्ली नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, बहुत भोग लिया नरक को। फिर तो ये अपना ही काम है, स्वाभिमान से जिएंगे और फिर माँ की भी सेवा करते रहेंगे, क्यों? बचा हुआ धन तो हम ही लोगों का होगा, आराम से जिंदगी कटेगी।
0: बिल्कुल।

0: उठिए माँ जी, सुबह हो गई है। कुआं पर पानी भी भर दिया है माँ।
1: अच्छा,
0: नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए, पूजा पाठ कर लीजिए, तब तक चाय नाश्ता बनाती हूँ।
1: देखो बहू।
0: हाँ माँ।
1: अब मैं किसके लिए जीती हूँ? गुड़िया तो एक रोज दो रोज आती है फिर चली जाती है। वो तो दूसरे घर की हो गई ना, अमीर भी है, बड़े घर में उसकी शादी हुई है, हम लोग उसकी बराबरी में कैसे आ सकते।
0: हाँ माँ, ठीक कहती हैं आप। बेटी कब तक काम आएगी? सास बहू का ही संबंध अच्छा रहना चाहिए ना, तभी घर स्वर्ग बन जाता है।
2: ठीक ही कहती है भाभी, अब तो लगता ही नहीं है कि वही घर है। माँ की सेवा जितनी तुम करती हो ना भाभी, बिरले किसी किसी घर में होता है।
1: अरे गुड़िया, आज बहू को क्या हो गया है जो इतनी खातिरदारी कर रही है? लगता है मेरी गुड़िया का जादू चल गया, भगवान भला करे मेरी बेटी का।
2: अच्छा माँ, एक बात पूछूं?
1: पूछ।
2: तुम्हारी खातिरदारी हो रही है या नहीं, मेरा जादू चला या नहीं?
1: अरे वाह बेटा, वास्तव में तुम्हारे पास अकल का ताला है, नहीं तो हम इन लोगों के व्यवहार से तो मर ही जाते। सचमुच हमारी गुड़िया बेटी बहुत अकलमंद है। अब तो हम एक काम भी नहीं करते हैं, बहुएं करने ही नहीं देती हैं। सुबह शाम एक ग्लास दूध अवश्य देती हैं पीने को। गुड़िया पता है, अब तो दर्पण भी चमकने लगा, थोड़ी देख देख थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ। सब तुम्हारी कृपा है बेटा।
2: अच्छा माँ, ये बता, बक्सा दो चार रोज में खोलती हो या नहीं?
1: वाह बेटा, बस उसी का तो कमाल है, जोर जोर से गिनती हूँ जैसा तुमने कहा था, फिर बक्सा बंद कर गेठी में चाबी बांध लेती हूँ। मेरा तो भाग्य ही बदल दिया तुमने बेटा, नहीं तो मुझे गंधरौना पर फेंक देती ये दोनों बहुएं।
2: अरे नहीं, अच्छा चलो, अब तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया है, मुझे बहुत खुशी है माँ, मुझे बहुत खुशी है।

0: दूर मरती भी नहीं है बुढ़िया, ना को दम कर दी है, कभी माथा दबो कभी पैर दबो, फरमाइश पर फरमाइश करती रहती है। हे भगवान, कब छुटकारा मिलेगा इससे? बेटी सिखा पर आकर जाती है और माथे पर मेरे पड़ गई है। मैं तो आजीज आ गई हूँ।
1: अरे कोई है, कहाँ गई सब, मर गई क्या? दोनों बहुए कहाँ है? मर गई, बाप रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है।
0: क्या?
1: अरे अब नहीं बचूंगी, अब नहीं बचूंगी।
0: क्या
1: बुढ़िया को जल्दी खबर करो, जल्दी खबर करो।
0: मुंह जरा सा खोलिए,
1: पानी पानी दो, दम घुट रहा है बेटा, दम घुट रहा है, जल्दी से जी को,
0: जरा सा गुड़िया को खबर कर दीजिए।
1: अरे वाह,
0: माँ आप ठीक हो जाएंगी, धैर्य रखिए माँ, धैर्य रखिए, दबा कर
1: वैद्य को बुलाओ बेटा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बाबू मर गए, मैं भी मर जाऊंगी बेटा, मैं भी मर जाऊंगी।
2: नहीं ऐसा नहीं, धैर्य रखिए।

0: देख गुड़िया, माँ जब तक रही तुम्हारी भाभी जीजान से सेवा की। समय पर चाय नाश्ता खाना ना ही नहीं, कोई भी भारी काम माए को करने नहीं दी। दोनों शाम गाय का दूध देना कभी नहीं भूलती थी। माँ की जिंदगी बहुत अच्छे ढंग से कटी, कभी शिकायत करने का मौका नहीं दिया। तुम तो बीच बीच में आकर देखती ही थी। अब तो बक्सा खोलो।
1: माँ का ऋण चुका दिया गया है भैया, नहीं तो आज के जमाने में कौन अपनी सास की इतनी सेवा करती है। एक बात बताओ, अगर माँ के पास कुछ नहीं रहता तो क्या होता? भाभी इतनी सेवा करती?
0: क्या कहती हो गुड़िया, आखिर हमारी माँ थी।
1: अच्छा, मान लो इस बक्से में कुछ नहीं निकले तो तुम्हें और भाभी जी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी?
0: गुड़िया, ये सब पहेली मत बुझाओ। अगर कुछ नहीं निकलता तो हम क्या करें? लेकिन तुम्हारी भाभी बराबर रात को टटिया फाड़ कर देखती सुनती थी, और माँ बोलती भी थी, सारा जेवर रुपया पैसा तो बहू की होगी, बेचारी बहू सेवा करती है।
1: देखो देखो, अभी बक्सा खोल।
0: हाँ हाँ हाँ, खोलो खोलो।
1: ये लो, देखो इस थैली को खोलो। देखा गुड़िया का खेल।
0: अरे इसमें तो सिर्फ ईटा पत्थर है, सब मेहनत बेकार गया।
2: अरे गुड़िया, शैतान।
0: अरे ये बुढ़िया तो बहुत बहुत चतुर निकली।
2: और बेटी भी कम धूर्त है।
0: हाँ।
1: अरे नहीं नहीं, ये सब मेरा खेल है, मेरा। अगर हम ये खेल नहीं रचते ना तो माँ कब का मर गई होती। अब बताओ कैसा रहा ये नाटक? इसे कहते हैं अकल का ताला।
3: अकल का ताला, रेडियो नाटक अभी आप सुन रहे थे। इस रेडियो नाटक के लेखक थे महेंद्र मयंक, प्रस्तुतकर्ता थे शंकर कैमोरी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार।

0: लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजित बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गुंजित बिहार आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी गिरामी लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गुंजे बिहार।
1: श्रोताओं नमस्कार, लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गुंजे बिहार के आज के इस अंक में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका ही दोस्त डॉक्टर विजय कुमार मिश्र और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं सोनाली कर्मकार।
2: नमस्कार।
1: परंपरा और संस्कृति, निश्चित रूप से अगर अपने देश की बात की जाए, अपने भारतीय संस्कृति की बात की जाए, भारतीय परंपराओं की बात की जाए, तो विश्व में अपनी एक अनूठी मिसाल ये पेश करता है। और उसमें भी अगर लोक परंपराओं की बात करें तो हमारी जो लोक परंपराएं हैं, जो कि लोक मन जनमानस से जुड़ी हुई हैं, और लोक परंपराओं के अनुरूप ही गायन की परंपरा यानी कि लोकगीतों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें शायद जितने भी रस होते हैं वो सारे के सारे रस हैं। प्यार के भी, मनोहार के भी, विरह के भी, तो प्रेम के भी, है ना
2: जी।
1: इसी कड़ी में एक गीत आता है जट जाटिल गीत, जिसमें एक दूसरे के प्रति मीठी एक नोक झोंक है, मनोहार है, प्यार भी है, शिकवे शिकायत भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना।
2: बिल्कुल, जहाँ प्रेम है वहीं तो अनुनय है, वहीं विनय है, और जब मन की इच्छा पूरी ना हो वहीं तो नोक झोंक है। तो ये प्यार का ही एक रूप है, और इस नोक झोंक को अगर संगीत में पिरो दिया जाए तो बहुत ही प्यारा लगता है।

0: पारंपरिकता की कड़ी में एक और गीत की बारी आती है जिसे गोदना गीत कहा जाता है। मेरे ख्याल से कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि शरीर पे गोदना गुदवाया करते थे पहले लोग, बहुत लोग गुदवाते थे, लगभग सभी लोग गुदवाया करते थे। इन कालांतर में धीरे धीरे ये कम पड़ता चला गया और उसके बाद ये रहा कि इसमें पीड़ा भी है, एक चुभन भी है, एक दर्द भी है, मगर अंतर मन में एक श्रृंगार से परिपूर्ण प्रेम भी है। चूँकि गोदना करवाना ये अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ सूचक भी होता है ना?
1: बिल्कुल, अपनी पहचान भी है, गोदना पहचानने का जरिया भी है, और जहाँ तकलीफ है वहाँ एक मन में आनंद भी तो है, और यह आनंद हमें संगीत से पूरा होता है, और उस कष्ट से स्वयं को दूर भगाने के लिए, एक आनंददायक माहौल बनाने के लिए एक गीत भी तो होता है।

0: पहले की बात अगर हम याद करें तो परदेश जाते थे लोग कमाने के लिए, राहगीर अपने राह पर चलते चले जाते थे, पैदल यात्रा करते हुए एक बटोहिया की भांति यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अन्यत्र। लक्ष्य एक ही होता था, अपने कार्य की सिद्धि, है ना। और उस कार्य की सिद्धि के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका गतिमान होना आवश्यक होता था। और ऐसे अवसर पर हमारी परंपरा में बटोहिया गीत की अपनी एक प्रथा है और बटोहिया गीत का अपना एक मायने भी है। संदेशों की परंपरा, जैसे कि कहा जाता है ना कि अगर घर के आंगन में कौवा उछल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई आने वाला है, ये संदेश है। यानी कि प्रकृति से ही सारी चीज़ ली जाती है। और ख़ास तौर से लोकगीत की गायकी में ये चीज़ होती है कि लोकगीत जो कि सृष्टि का पहला गीत माना जाता है, बाद में इससे जुड़ा हुआ शास्त्रीय संगीत का उद्भव भी माना जाता है कि इसी से हुआ, सुगम संगीत का इसी से हुआ, और ये प्रकृति से जुड़ा हुआ गीत लोकगीत कहलाता है, जिसके विविध स्वरूप हैं, अनगिनत स्वरूप हैं।
1: जी बिल्कुल, राह में चलते चलते काफ़ी दूर अपने मंजिल तक पहुँचने में काफ़ी समय भी तो लगता है, ये समय को पाटना है। संगीत एक ऐसा माध्यम है कि वह समय का पता भी नहीं चलने देता है और लोग के थकान को भी पता नहीं चलने देता है। चलते चलते लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और समय का अंदाज़ा भी नहीं लगता।

0: जीवन में 16 संस्कार होते हैं
1: जी।
0: और 16 संस्कार की अगर बात की जाए तो हमारे जीवन में 16 संस्कार से जुड़े हुए गीत होते हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अगर जीवन की शुरुआत सोहर से होती है तो समापन निर्गुण पे जाके कहीं होता है, और इन 16 संस्कारों के बीच में कई उपसंस्कार भी हैं जिससे जुड़े हुए गीत प्रायः लोक कंठों से प्रस्फुटित होते हैं तो लोक मन प्रफुल्लित होता है। कुछ ऐसे भी गीत हैं जो कि निर्गुण के बाद की स्थिति आती है जहां उनका प्रयोग होता है, उनमें होता है एक नारदी। और संगीत का ये रूप स्वरूप जो होता है वो जो दुख और परेशानी उसे भुलाकर फिर जीवन की यात्रा में एकाकार करने की कड़ी में एक सशक्त कदम हुआ करता है।
1: हमारा जीवन संगीत में है, और जितना कि हम लोग सभी जान रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो एक अनोखी संस्कृति है। हमारी संस्कृति की अपनी एक अनोखी परंपरा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और उन परंपराओं से जुड़ी हुई भी विभिन्न विभिन्न गीत भी हैं। और संगीत वह माध्यम है जो हर कष्ट को भुला देता है, चाहे वह दुख का ही क्यों ना हो, किसी के मृत्यु के बाद का ही क्यों ना हो। इन सारे समय को एक दूसरे समय में परिवर्तित करने में जो साधन है वह है संगीत।
0: यही कारण है कि भारत की संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान पूरे विश्व में है, और कहा जाता है कि भारत दर्शन मतलब आत्मदर्शन।
1: जी।
2: राम नाम के सुधि बिसरायो, राम नाम के सुधि बिसरायो, भले लोग जगत के जुआ, दौलत दुनिया माल खजाना, ये सब धवल धाम के धुआ। दिया लिया कछु काम आई है, स्वर्ग खिड़की जमी टकुआ, सियार

0: तो श्रोता भाइयों बहनों, लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज बिहार को अब हम यहीं विराम देते हैं। आज के इस कार्यक्रम से अपने इस दोस्त डॉक्टर विजय कुमार मिश्र को और साथ ही
1: सोनाली कर्मकार को
0: अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गूंजी बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गूंजी बिहार, आकाशवाणी।

0: भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी गिरामी लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गूंजे बिहार।
1: अभी आप सुन रहे थे अंगिका लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
2: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
1: मीडियम वेव 205.76 यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भावगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम यानी भावगीत के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि जब लफ्ज़ अल्फाज कम पड़ जाते हैं तो शायरी अंगड़ाई लेती है, और जब शायरी में जज्बात की चाशनी घुलती है तो वो गज़ल बन जाती है। मैं हूँ आपका रेडियो साथी अथर, और आज के इस मखमली रात में हम सब साथ मिलकर खोलेंगे यादों के वो पुराने झरोके जहाँ हर शेर एक नया एहसास जगाएगा। तो आइए आज की रात इस भावगीत के कार्यक्रम को बहुत ही ख़ास बनाते हैं और गज़लों के उस दौर को शुरू करते हैं जहां शायरी है, और कह सकते हैं कि आज की इस भाग दौड़ भरी ये जो ज़िंदगी है, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से हम चंद लम्हे चुरा कर आइए डूब जाते हैं मीर गालिब और फैज़ की उन खूबसूरत बंदिशों में जो सीधे रूह को छू लेती हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में सजी इस गज़ल के साथ, जिसे लिखा है जावेद अख्तर साहब ने, संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने, और फिल्म का नाम है साथ साथ।

मंगलवार की इस रात भावगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गजलें। कभी कभी हम पुरानी यादों की धूल झाड़कर उन्हें फिर से जीना चाहते हैं और गजल वही जरिया है। आज की ये जो महफिल है, उन गलियों के नाम, उन अधूरी मुलाकातों के नाम और उन खतों के नाम जो कभी भेजे नहीं गए, आज हम लफ्ज़ों से यादों की एक तस्वीर बनाएंगे। तो बस अपनी आंखें मूंद लीजिए और बहने दीजिए संगीत के इस मखमली नदी को अपने भीतर। सुनिए ये रूह को सुकून देने वाली आवाज़ जिसे संगीत से सजाया है खयाम साहब ने। फिल्म का नाम है बाजार। इस गज़ल को अपनी कलम से लिखा है मखदूम मुहीउद्दीन ने। आवाज़ें हैं तरत अजीज़ और लता मंगेशकर की।

अभी जो हमने गज़ल सुनी उसकी गूंज कई दिनों तक आपके दिलों में रहेगी और ठहर सी जाएगी, और इस असर को या यूं कहें कि इस एहसास को मैं कम नहीं होने दूंगा। कहते हैं कि गज़ल सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते

करते हैं और चलते हैं उस दौर में जहां सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार थी। अगली पेशकश उन टूटे हुए दिलों के नाम जो आज भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। कैफी आज़मी की लिखी ये गज़ल, जिसे संगीत से सजाया है खुद जगजीत सिंह ने, और आवाज़ें जगजीत सिंह की ही हैं। फिल्म का नाम है अर्थ।

कार्यक्रम में कुछ कहने सुनाने से बेहतर है कि आइए अगली गज़ल सुनते हैं। बहुत ही नामचीन गज़ल है, फिल्म निकाह से हमने इस गज़ल को लिया है। आवाज़ गुलाम अली साहब की है और इस गीत को संगीत से सजाया खुद गुलाम अली साहब ने ही। गीत के बोल लिखे हैं हसन कमाल ने।

भावगीत के इस कार्यक्रम से विदा लेते हुए छोड़े जा रहा हूँ मैं आपको सरफरोश के इस गीत के साथ, इस गज़ल के साथ, जिसे अपनी आवाज़ दी है जगजीत सिंह ने। संगीत जतिन ललित का है और इस गज़ल को लिखा है निदा फाजली साहब ने। अपने रेडियो साथी अथर को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भावगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा

0: In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight, chasing a target of 169 runs. Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Earlier put into bat, Gujarat Titans posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे अपनी कल की सभा के साथ प्रातः 5:50 पर। अभी अनुमति दें, शुभ रात्रि, जय हिंद।